मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून 2026। प्रातः के 5:57 और 41 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6 बजे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत में सुनते हैं मातृ वंदना।

साथियों, ये भजन आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में अगला ये भजन।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए विजया चौधरी के स्वर में ये भजन।

0: साथियों, इसी भजन के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है चिंतन। आज का विषय है सुख दुख। आलेख है डॉक्टर सुरेश सम्राट का और वाचक है राजेंद्र कुमार।
1: परिवर्तित जीवन शैली के साथ जीवन मूल्य भी तेजी से बदल रहे हैं। इस परिवर्तन में चिंता का मूल विषय यह है कि जीवन मूल्यों से अलग हटकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। फलस्वरूप कुंठा और तनाव की स्थितियां पनप रही हैं। यही कारण है कि अब अक्सर ये कहा जाता है कि पहले जैसा परस्पर प्रेम और बंधुत्व अब नहीं रहा है। वर्तमान में जो बात सर्वाधिक सुनने में आती है वो ये है कि व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, जबकि वह दूसरों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी होता है। एक जमाना था जब समाज में एक दूसरे के सुख दुख में सहिष्णुता के साथ सम्मिलित होने की परंपरा थी। दूसरे के सुख में सहिष्णु होकर आनंद और उमंग के अवसरों पर बधाई गीत गाए जाते थे। एक दूसरे के खुशी के मौकों पर महिला और पुरुष सच्चे हृदय से शामिल होते थे और हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते थे। अब ऐसे अवसर केवल दिखावा बनकर रह गए हैं। अब दूसरे की सफलता, समृद्धि और वैभव व्यक्ति को पीड़ित और दुखी करता है। इस दुख से वो अपने लिए पीड़ा और कुंठा मोल ले लेता है। यदि दूसरे की समृद्धि गलत कार्यों से बनी है तो व्यक्ति और अधिक ईर्ष्या और द्वेष से भर उठता है। इसके लिए वो स्वयं भी गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगता है और असफल होने पर स्वयं को कोसता है। वर्तमान समाज में यह प्रवृत्ति नीचे से ऊपर की ओर इस तेजी से बढ़ रही है कि पूरा समाज इसकी चपेट में आ चुका है। विडंबना की बात यह है कि इस प्रवृत्ति की व्यापकता कहां जाकर रुकेगी, ये अभी भी तय नहीं है। तथाकथित रूप से ऊपर उठे व्यक्ति में भी ये प्रवृत्ति अपने से ऊपर उठे व्यक्ति को लेकर पनपती रहती है और इस दौड़ का कोई अंत दिखाई नहीं देता। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग को लेकर और उच्च वर्ग उच्चतम वर्ग को लेकर ऐसे आत्मकष्ट को ही प्रगति मानकर जी रहा है। ये असंतुष्टि की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक व्यक्ति ना चाहते हुए भी शामिल है और वो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं छिपे जीवन मूल्य को भूल चुका है। असल में ये सब इसलिए हुआ है कि आजादी के बाद जो संवैधानिक और सामाजिक अवसर सभी के लिए समानता के साथ निर्मित हुए वे सब के सब भाई भतीजावाद और भ्रष्ट तंत्र की गिरफ्त में आ गए। जो कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता था उसे भी मजबूरन शामिल होना पड़ा। अयोग्य की प्रतिष्ठा ने अयोग्य द्वारा अयोग्य के लिए अयोग्यों का जैसी स्थिति निर्मित कर दी। जो इसमें शामिल हो सके वे आगे बढ़ गए और जो ऐसा नहीं कर पाए वे पिछड़ गए। इस परिवर्तन से आगे बढ़ने की जो परंपरा विकसित हुई अब वो संस्कृति बन चुकी है। यही कारण है कि नई पीढ़ी ने आगे बढ़ने का इसे ही एकमात्र मार्ग मान लिया है और बच्चों में भी इसी के संस्कार विकसित हो रहे हैं। लेकिन ये स्थिति ज्यादा चलने वाली नहीं है। शाश्वत जीवन मूल्य शाश्वत ही रहते हैं और हर संक्रमण के बाद वे पुनः प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि शाश्वत जीवन मूल्य ही समाज और व्यक्ति के जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं। आज भले ही हमारे बीच से कबीर की यह वाणी तिरोहित होती जा रही है, लेकिन इसके शाश्वत मूल्य को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। विषय था सुख दुख। आलेख था डॉक्टर सुरेश सम्राट का और वाचक थे राजेंद्र कुमार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, सामयिक चर्चा। फसल चक्र क्यों और कैसे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एसएस चौधरी।
1: किसान भाइयों, हम सबकी कोशिश होती है कि हम जो भी फसल बोए उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, और इसके लिए हम संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, और फसल में किसी कीट बीमारी का भी प्रकोप होता है तो उसकी भी रोकथाम के हम समय समय पर उपाय करते हैं। इन सब कृषि क्रियाओं के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीमित कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन लें, क्योंकि भूमि हमारी बहुत कम है और इसी में हमें तकनीकी ढंग से खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति हम ठीक बनाए रखें, भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा को ना बिगड़ने दें। इसके लिए हमें अपने खेतों में हेर फेर करके ही फसलें बोना चाहिए, और इसी को हम फसल चक्र कहते हैं। अब फसल चक्र के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, हम उनको भी समझ लें। उथली जड़ वाली फसल के बाद हमेशा गहरी जड़ वाली फसल को लेना चाहिए। इस प्रकार फसलें बोने से भूमि की अलग अलग परतों में पौधों के भोजन की समानता बनी रहेगी और उन्हें दोबारा उर्वरा शक्ति प्राप्त करने का मौका मिलता रहेगा। इसी तरह से अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद में अधिक पैदावार देने वाली फसल को लेना चाहिए। इससे पिछली फसल की बची हुई खाद का सदुपयोग हो जाता है और किसान भाइयों को अधिक खाद नहीं देनी पड़ती है। फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल बोना चाहिए, क्योंकि फलीदार फसलों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिल जाता है। इन फसलों की कटाई के बाद बिना फलीदार फसलें बची हुई नाइट्रोजन का उपयोग कर लेती हैं। इसी प्रकार अधिक जल ग्रहण करने वाली फसलों के बाद कम जल ग्रहण करने वाली फसल बोना चाहिए। ऐसा करने से जमीन में लगातार अधिक जल बने रहने के कारण वायु संचार और जीवाणुओं की क्रियाओं में भी बाधा पड़ती है, इससे बचा जा सकता है। आपको हम एक बात और बता दें कि किसान भाइयों, कि अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साथ ही उपलब्ध कृषि साधनों के आधार पर भी हम फसलों का चुनाव करें। किसान भाइयों, अब हम आपको फसल चक्र अपनाने के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में बताते हैं। फसल चक्र अपनाने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, रोग और कीटों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे अनावश्यक पौध संरक्षण दवाओं पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ खरपतवारों के नियंत्रण में भी मदद मिलती है। फसलों को हेर फेर कर बोने से जमीन की भौतिक और रासायनिक दशा बिगड़ने नहीं पाती है, जैविक दशा ठीक रहती है, फसलों की पैदावार बढ़ती है, फसल उत्पादन में लागत कम आती है, इसी तरह भूमि का कटाव भी कम होता है। किसान भाइयों के पास उपलब्ध साधनों जैसे बीज, खाद, पानी और श्रम का पूरी क्षमता के साथ उपयोग हो जाता है और साल भर आमदनी भी होती रहती है। फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते समय जो मुख्य कारक या प्रभाव डालने वाली बातें हैं, उनमें जलवायु, मिट्टी, सिंचाई का साधन, मजदूरों की उपलब्धता, घरेलू आवश्यकताएं, बाजार की मांग, ये सब बातें फसल चक्र को प्रभावित करती हैं। खेती के प्रकार में यदि डेयरी फार्म है और जहां मुर्गी उद्योग मुख्य होता है, वहाँ फार्म का अधिकतर क्षेत्रफल चारे तथा दानों की फसलों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यदि हम फसलों को हेर फेर करके बोएंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी मिलेगी, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साल भर फसलें उगा करके भी हम कीट रोग से फसलों को बचाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। फसल चक्र क्यों और कैसे, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। हम आकाशवाणी के एक ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदेश के करीब 900 पदों पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी करेगा। जून के अंतिम सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब एक माह का समय मिलेगा। बोर्ड के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 13 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि भर्ती की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बोर्ड का प्रयास तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कर योग्य अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने का है। इसी के साथ सूचना पर कार्यक्रम दर्पण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रोस्क

0: कोस्थले भारतीय प्रवासीजनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासीजनैः भव्यं स्वागतं कृतं। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्वचन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोरजलवायुपरिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिकचन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यम् ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशालानगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 क्रीडकपुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

साथियों, सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी संगीत का कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे लोक संगीत, जिसमें आज कलाकार रहेंगे घनश्याम कुशवाहा और साथी। साथियों, सुबह 8:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिसे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकेंगे सुबह 9:00, जिसमें आज भेंट वार्ता रहेगी विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अतर सिंह से सुमित गौतम की बातचीत। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे भोपाल से सिंधी कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे सुबह 10:00, जिसे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे व्हाट्सएप फरमाइश। इस घंटे की खास खबरें आप सुन सकेंगे सुबह 10:58 पर। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 1:45 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 2:00। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 2:50 पर। ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन सकेंगे। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए दैनिक कार्यक्रम युवाणी। शाम 5:33 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। शाम 5:55 पर आप सुनेंगे लोकल विज्ञापन प्रोमो स्वच्छता ही सेवा है, कचरा कचरा गाड़ी में ही डालें। 5:58 पर शाम आप सुन सकेंगे इस घंटे की खास खबरें। शाम 6:00 आप सुनेंगे भजन संध्या। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजवेस्टन बर्मिंघम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे जिस मध्य प्रदेश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, इसमें मैच के बारे में ही आपको आगे जानकारी आंखों देखा हाल दिया जाएगा और ये मैच समाप्ति तक रहेगा। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की

0: अनेक जगहों पर आंधी और बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। वे यहां पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: इसके पूर्व नीस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत सत्कार अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। इसमें 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये जमा होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपये की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 122 करोड़ रुपये की लागत के 28 कार्यों का भूमि पूजन और करीब 69 करोड़ रुपये की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं मुख्यमंत्री भोपाल में MSME उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण भी करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन कल एक सर्वसम्मत इंदौर घोषणा के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि, व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की यह बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन कल मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने फलदार पौधे रोपकर हरित विकास का संकल्प भी दोहराया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
3: हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है, सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगाकर लगातार 22,000 पदों की भर्ती का अभियान चला है। हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात है देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित

0: हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा भी लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन परीक्षार्थियों के साथ सकारात्मक भाव से हर संभव सहयोग प्रदान करे। जिला स्तर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए तथा अफवाह फैलने की स्थिति में तत्काल वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत कराया जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर से बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कल राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक चीन में आयोजित की जाएगी। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के मैच के साथ करेगा। ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। वहीं शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया। वहीं भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने कल शासकीय अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से संवाद किया। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कल आयोजित की गई। बाल संप्रेक्षण गृह झाबुआ में बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और भारत ज्ञान मंडपम मिशन के अंतर्गत कल आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के संग्रहित लगभग 30 पांडुलिपियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हांकित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। शुरुआत में सुनते हैं ये गीत।

आवाज़ थी अमित त्रिवेदी की और इस गीत को फिल्माया गया था सुशांत सिंह राजपूत पर। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

0: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म घर से। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, बोल गुलजार के थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म घरौंदा से। आवाज़ थी रूना लैला की, बोल गुलजार के थे और संगीत दिया था जावेद अख्तर ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये खूबसूरत सा गीत।

साथियों, ये गीत सुना आपने फिल्म चांदनी से। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत दिया था शिव हरि ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म काला पानी से। आवाज थी आशा भोसले की, गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये गीत।

0: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म काला बाजार से। आवाज़ थी आशा भोसले की, बोल शैलेंद्र के थे और संगीत दिया था SD बर्मन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: दिल्ली से घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेके। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: एयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister.

संजा सिमरू शारदे और भोरई गौरी गड़े संजा सिमरू

0: बहू
1: जी मम्मी जी,
0: इस घर के कुछ नियम हैं।
1: जैसे?
0: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
1: तो लेन देन?
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: साथियों, आप सुन रहे हैं लोक संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम कुशवाहा और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। लीजिए सुनिए इसी क्रम में अगला ये गीत।

साथियों, ये किसान गीत आपने सुना घनश्याम कुशवाहा और साथियों के स्वर में। आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये मल्हार गीत।

साथियों, आप सुन रहे हैं लोक संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम कुशवाहा और उनके साथी ग्यासी अमर सिंह प्रजापति, परमोले कुशवाहा, कल्लो नंदराम प्रजापति, नंदू कुशवाहा, राम प्रसाद प्रजापति के द्वारा गाए कुछ लोकगीत। लीजिए, इसी क्रम में सुनिए अगला, ये रावला गीत।

0: साथियों, इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आज इसमें हमने आपको सुनवाया घनश्याम कुशवाहा और उनके साथी ग्यासी अमर सिंह प्रजापति, परमोले कुशवाहा, कल्लो नंदराम प्रजापति, नंदू कुशवाहा, राम प्रसाद प्रजापति के द्वारा गाए कुछ लोकगीत। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:00
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त अंतरित करेंगे, जिसके तहत 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेहतर नीति निर्माण के लिए बेहतर जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में नीति निर्माण जनसामान्य के सुझावों के आधार पर ही किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज खिलाड़ी माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:00 हैं। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

साथियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी अर्चना। साथियों, आज यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई 2005 में 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों ने सर्वसम्मति से स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन की घोषणा की और WHA 58.13 के संकल्प के साथ उन्होंने विश्व रक्तदाता दिवस को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दर्शाता है 1868 को कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के उपलक्ष में। कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूह प्रणाली के विकास और वर्गीकरण RH फैक्टर की खोज के लिए जाना जाता है। इन्हें ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा के जनक के रूप में भी जानते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य साथियों लोगों को नियमित सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाना है। रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, इस प्रयास में सभी शामिल हों और जीवन को बचाएं। इस तरह की थीम रखी जाती है कि हर कोई रक्तदान करने के लिए मोटिवेट हो। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य है रक्तदान के महत्व को जागरूकता देना, उसको बढ़ावा देना, रक्तदान करने की सामाजिक और मानसिकता को सुदृढ़ करना, रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और उन्हें समर्पित करना, रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना। साथियों, यदि हम बात करें कि रक्तदान कैसे करना है तो इसके लिए रक्तदान करना बहुत ही सरल और सुरक्षित है। हमें अपने नज़दीकी रक्तदान केंद्र पर जाना होगा और वहाँ पर रक्तदान के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के दौरान हमारी कुछ जांच होगी और उसके बाद हम रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से हमको अच्छा महसूस होता है मानसिक रूप से, क्योंकि हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। साथ ही साथियों, रक्तदान से जीवन को बचाने में मदद होती है। कहीं ना कहीं हमारा योगदान किसी दूसरे के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्तदान करने से हमारा रक्त परीक्षित और जांचा जाता है, चेक किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर कैसा है। साथियों, रक्तदान एक महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक क्रिया है। ये रक्त की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करती है जिससे अन्य लोगों को ज़रूरतमंद रक्त प्राप्त हो सकता है। रक्तदान जीवनों को बचाने में मदद करता है, खासकर आपदा और आपत्ति के समय। साथियों, नियमित रक्तदान से शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा मिलता है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। 18 से 60 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। नियमित रक्तदाता 65 वर्ष तक रक्तदान कर सकता है। उसके लिए न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना आवश्यक है। इसके साथ ही पुरुष हर 3 महीने में एक बार यानी वर्ष में 4 बार रक्तदान कर सकता है, वहीं महिलाएं वर्ष में 3 बार रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान से पहले नाड़ी, BP, हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। एक और खास बात साथियों, रक्तदान के बाद शरीर जल्दी ही रक्त की भरपाई कर लेता है, इसलिए लंबे समय तक कमजोरी नहीं रहती। तो हमें ये डर अपने अंदर से निकालना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रक्तदान करेंगे और हम कमजोरी महसूस करेंगे या हमें थकान होगी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही टाइम बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। साथ ही रक्तदान से इम्यूनिटी प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होती है। रक्तदान से पहले हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, इसलिए योग्य व्यक्ति की रक्तदान ही कर सकता है। और जब हम उस हीमोग्लोबिन की जांच में
योग्य माने जाते हैं उसी कंडीशन में हम रक्तदान कर सकते हैं, तो फिर रक्त की कमी जैसी कोई भी समस्या नहीं आती। तो अपना इस महत्व को ज़रूर समझें और अपने रक्त की उपयोगिता को समझें कि किस तरह से हम अपने रक्त की एक एक बूंद से किसी दूसरे के जीवन को बचा सकते हैं। साथ ही साथियों, आज ही के दिन जून 2020 को हमारे भारतीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत

34 वर्ष की उम्र में बांद्रा मुंबई में उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे स्तर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उनकी शुरुआत टेलीविज़न धारावाहिकों से हुई थी। उनका पहला शो था स्टार प्लस पर किस देश में है मेरा दिल, जो 2008 में आया था। उसके बाद उनका जीटीवी का लोकप्रिय शो पवित्र रिश्ता 2009 से 11 तक बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा। उनकी फिल्मी कैरियर की हम यदि बात करें साथियों, तो 2013 में आई फिल्म काय पोछे से शुरुआत की गई। इसके बाद में उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी। तो आज हम उनको याद करते हुए उन पर फिल्माए गए इस गीत को सुनवाते हैं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, अब वक्त हुआ है भेंट वार्ता का। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अतर सिंह से सुमित गौतम की बातचीत, लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता।
5: श्रोता साथियों, आज है विश्व रक्तदाता दिवस। आज का दिन उन सभी रक्तदाताओं को समर्पित है जिन्होंने कभी न कभी रक्तदान करके किसी न किसी व्यक्ति की जान बचाई है। उन सभी रक्तदाताओं को हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। श्रोता साथियों, इस वर्ष की आधिकारिक थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अतर सिंह जी को, जिनसे हम बात करेंगे रक्तदान से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ सामान्य जानकारियां, और बात करेंगे कुछ भ्रांतियों पर भी जिसके कारण कुछ स्वैच्छिक रक्तदान करने के इच्छुक लोग भी रक्तदान करने से हिचकते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में।
6: नमस्कार, इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
5: तो कार्यक्रम की शुरुआत तो इसी बात से करनी चाहिए कि आखिर रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है? सर,
6: रक्तदान सच में एक महादान है जिससे लोगों की जान बचती है। कई बड़े बड़े ऑपरेशन उससे पॉसिबल हो पाते हैं। कई बार एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की जान केवल अत्यधिक खून के बह जाने से ही हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो लोग ब्लड डोनेट देते हैं वो एक तरह से दूसरे की जान ही बचाते हैं, तो रक्तदान को इसीलिए महादान कहा जाता है।
5: जी जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग रक्तदान करना चाहते हैं उनको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
6: जो लोग पहली बार रक्तदान देते हैं उनको जरूर थोड़ा बहुत सवाल हो सकते हैं या एंजाइटी जैसे इश्यूज हो सकते हैं, और वो जब अपन देते हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। सावधानी के तौर पे हो सके तो वो अपने किसी परिचित को साथ में ले चलें। नॉर्मली जिनका वजन 50 किलो से ज़्यादा है उन्हीं से ब्लड लिया जाता है, और जो कंसेंट देने की एज में है, जो 18 से 50 साल के बीच में है, उन्हीं से ब्लड लिया जाता है। सावधानी के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत बीपी कम हो सकता है, तो वैसे भी अपन ब्लड जो लेते हैं वो लेटा के लेते हैं, तो उसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं रहता है। काफ़ी अच्छा फील होता है ब्लड डोनेशन के बाद।
5: ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए ये अक्सर कहा जाता है, सरकार के द्वारा भी इस तरह की बातें लगातार प्रोत्साहित करने के लिए कही जाती रही है। कुछ वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं, नियमित रक्तदान करने से रक्तदाता को किस तरीके के फायदे होते हैं?
6: ये बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है कि ब्लड देने के भी फायदे हैं। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक हुआ, कैंसर्स हुए, या कई बीमारियों में आयरन डिपोजिशन होता रहता है बॉडी में, ये सारी बीमारियां रक्तदान देने से कम होती हैं, उनके चांसेस कम हो जाते हैं, और भी नया ब्लड बनाता है, एनर्जी भी बनी रहती है, तो ब्लड डोनेट करने के काफ़ी फायदे हैं।
5: कई तरह के विभिन्न रक्तदाता शिविर भी लगाए जाते हैं और लोगों को प्रेरित किया जाता है तो रक्त देने के लिए। कई बार जैसे हम जिसको आवश्यक है उसको तो रक्त देते हैं, पर जो रक्तदाता शिविरों में ब्लड इकट्ठा किया जाता है उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से फिर उसको रखा जाता है और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है?
6: अगर आप कैंप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो अपने यहाँ दो तरह से अपन करा सकते हैं। जैसे जिला अस्पताल में ब्लड बैंक है तो आपको आपके जो इंचार्ज हैं उनसे मिल लें, केवल बोलने से भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर वर्क करना है या आपको। दूसरा मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक है तो वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं और साथ में सारी

0: ब्लड प्रिजर्वेशन की सारी चीज़ें लेके आते हैं और काफ़ी अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में वो डोनेशन कराते हैं। एक फ़ायदा ये है कि अगर आप खुद से डोनेट करते हैं और कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आप उनको अगर अपना कार्ड दिखाएंगे कि मैंने उस समय डोनेट करा था तो आपको ब्लड बहुत ईजिली मिल जाता है
1: जी। यानी ब्लड डोनेशन के फायदे, आपको जब ब्लड की आवश्यकता होगी तो उसके भी अपने फायदे होते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, आपने अगर पहले डोनेट करा है तो आपको मिलेगा भी बहुत ईजिली
1: जी। कुछ रक्त समूह हैं जो बहुत कम मिलते हैं, रेयरली अवेलेबल होते हैं, वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, उनके लिए कितना जरूरी है रक्त दान करते रहना?
0: ऐसे केसेस में तो गवर्नमेंट का एक अच्छा ये प्रोग्राम है कि वो एक रजिस्टर बना के रखते हैं जिसमें सारी जानकारियाँ रहती हैं
1: जी
0: रेयर ब्लड ग्रुप की, और ज़्यादातर जो लोग इस परेशानी से जूझते हैं वो लोग भी टच में रहते हैं कि कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्लड उनसे ले सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अपन को अपने जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनसे टच में जरूर रहना चाहिए जिससे ज़रूरत पड़ने पर उनसे मदद ली जाए।
1: कितने माह के अंतराल में रक्तदान किया जा सकता है?
0: एक हेल्दी पुरुष के लिए हर 3 महीने के बाद और महिला के लिए 4 महीने के बाद का अपन रिकमेंड करते हैं।
1: जो ये भ्रांतियाँ हैं महिलाओं की बात हुई, तो कई लोग कहते हैं कि महिलाओं को रक्तदान करने से रुकना चाहिए, तो इस तरह की भ्रांतियों का आधार क्या है? और
0: महिलाओं में क्या हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी ब्लड का लॉस होता है, इसलिए महिलाएँ अपने यहाँ इंडिया में काफ़ी कुछ महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम रहता है, पर वो पुरानी बातें थी, आजकल इंडियन फीमेल्स का भी हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छा मिलता है और वो डोनेट कर सकती हैं।
1: कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके होने पर रक्तदान नहीं किया जा सकता?
0: जैसे कि HIV हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, अगर किसी को सिफिलिस है या कोई दूसरी इन्फेक्टिव डिसीज है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड डोनेशन
1: नहीं करना चाहिए। कोविड के अगर संक्रमण, सर थैलेसीमिया के बारे में अपन सुनते रहते हैं कि ब्लड की लगातार कमी रहती है, नियमित रूप से उसमें कमी आती है शरीर में, तो ऐसे रोगियों को क्या करना चाहिए?
0: और कुछ ऐसे थैलेसीमिया और दूसरी भी बीमारी हैं जिनमें ब्लड बार बार का होता रहता है और कई बार तो मरीज के परिजन वो कुछ दिनों बाद कुछ महीनों में बस ब्लड चढ़ाते रहते हैं, तो कोई भी लोग हो जिनको बार बार रिकरेंट एनीमिया हो रहा है तो उसका कारण पता करें कि अगर वो थैलेसीमिया की वजह से है, सिकल सेल डिसीज की वजह से है, या ब्लड कैंसर की वजह से है, या ब्लड के दूसरे बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनकी वजह से है। तो थैलेसीमिया में जैसे हीमोग्लोबिन चेन रहती है उसमें अल्फ़ा और बीटा चेन रहती हैं, तो जो चेन अफेक्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग अपन उसको अल्फ़ा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया बोला जाता है। थैलेसीमिया कुछ कम्युनिटीज़ में कॉमन है, जैसे सिंधीज में काफ़ी कॉमन है, पंजाबी में कॉमन है, और जबकि सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल पॉपुलेशन में कॉमन है। अगर इन कम्युनिटीज़ के लोग रिकरेंट एनीमिया के साथ आ रहे हैं तो अपन को एक बार उनका स्कैनिंग करा लेना चाहिए, और जो बहुत ईजिली हो जाता है, जो अपन सिंपल सा CBC टेस्ट रहता है थैलेसीमिया का आइडिया, उससे काफ़ी हद तक उसी से आइडिया लग जाता है। और आजकल अच्छी बात यह है कि हालांकि ये पहले इनक्यूरेबल मानी जाती थी, पर ये बीमारियां भी हुई, ब्लड कैंसर भी हुआ है, आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी हो रहा है, अपने शहर ग्वालियर में भी कुछ इंस्टीट्यूट बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा रही हैं जिनसे अपन इन बीमारियों से हमेशा के लिए फ्री हो सकते हैं,
1: बच सकते हैं। रक्तदाताओं की बात करें तो रक्तदाताओं की ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट करती होगी, जो नियमित रूप से जागरूक हैं और रक्तदान कर रहे हैं?
0: एक तो उनका खुद का हेल्थ, जो ब्लड डोनेशन उनको खुद को अच्छा लगता है, उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उन्होंने किसी की मदद करी,
1: जान बचाई और खुद अच्छा लग रहा है उनको।
0: हाँ, ज़्यादातर लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो रिफ्रेशिंग फील करते हैं, उनके नयापन सा महसूस होता है और साइकोलॉजिकली भी काफ़ी अच्छा फील करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हर साल या हर किसी ओकेशन में रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहते हैं।
1: इन रक्तदाताओं को आज जो विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर, जो रक्तदान कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उन सभी के लिए कोई संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहें तो?
0: जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि उनको ब्लड डोनेट ना करना पड़े, चाहे पैसे से मिल जाए। ब्लड देने से किसी तरह की कमजोरी वमजोरी नहीं महसूस होती है और उससे काफ़ी फायदे हैं। और कई बार तो ऐसा सुनने में आता है कि कहीं कोई ट्रेजेडी हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत सारे लोग ब्लड देने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ट्रेंड्स अभी अपने यहाँ कम है, ऐसे यहाँ भी इस तरह का माहौल बनना चाहिए।
1: तो क्या एक बदलाव आप समाज में देखते हैं कि पहले के मुकाबले और आज के ज़माने में कोई अंतर आया है?
0: काफ़ी अंतर आया है। जब मैं अपनी रेजिडेंसी में था या दूसरे जॉब करता था तब बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, लोग घर के लोगों के लिए नहीं ब्लड दे रहे हैं, मरीज़ का ट्रीटमेंट लेट हो रहा है, और भी परेशानियां आ रही हैं, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारी

0: हुई हैं, ब्लड बैंक भी काफ़ी बढ़े हैं, ब्लड भी इजीली मिल जाता है, तो जैसे एजुकेशन बढ़ेगा हो सकता है ये परेशानी भी होती है। मैंने खुद तो ब्लड डोनेट किया है, पर ज़्यादातर जैसे सर्जरीज रहती हैं उसमें कई बार काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूनिट ब्लड चला जाता है, मेनली कई बार फीमेल्स को डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है, तो नॉर्मली एक दो यूनिट के बाद कई बार कॉज ऑफ ब्लीडिंग नहीं मिलता है, तो उनको काफ़ी और ज़्यादा ब्लड चढ़ाना पड़ता है, कई बार बर्न के केसेस में बहुत ब्लड देना पड़ता है।
1: तो आप भी क्या नियमित रक्तदान करते हैं सर?
0: हाँ, मैंने नियमित मैं कुछ ओकेशन पे तो करते रहता हूँ, यानी मैंने कई बार ब्लड डोनेट किया और मैंने भी पर्सनली भी काफ़ी अच्छा फील किया।
1: तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अतर सिंह, जिन्होंने रक्तदान से जुड़ी कई सारी बातें हमसे साझा की और इन्होंने ये भी बताया कि ये नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। तो श्रोताओं, आज रक्तदाता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रेरणा लेते हैं इनसे, उन सभी रक्तदाताओं से भी प्रेरणा लेते हैं जो नियमित रक्तदान करके किसी न किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो उन सभी रक्तदाताओं को मैं अपने आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अतर सिंह से सुमित गौतम की बातचीत।

0: साथियों, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के सहयोग से 3 एमपी नोबल यूनिट एनसीसी ग्वालियर का 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। शनिवार को कैडेट से आपदा प्रबंधन सीखा और साथ ही डिप्टी कैंप कमांडेंट एन के झा ने कैडेट्स को फिजिकली ट्रेनिंग से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फिजिकल ट्रेनिंग में शामिल होने से हम अनुशासन में ढलेंगे, फिटनेस आने से हमारे मन में आत्मविश्वास का भाव और ज़्यादा जगेगा। इसी क्रम में अन्य अधिकारियों ने कैडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान किया, साथ ही उनको जो भी सवाल थे उनका जवाब दिया। इसी के साथ साथ साथियों, साइबर क्राइम विंग ने फूलबाग क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए साइबर जागरूकता अभियान रखा। थाना प्रभारी अपराध निरीक्षक अमित शर्मा ने कहा कि OTP और पासवर्ड किसी से साझा न करें, सर्च इंजन से मिले कस्टमर केयर नंबरों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, केवल विश्वसनीय वेबसाइट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही ऑनलाइन खरीदारी करें। साथ ही उन्होंने करीब 100 स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने संबंधी जानकारी दी। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट में 2-स्टेप वेरिफिकेशन सक्रिय रखने और अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने, बिना जांचे किसी लिंक या APK फाइल पर क्लिक न करने की सलाह दी। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी और ऑनलाइन गेमिंग की लत से जुड़े खतरों के बारे में भी बताया। इसी के साथ साथ महिलाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को सुबह 6 बजे से LNIP परिसर से अस्मिता खेलो इंडिया महिला सिटी लीग रोड इवेंट साइकिल महोत्सव शुरू हो गया है। भारतीय साइकिलिंग महासंघ, खेलो इंडिया, जिला साइकिलिंग संघ ग्वालियर LNIP और क्रीडा भारती के इस महोत्सव में महिला एलिट 19 वर्ष से अधिक, जूनियर बालिका 17 से 18 वर्ष और सब जूनियर बालिका 13 से 16 वर्ष वर्ग की प्रतिभागी भाग लिया है। महोत्सव विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के 10 जिलों में रखा गया है। ग्वालियर के साइकिल महोत्सव में लगभग 200 महिलाएं शामिल हुई हैं। इसी के साथ और भी सूचनाएं और भी जानकारी हम आपसे साझा करें, लेकिन हमें स्टूडियो की घड़ी बिल्कुल अनुमति नहीं देती। इसी के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर से अपनी रेडियो साथी अर्चना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम, जिसे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सिंधिया जी सुरहाण का।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में हाजिर आया तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। साथियों, अॼु 14 जून हिकु ख़ासि ॾींहुं आहे, विश्व रक्तदाता दिवस। रतु जंहिंजो को बि कृत्रिम विकल्प न आहे, हादसनि, ऑपरेशन या वरी थैलेसेमिया जी बीमारीअ में मरीज़नि जी जान बचाइण लाइ इंसान जे रत जी घुर्ज रहंदी आहे। रक्तदाता दिवस मल्हाइण जो मक़सदु सुरक्षित रत जी उपलब्धता बाबति सुजाॻी पैदा करणु ऐं पाण मुरादो रतु ॾियण वारनि जा थोरा मञणु आहे। हिन ॾींहं जी चूंड माहिर साइंसदान कार्ल लैंडस्टेनर जे जनम जे ॾींहं जे मान में कई वई आहे, जिन ब्लड ग्रुप्स जी खोज कई हुई। दोस्तों, कुझु माण्हुनि जे मन में इहा भ्रांति या वहम वेठल आहे त रत ॾियण सां शरीर में कमज़ोरी अची वेंदी, पर इहा ॻाल्हि बिल्कुलु बि सही न आहे। हिकु तंदुरुस्त माण्हू हर 3 महीने में सलाईअ सां रतु दान करे सघे थो। पाण सच त इहो आहे त रतु ॾियण सां शरीर में नयूं रत जूं कोठड़ियूं बणिजनि थियूं ऐं दिलि जी बीमारियुनि जो ख़तरो बि घटिजे थो। तव्हांजो ॾिनल हिकु यूनिट रतु बि माण्हुनि जी जान बचाए सघे थो। त अचो हिन ॾींहं ते पाण मुरादो रतु ॾियण जी पह कयूं, छो त ही रतु कंहिंजी ज़िंदगी बणिजी सघे थो। हाणे कार्यक्रम में वक़्तु आहे तव्हांजे मनपसंदि गीत संगीत जो। अचो त मज़ो था माणियूं मास्टर चंदर ऐं साथियुनि जी आवाज़ में हिन सुहिणे कलाम जो।

दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही सिट्टू खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आखिर कह न बुद्धियों हुंदियों। 18 जून रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस करे मल्हायो वेंदो आहे। वाराणसी में ॼायल मणिकर्णिका तांबे, जंहिंखे अॻिते हली रानी लक्ष्मीबाई सॾायो वियो, सां मार्शल आर्ट, निशानेबाज़ी ऐं घुड़सवारी में माहिर हुई। 1842 में संदसि संगु झांसी जे महाराजा गंगाधर राव सां थियो। गंगाधर राव जे गुज़ारे वञण खां पोइ अंग्रेज़नि जी हड़प नीति जी ख़िलाफ़त कंदे रानी लक्ष्मीबाई ललकार कई ऐं चयाईं त मां पंहिंजी झांसी कंहिं बि हाल में न ॾींदसि। 18 जून 1858 में ग्वालियर जे पासे कोटा जी सराय में बहादुरीअ सां अंग्रेज़नि जो सामनो कंदे रानी लक्ष्मीबाई पंहिंजी मातृभूमिअ लाइ बलिदान ॾिनो। ही ॾींहुं अलवतनी, बहादुरी ऐं नारी सशक्तिकरण जी मिसाल पेश करे थो। रानी लक्ष्मीबाई जो ही बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जी तवारीख में सदा ही अमर रहंदो। हाणे कार्यक्रम में अचो त ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में गोवर्धन भारती पारां लिखियलु ही गीतु।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे काव्य पाठ जो। आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां नींढ ॾिनी आहे कवियत्री अनीता लाला जी खे, त अचो गॾिजी मज़ो था माणियूं अनीता जी जी कुझु बहितरीन रचनाउनि जो।
1: जय झूलेलाल। मुंहिंजी पहिरीं रचना आहे नाज़ुक रिश्ता। जंहिंखे बि छुई ॾिसो सोई भॻल टुटल आहे, नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। जंहिंखे बि छुई ॾिठो सोई भॻल टुटल आहे, नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। ॾिसण में त सभु माण्हू लॻनि था मुकमल ॿाहिरियां, पर अंदरऊं अलाए छा आहे, हॾ हॾ में सूर भरियल आहे। नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। सुविधाऊं पैसनि सां वरितियूं, रुतबो समाज में आहे। गाॾियूं बिल्डिंगूं सभु आहिनि, पर बूथ सभिनी जो लथल आहे। नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। नज़रूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। नज़रूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। ही क्रॉकरियूं, हे बासण सभु असां ते खिलनि था। नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। मानीअ जो मोल कोन्हे, मानीअ जो मोल कोन्हे। बाज़ार खाधनि सां भरियल आहे, बस मोबाइल हुजे सॼो ॾींहुं, इते ई त ज़िंदगी रुकियल आहे। सुहिणा हुया उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमा, सीरो खाइण जो दिलि आहे। सुहिणा हुआ उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमा, सीरो खाइण जी दिलि आहे। हू ॾींहुं विया उॾामी, पेट सभिनी जो भरियल आहे। साईं जी मेहर हुजे, बाक़ी त सभु ॼण वियल आहे। कंहिंखे धीअनि जी चिंता, कंहिंखे धीअनि जी चिंता। को पुटनि सां रुठल आहे, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं। जीवन जॾहिं छलियल आहे, नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। हिकिड़ी हास्य रचना। एयरपोर्ट वारो मूंखे इहो ॿुधायो, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। भॼंदे टुकंदे टैक्सियुनि में वेही, ॿ कलाक पहिरियों पाण खे पहुचाए। पर पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। रेलगाॾी सुहिणी, माण्हू बि सुठा, कूली बि आहिनि, चांहि वारा बि मिठा। सामान भी गड आ, खादो भी गड आ। हर को मानू रेल में मौज थो मनाए, पर एयरपोर्ट वारन के मानू न थो भाए। घर सा वेब चेक इन था कयूं, एयरपोर्ट ते चेक इन। वरी सामान स्कैनिंग, वरी सिक्योरिटी चेकिंग। वरी सामान स्कैनिंग ऐं सिक्योरिटी चेकिंग। पैसेंजर वीचारो चेकिंग जे चकर में, कॾहिं बेल्ट पर्स कढी जूता तो लाहे। पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। एयर होस्टेस तव्हांजी कुझु नओं न सिखी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी। ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी। अड़े कुझु त नओं सेखारियो, पाण खे सुधारियो। अॼु एआई जो ज़मानो किथे वेठो आहे, एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। आख़िर में बि त ड्रिजी ड्रिजी लहूं था, सामान मिलंदो सॼो इहो ई सोचूं था। सामान जो सिस्टम, बेल्टनि जो सिस्टम, नंबरनि सां तव्हां छो नथो हलाए। पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। छा ॿुधायां यारो, मुंहिंजी ही पेती सभिनी खां आख़िर में इठलाए वेठी सबनी का आखिर में इठलाए वेठी मुझा घर वारा घूरन मुखेता को भी पंहिंजा सूर भला कंहिंखे ॿुधाए एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। मुझे अगली रचना असांजा सभई कम ऑनलाइन हली विया गीत जे रूप में पेश थी कयां। असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया ऑनलाइन हली विया माण्हुनि जो मोल घटिजी विया असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बिजलीअ जा बिल बि पाणीअ जा बिल बि बिजलीअ जा बिल बि पाणीअ जा बिल बि तरह तरह जा टैक्स घर वेठे भरिजी विया असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बुहारी असांजी रोबोट थो पाए कपड़ा मशीनुनि में हर को सुकाए बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया असांजा महिनतुनि जा कम हे मशीन ॾे विया। घर जो किरानो ऑनलाइन घुरायूं कपड़ा लटा बूट शूट सभु घर वेठा आणियूं माउ जी जॻह ते हा माउ जी जॻह तो ज़ोमेटो टोमेटो खणी विया असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ड्राफ्टिंग ऐं चिठियूं एआई थो ठाहे अरे डॉक्टरनि जा कम बि एआई ॿुधाए तरह तरह जी टिकटूं मोबाइल थो कराए तरह तरह जूं टिकटूं मोबाइल थो कराए लाइन में बीहण जो आनंद फिटी वियो आहे भाॼियूं वठण जो आनंद फिटी वियो आहे असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो असां चवूं तव्हां सिहत था गवायो अहिड़ी ई बहसुनि में अहिड़ी ई बहसुनि में परिवार फिटी विया असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया।
0: महिरबानी अनीता जी हिन सुहिणी पेशकश लाइ मूंखे पूरो विश्वास आहे त तव्हांजी रचनाऊं असांजे श्रोताउनि खे सोचण लाइ मजबूर ज़रूरु कंदियूं। दोस्तो तव्हां सभिनी पढ़ियो ऐं ॿुधो ई हूंदो त हाणोकी भारत सरकार खे देश जी सेवा कंदे 12 साल गुज़री विया आहिनि। इन टाणे समाज जे हर तबिके लाइ ऐं हर खेत्र में कम कया विया आहिनि। 80 करोड़ खां वधीक आबादीअ लाइ मुफ़्त राशन मुहैया कराइणु हुजे या शौचालय जी सुविधा ॾियारे जीवन सवलो करण जो कमु हुजे स्वास्थ्य जे खेत्र में आयुष्मान भारत ऐं जन औषधि केंद्र जहिड़ा कम अटल टिंकरिंग लैब ज़रिए युवाउनि खे नवां वझ ॾियारण जहिड़ा कम हारियुनि लाइ फसल बीमा किसान क्रेडिट कार्ड जहिड़ियूं सुविधाऊं मेट्रो नेटवर्क वंदे भारत ट्रेनूं अटल सेतु चिनाब रेल ब्रिज जहिड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रिए राष्ट्र निर्माण या आत्मनिर्भर भारत जी संकल्पना ही सभु गुज़िरियल 12 सालनि जो हासिलु आहे। कुल मिलाए चई सघिजे थो त ही 12 साल विश्वास विकास ऐं जन कल्याण जा साल रहिया आहिनि।

दोस्तों इन्हें सा गड़ी अद असा तव्हां के ध्यान देण था चाहियूं प्रधानमंत्री जे 15 सूत्रीय कार्यक्रम जी जहन जो लक्ष्य आहे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जे आर्थिक नजरिए कमजोर तबके ताहीं सरकारी योजनाओं जो फायदो हिक सरयो पहुंचाएं। ही कार्यक्रम हिक जतन आहे अल्पसंख्यकन के शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सामाजिक न्याय जेड़े खेत्रन में सशक्त ठाहिण जो इन्हें जे तहत कोशिश रहे थी त सभिनी सरकारी योजनाओं जीअं त छात्रवृत्ति योजना समग्र शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत वगैरह जो कुल बजट जो हिक हिस्सो अल्पसंख्यकन ताईं पहुंचाइण लाइ निर्धारित जरूर करे सघिजे। साल 2006 खां हलंदड़ ही कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय जी निगरानी में रहंदो आहे। पोइते रहिजल तबके खे मुख्य धारा सां जोड़ण ही हिन कार्यक्रम जो उद्यम आहे। ऐं दोस्तों इन ज़रूरी ॼाण खां पोइ अचो त हलंदे हलंदे कार्यक्रम में ॿुधूं था कला हज़ारी कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में अर्जुन हासिद पारां लिखियलु गीत।

दोस्तों, इन गीत सां गडी असांजे अज जे कार्यक्रम जो वक्त बि पूरो थो थिए। उमेद आहे त तव्हां खे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजिबो, सभ जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है कमल खस का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। राजगढ़ जिले में वर्षों से रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे कुरावर और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गुरुवार का दिन नई उम्मीद लेकर आया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने विशेष निरीक्षण ट्रेन से कुरावर श्यामपुर रेलखंड का निरीक्षण कर ट्रैक सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संकेत दिए कि यदि शेष कार्य समय पर पूरे हो गए तो जनवरी 2027 से भोपाल कोटा रेल कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक सभी लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है। निरीक्षण के लिए पहुंची विशेष डीजल इंजन युक्त ट्रेन को देखने के लिए कुरावर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। पूरे दिन स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने भोपाल रामगंज मंडी रेल मार्ग में घटोली से लेकर राजगढ़ तक के रेल मार्ग का निरीक्षण कर मंजूरी दी, जिसके बाद जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में कोटा से राजगढ़ तक रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। भोपाल कोटा रेल संपर्क से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं व्यापार, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। मौसम की अगर बात करें तो जिले में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मानसून की संभावित दस्तक से पहले आसमान में काले बादल मंडराने लगे हैं और बीच बीच में आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल रहा है। उधर मानसून के आगमन से पहले जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। किसान खेतों में जुताई, बखरनी और अन्य कृषि कार्यों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों पर खाद बीज की मांग भी बढ़ने लगी है। इस बार मौसम विभाग औसत से कम बारिश का अनुमान लगा रहा है, जिसके चलते इस बार खरीफ फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे किसान अपनी फसलों के रकबे में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी अनुमान के हिसाब से कृषि विभाग ने भी फसलों की बोवनी के लक्ष्य में रकबे में परिवर्तन किया है। इस बार सोयाबीन के रकबे का लक्ष्य कम किया गया है तो मक्का, उड़द और तिल का रकबा बढ़ाया गया है। पिछले खरीफ सीजन की अगर बात करें तो जिले में 2,05,251 हेक्टेयर में मक्के की बोवनी की गई थी, जबकि इस सीजन में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3,08,800 हेक्टेयर का रखा गया है। जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना सप्तक ने बीते दिनों सिविल अस्पताल ब्यावरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर मरीजों

0: को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने भ्रमण के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का विस्तार से निरीक्षण बीते दिनों किया। इस दौरान कमिश्नर ने मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीते दिनों ब्यावरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन के माध्यम से 200 यात्रियों को रवाना किया गया। पहली बार ब्यावरा से अयोध्या तक एसी ट्रेन की व्यवस्था की गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बीते बुधवार को खिलचीपुर, जीरापुर और माचलपुर क्षेत्र की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ई टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में 16 जून को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक जिनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं से स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस युवा संगम कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिले में एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा दिव्यांगजनों को एल्मिको तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उज्जैन के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, चिन्हांकन और उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न तिथियों को किया जाएगा। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार और सांसद रोडमल नागर ने ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया मंडल क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों, वरिष्ठजनों और प्रबुद्धजनों का सम्मान कर उनसे संवाद किया। वहीं अधिक मास में विभिन्न स्थानों पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। भैंसवा माता धाम पर 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कराया गया तथा जिले में अलग अलग जगहों पर विशेष यज्ञ व भागवत कथा के आयोजन किए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था कमल खसका, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। इस कार्यक्रम में हम आपकी ही फरमाइशी गीतों तक को आप तक ही पहुंचाते हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस फरमाइशी गीत से।

साथियों, ये फरमाइशी गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। बोल साहिर के थे और संगीत दिया था जावेद अख्तर ने। इसके लिए हमारे पास फरमाइश आई थी, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और समस्त बालूजा परिवार की। इसी के साथ एक और फरमाइश आई थी सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक की। साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, लीजिए सुनिए इसी क्रम में अगला ये फरमाइशी गीत।

साथियों, ये फरमाइशी गीत आपने सुना फिल्म पुकार से। आवाज़ें थी शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। बोल जावेद अख्तर के थे और संगीत दिया था AR रहमान ने। इसके लिए फरमाइशी, हमारे पास फरमाइश आई थी व्हाट्सएप पर, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान और समस्त चौहान परिवार की। साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। इसी क्रम में लीजिए, सुनिए अगला ये फरमाइशी गीत, जिसकी फरमाइश हमें मिली है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से

निर्मला, विशाल, पीएस और समस्त साथियों की, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरेकर और साथियों की। इनकी फरमाइश है फिल्म बॉम्बे से, तो लीजिए सुनिए ये फरमाइशी गीत।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म बॉम्बे से, आवाज़ थी चित्रा की, बोल महबूब की थी और संगीत दिया था AR रहमान ने। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, लीजिए सुनिए इसी क्रम में अगला ये फरमाइशी गीत।

0: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म 1-2 का 4 से। बोल महबूब के थे, संगीत दिया था एआर रहमान ने, आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और सोनू निगम की। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश, और ये फरमाइशी गीत के लिए फरमाइश हमें की थी ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। इसी गीत के लिए एक और फरमाइश हमें भेजा था व्हाट्सएप पर राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। इनकी फरमाइश है फिल्म शर्मिली से। इसी फरमाइश पर एक और हमें फरमाइश भेजी गई है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। ये जो फरमाइश हमें भेजी है वो है फिल्म शर्मिली से, आवाज़ है किशोर कुमार की, बोल नीरज के हैं और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

0: श्रोता साथियों, आप सुन रहे हो व्हाट्सअप फरमाइश। जी हाँ, आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक ही पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आपकी अगली फरमाइश हमें मिली है फिल्म दीवार से। साहिर के बोल हैं आर डी बर्मन का संगीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
1: कह।

साथियों, ये फरमाइशी गीत आपने सुना पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारविसगंज बिहार से। ये फरमाइश हमें मिली थी प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बिमल और उनके साथियों की। इसी गीत के लिए हमें एक और फरमाइश मिली थी नवरतन हाता बाड़ी हाट पूर्णिया बिहार से, ममता रानी छवि अनोखी अर्पिता लाडो दीक्षा देव देवांशु और डब्लू की। श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश, लीजिए सुनिए अगला ये फरमाइशी गीत।

साथियों, ये फरमाइशी गीत आपने सुना फिल्म लव इन टोक्यो से। बोल हसरत जयपुरी के थे, संगीत शंकर जयकिशन ने दिया और आवाज़ थी मन्ना डे की। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। इस गीत के लिए फरमाइश हमें मिली थी रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से, श्रोतागण थे सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, प्रशांत सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा गोटके और समस्त सिंधे परिवार की। साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। लीजिए सुनिए अगला ये फरमाइशी गीत।

साथियों, इस गीत के लिए फरमाइश हमें मिली थी मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ और समस्त धाकड़ परिवार की। साथियों, अगली फरमाइश हमें मिली है चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। इनकी फरमाइश है फिल्म काय पूछे से। बोल हैं स्वानंद किरकिरे के, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और आवाजें हैं अमित त्रिवेदी और मिली नायर की।

इसी फरमाइशी गीत के साथ आपकी रेडियो साथी अर्चना को कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश से दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 10:58 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिसे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हिमाचल और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद विश्व कप में जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। वहीं आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आइए जानते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन बनने वाले हैं। हेलो।
3: हाँ सर जी, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ सर, ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
2: स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। तो ध्रुवराम साहू जी, क्या करते हैं आप?
3: सर अभी तो खेती बाड़ी काम चालू है सर।
2: क्या बो दिया अभी खेती में?
3: बुआई नहीं की है सर, अभी तैयारी है
2: जी।
3: ग्रीष्मकालीन जुताई करवा दिए हैं
2: जी।
3: बस अब धान की थरहा रखना है सर खरीद के लिए।
2: धान बोएंगे? कहाँ से हैं आप?
3: बालाघाट से सर।
2: अच्छा हाँ, बालाघाट में तो धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, हमें पता है अच्छे से।
3: घाट का बीरसा ब्लॉक है सर, वहाँ गाँव है हमारा कनिया।
2: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
3: फिल्म का नाम है सर तहलका, और गीत के बोले हैं दिलवालों का डोला दिलदार की।
2: कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा?
3: सर अपन क्या किसानों को कहना चाहूंगा, जैविक खेती करें, ज्यादातर रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें।
2: आपने जो अभी खेत की तैयारी कर रखी है, ये कैसे खेत हैं? जैविक हैं या फिर
3: जैविक खेत है सर? जैविक अपन जो गोबर कंपोस्ट खाद है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
3: जी सर, जो रासायनिक खाद है डीपी यूरिया वगैरह, उसको कम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं।
2: चलिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट में।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करें, गीत सुने।
0: जी सर नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मैं ग्राम उजान बोल रहा हूँ, गेंदा लाल परिहार।
1: हाँ गेंदा लाल जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: ग्राम उजावन जिला सीहोर
1: जी। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
0: सर जी जानी दुश्मन फिल्म गाना है।
1: जानी दुश्मन कौन सा गाना?
0: इसके गाना है सारे रिश्ते नाते में तोड़ के आ गई।
1: यही गाना सुनने की कोई खास वजह?
0: नहीं सर, मनोरंजन के लिए सुनते हैं गाना।
1: नहीं नहीं, मनोरंजन के लिए तो हम सुनते ही हैं। कई बार कुछ गानों के पीछे कुछ मैसेज होता है, हम उसके लिए भी सुनते हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं, इस तरह की चीज सुनना चाहते हैं ना। और करते क्या है आप गेंदालाल जी?
0: सर में सिलाई काम है।
1: सिलाई का काम है, और सिलाई का काम करते करते आप गीतों का आनंद भी लेते रहते हैं, है ना? इसीलिए कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं हम तो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ठीक है, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो सर।
0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
1: जी सर, हम सतना से बोल रहे हैं।
0: अपना नाम बताएंगे?
1: रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: गाना हमको वो वाला सुनना है सर।
0: कौन सा?
1: अब्दुल्ला का।
0: अब्दुल्ला कौन सा गीत?
1: खुदा तेरे हर, ऐ खुदा वाला गाना।
0: ऐ खुदा तेरा हर फैसला,
1: हर फैसला मंजूर है।
0: बहुत बढ़िया गीत है। यही गीत सुनने की कोई खास वजह है?
1: सर खास वजह नहीं, पुराने सुनने वाले हैं 40 साल।
0: जी जी जी, ये मैसेज है इस गाने में, क्योंकि
1: बचपन से सुनते, जब रेडियो की दुकान थी छोटा सा लेके घूमते रहते थे।
0: रेडियो चीज ही ऐसी है, देखिए क्या होता है कि रेडियो सुनने से हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते भी रेडियो सुन सकते, हमारे काम का भी हर्ज कोई नहीं होता है ना। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें कि सुने।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यानी यमुना बेल्ट के किनारे से सर मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: बेटा सिंह यादव जी,
1: जी सर
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर बहुत धन्यवाद।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: कौन सर बोल रहे हैं सर आप?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आपसे पहले बात हो चुकी है एक बार मेरी।
1: दिनेश भैया आपसे ही बातचीत हुई थी हमें, तो सर जो गर्व फिल्म का सुनना चाहते हैं, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।
0: करते क्या है आप बेटा सिंह जी?
1: जी सर वैसे खेती किसानी का काम करता हूँ और किराने की दुकान जो भी है जो बंद रही है तो उसको खोलने के विचार किया हम।
0: तो चलिए मतलब खेती किसानी में अभी अभी क्या बोया है आपने खेत में?
1: अभी तो सर

0: जो भी धान की जो भी है ना वही बुवाई चालू किए हैं, और इसके बाद में भी थोड़ा बारिश हो जाएगी तो उसका लगवाई चालू कर देंगे।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो सेट।

0: फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ सर।
0: सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास?
1: हाँ, तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले।
0: वाड़ीले, तो कब बात हुई थी, इसके पहले कब फोन लगाया था आपने?
1: जी सर, आज 10 दिन हुए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे श्रोता बड़े जागरूक हो गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कॉल हम आप लोगों के नहीं आते हैं, अब 8-10 दिन बाद ही आप लोग लगाते हैं।
1: तो 8-10 दिन बाद कॉल लगाया सर, वो जो नियम का पालन कर रहे हैं।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या सुनना चाहेंगे देवीदास जी आज?
1: बता रहा हूँ
0: जी,
1: गायकर
0: के
1: और गीत के बोले, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।
0: अच्छा चलता हूँ दुआओं में
1: याद रखना।
0: अच्छा, यही गाना सुनने की कोई खास वजह है, कुछ मैसेज है, किसी को कहना चाह रहे हैं?
1: अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है।
0: आवाज अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है, निश्चित ही गाना बहुत बहुत सुंदर है। तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, हमारी किससे बात हो रही है?
1: मेरा नाम महर्षि गर्ग है।
0: ठीक है महर्षि जी, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: मेरी जंग फिल्म का।
0: कहाँ से हैं पहले ये बताइए ना।
1: श्रीनगर जिला महोबा।
0: गीत के बोल बताएंगे?
1: देखिए हर कदम एक नई जंग है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आप समझती है ऐसा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है? अच्छा क्या करती हैं आप?
1: सर मैं लड़का हूँ।
0: अच्छा आप लड़का है तो महर्षि आपका नाम है ना? तो क्या करते हैं महर्षि जी आप?
1: पढ़ते हैं।
0: पढ़ते हैं कौन सी क्लास में?
1: फिफ्थ क्लास में।
0: फिफ्थ क्लास में तो सिक्स क्लास में तो जिंदगी एक जंग है कैसे मानते हैं आप?
1: जिंदगी हर कदम एक जंग है, नई जंग है।
0: अच्छा आपको अच्छा लगता है गाना है ना?
1: हाँ।
0: ठीक है तो गीत गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। और कौन कौन है आपके घर में?
1: पापा मम्मी भैया बहन।
0: अच्छा पापा क्या करते हैं आपके?
1: दुकान है किराना की।
0: किराने की। और आप सिक्स हाँ। क्लास में पढ़ते हैं और बाकी जो बहन हैं और भैया हैं वो क्या करते हैं?
1: भैया की जनरल स्टोर है।
0: भैया की जनरल। अच्छा भैया बड़े हैं आपसे?
1: हाँ।
0: और जो दीदी है?
1: दीदी पढ़ती है।
0: कौन सी क्लास में?
1: एमएससी कर रही
0: है। एमएससी कर रही है, मतलब आप सबसे छोटे हैं।
1: हाँ।
0: अच्छा और मेरी जंग फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। गीत का आनंद लीजिए, आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाते हैं।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हेलो,
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं राजूलाल मेहर, गांव भिलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: राजस्थान से बोल रहे हैं आप, तो क्या करते हैं आप राजूलाल मेहर जी?
1: वैसे मैं कारीगरी का काम करता हूँ, मकान भी बनाता हूँ और
0: अच्छा।
1: खेती बाड़ी भी करता हूँ।
0: जब आपके पास खेती बाड़ी का काम नहीं होता होगा उस टाइम में आप कारीगरी का काम करते होंगे?
1: हाँ,
0: तो कारीगरी में क्या कारीगरी करते हैं आप?
1: मकान बनाने का।
0: मकान में कुछ ऐसा स्पेशल राजस्थान की बड़ी क्या है कि कुछ कलाकृतियों में बड़ी विशेषज्ञता है, तो आप किस तरीके से मकान बनाते हैं, सामान्य या कुछ स्पेशल?
1: सामान्य बना देते हैं हम तो, जैसे हमारे यहाँ झालावाड़ जिले में कोटा स्टोन की खाने हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत फेमस है यहाँ झालावाड़ की।
0: जी जी,
1: कोटा स्टोन की फैन।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे राजूलाल जी आप?
1: तो मुझे सुना है इंतहा हो गई इंतजार की।
0: इंतहा हो गई इंतजार की
1: जी।
0: कौन सी फिल्म का गीत है ये?
1: शायद शराबी का।
0: जी जी जी, इसी गीत को सुनने की कोई खास वजह?
1: और वैसे फिल्म देखी थी मैंने, यार एक बार और सुन ले।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो एक बार आपने सुनने की इच्छा की है तो सुना रहे हैं आपका ये मनपसंद गीत, तो गीत का आनंद लीजिए। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते। अब बताइए।
0: नमस्ते, मैं जगदीश चौहान फिल्टर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। मुझे गाना सुनना है।
1: कौन सा?
0: राजा और रंग का। माँ तू कितनी अच्छी है।
1: राजा और रंग का?
0: राजा और रंग का।
1: माँ तू कितनी अच्छी है।
0: हाँ,
1: तो यही गीत सुनने की कोई खास वजह है? राजा और रंग फिल्म का माँ तू गीत तो बहुत ही अच्छा है ना?
0: हाँ,
1: तो
0: माँ
1: क्यों?
0: से बहुत प्यार करते हैं सर।
1: माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ माँ भी आपसे निश्चित ही बहुत प्यार करती होंगी।
0: जी, बहुत चाहती मेरी माँ भी मैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि माँ का जो प्यार होता है ना,
0: जी
1: वो शायद दुनिया में सबसे अलग होता है। एक
0: सही
1: निस्वार्थ
0: बात है।
1: प्रेम होता है, और इसीलिए हर बच्चा, चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई भी हो, वो
0: कोई
1: माँ
0: भी
1: से इसीलिए जुड़ा होता है क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम मिलता है उसको वहाँ पर, है
0: सही
1: ना?
0: बात है, माँ से जुड़ा हुआ सब।
1: माँ से जुड़ा हुआ है और माँ से ही हम हैं। गीत आपने बहुत ही अच्छा पसंद किया है। गीत आ रहा है आपका, आपके रेडियो सेट पर। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इसी गीत के साथ फोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत के स्टार्टअप्स तथा नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा है कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पांडुलिपि संरक्षण अभियान के लिए पांडुलिपि धारकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें अभियान से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 10,24,571 पांडुलिपियां होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद में इस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय आरके कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे होगा और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोतों, कार्यक्रम में पहला पत्र हमने शामिल किया है, भोपाल से ये पत्र हमें मिला है। पत्र लिखने वाली हैं कुसुम कीर, ज्योति वर्मा, अर्जुन वर्मा, अंश, परी, मिष्टी और लक्ष्मी। ये सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत है SD बर्मन का। तो आइए इनके साथ हम भी सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फकीरा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का, पसंद आप सब श्रोताओं की। डॉक्टर संस्कृति कुल्हारे, वैदेही, सौम्या, रेवती, अंशिता और इनके मित्रों ने पत्र लिखा है कोलार रोड भोपाल से। गौतम नगर नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फकीरा फिल्म का ये गीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से हमें पत्र मिला है जूही, शुभी, श्रुति, भारती, दक्ष और मनीष वर्मा का। तो आइए सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है येसुदास और हेमलता ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ये गीत सुनना चाहते हैं। ये पत्र हमें इन्होंने लिख भेजा है सारणी ज़िला बैतूल से। इसी गीत को सुनना चाह रही हैं सुमन, दिव्यानी, दिव्य, निक्की और इनके परिवार के सदस्य। ये पत्र जबलपुर से हमें मिला है। राग रोली और प्रशांत दुबे ने भोपाल से इस गीत को सुनना चाहा है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सब श्रोताओं की है। जीशान वारसी इस गीत को सुनना चाहते हैं बरेली से, अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब नावेद, इन्होंने हमें मुरादाबाद से पत्र लिख भेजा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बंडा सागर के श्रोता कृष्णा, जिया, मोना, रश्मि, संध्या, दीपिका और प्रियंका। औरंगाबाद के कुछ श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है, राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सदस्य, इन्होंने ये पत्र हमें लिखा है औरंगाबाद से। तो आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का ये नगमा।

0: मिलन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नशा करते करते शिबू को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नारायणी लिचू को नशा करवाने के लिए कोसती है। होश में आने पर शिबू नारायणी से माफी मांगते हुए फिर ऐसा न करने की शपथ लेता है। शंभू और भृगु हड़ताल से फैल रही भुखमरी पर करुण चर्चा करते हैं और बेरोजगारी को देश के लिए कोढ़ बताते हैं। ठाकुर साहब लिचू को फेंकने के लिए जो कबाड़ देते हैं उनमें से उसे एक बोतल मिलती है। लिचू और शिबू मिलकर नशा करते हैं। तब शिबू कहता है कि वो औरत से डरने वाला आदमी नहीं है। यशवंत बलबीर स्वामी से हड़ताल को लेकर बहस करता है और लोकल लीडर शास्त्री जी से मिलवाने के लिए कहता है। दोनों शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री उनसे फंड का इंतजाम करने के लिए कंपनी का स्टील, सीमेंट, लोहा आदि बेचने के लिए कहता है। यशवंत ध्यान दिलाता है कि कंपनी ने इन सामानों को बेचने के लिए कोटेशन मंगवाए हैं। शास्त्री कोटेशन देने वाले व्यापारियों को पीट पीट कर भगा देने के लिए कहता है। ये सुनकर यशवंत और बलबीर स्वामी चौंक जाते हैं। अब आगे।

0: अब तुम्हारी यूनियन क्या कर रही है रामू बामू?
1: हुजूर, सुनने में आया है कि यशवंत और बलबीर स्वामी शास्त्री जी से मिलने गए थे।
0: अच्छा, तो शास्त्री जी ने क्या कहा?
2: सरकार, शास्त्री जी सन 1975 में यूनियन और कंपनी के बीच हुए समझौते को इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती हुआ समझौता साबित करना चाहते हैं।
1: सरकार,
2: सुनना है वो कोई सबूत भी पेश करने वाले हैं सरकार।
1: और अगर ऐसा हो गया माई बाप तो कंपनी कहीं साई के पानी में।
0: नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे रामू बामू, हम ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।
2: आप क्या करने की सोच रहे हैं?
0: अभी ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, जब समय आएगा तो तुम भी जान जाओगे।
1: ठीक कह रहे सरकार। ठाकुर साहब की जय हो,
2: जय हो।
1: आप तो जो भी कदम उठाएंगे कंपनी के हित में ही उठाएंगे सरकार।
0: क्यों भाई रामू बामू, सुना है कि यूनियन के साथ तुम दोनों की कोई गुप्त सभा हुई थी।
2: सरकार, आपने बिल्कुल ठीक सुना है सरकार।
0: तो क्या यूनियन ने तुम दोनों को कोई खास काम सौंपा है?
1: हाँ हुजूर, कंपनी ने पुराना सामान बेचने के लिए कोटेशन मंगाए हैं ना, तो अब कोटेशन देने वाले व्यापारियों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाए।
0: तुम लोग क्या करोगे?
1: पूरा इंतजाम है साहब, साई नदी गवाह रहेगी और हम मशीनों के पुराने बचे हुए टुकड़े और पुर्जों को खरीदने वाले व्यापारियों को मार पीट के भगा देंगे।
0: क्या तुम लोग कंपनी के खिलाफ कदम उठाओगे?
2: अरे नहीं नहीं सरकार, भला हमारी क्या वजह, क्यों क्यों क्यों रामू, जो हम कंपनी की मुखालफत करें?
1: अरे नहीं सरकार, जरा सोचिए, अगर हम व्यापारियों को मार पीट कर भगा दे तो क्या होगा?
2: क्या होगा?
1: यहाँ पर हिंसा फैलेगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल करने वालों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगेगा।
1: हाँ सरकार, और पुलिस वालों की संख्या दोगुनी।

0: हो जाएगी।
1: हाँ सरकार, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा
0: और इसी में तो कंपनी का फायदा
1: है।
2: अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, बुद्धिमान भी हो।
0: सरकार की मेहरबानी।
2: ये लो अपनी बोतल, विलायती है।
0: ठाकुर साहब की जय हो।
2: बस बस बस, तुम लोग इसी तरह यूनियन की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना, बस तुम्हें इसी तरह बोतल मिलती रहे।
3: देखा बलबीर स्वामी, शास्त्री जी की बात मानने का क्या नतीजा निकला?
4: यशवंत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिटने वाले व्यापारियों ने हड़तालियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है, चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है।
3: अरे पुलिस ने हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अब क्या होगा बलबीर? अरे कब तक हम मुख्यालय से मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा।
4: हम गिरफ्तार हुए साथियों को छुड़ाने के लिए जुलूस निकालेंगे, कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे।
3: लेकिन प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास फंड कहाँ है बलबीर?
4: तो मजदूरों से चंदा इकट्ठा करो।
3: वाह वाह बलबीर स्वामी वाह, हमारे मजदूर भाई भूखे पेट रहकर भी आप लोगों पर विश्वास करके हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और एक तुम हो जो मजदूरों की खाल तक उधेड़ लेना चाहते हो। जानते हो कल क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
3: अरे हमारे दो मजदूर किसानों से गेहूं मांगने गए, तो किसानों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारे टूटी कमर लेकर सरकारी अस्पताल में पड़े हुए हैं।
4: ये कैसे हो सकता है? किसान तो हम मजदूरों के साथ हैं। तुम्हारे सामने ही तो सबने मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे ना।
3: बलबीर, सुना है कि ठाकुर साहब ने किसानों के मुखिया को खरीद लिया है।
4: ओह तो ये बात है, इसका मतलब पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है।
3: अब तुम ही बताओ बलबीर कि हम लोग क्या करें? अगर मजदूरों पर ऐसे ही दमन चक्र चलता रहा तो हड़ताल तो बीच में ही टूट जाएगी।
4: अरे कंपनी का मकसद भी तो यही है कि हड़ताल टूट जाए।
3: क्या?
4: मगर हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे।
3: तुम्हारा चरित्र मैं आज तक नहीं समझ पाया बलबीर स्वामी।
4: तुम कहना क्या चाहते हो यशवंत?
3: अरे कभी तो मुझे लगता है कि तुम शास्त्री जी के साथ मिलकर हम मजदूरों के साथ छल कर रहे हो, और कभी लगता है कि तुम सच्चे मन से हमारे साथ हो।
4: देखो यशवंत, सच बात तो यह है कि ताकत के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और वो ताकत शास्त्री जी के पास है। उनकी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जान पहचान है। ऐसे में उनकी ताकत का मजदूरों के हित में इस्तेमाल करने के लिए उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, वरना हकीकत तो यह है कि मैं तन मन धन से मजदूरों के साथ हूं।
3: अच्छा तो फिर मेरी एक बात मानोगे?
4: जरूर।
3: बलबीर, क्यों ना मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों का इंतजार करने की जगह हम अपना प्रतिनिधि मुख्यालय भेजे।
4: विचार तो तुम्हारा अच्छा है।
3: तो फिर विलंब क्या है? अब क्या शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हो?
4: नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ एक सुझाव और है मेरे पास।
3: सुझाव? अब कैसा सुझाव, जरा मुझे भी बताओ।
4: हम थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके कंपनी के दफ्तर पर बेमियादी धरना देंगे, और जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात नहीं करते तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे।
3: बलबीर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, चलो अधूरी तैयारियों को पूरा करें।
4: हाँ चलो ये चलो आप।
5: नारायणी काकी, राम राम काकी।
6: राम राम।
5: कहाँ से आ रही हो?
6: अरे नारायणी, तेरे पास कुछ खाने को है? हमारे पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया।
5: काकी क्या बताऊं, मैं खुद 3 दिन से भूखी हूँ, और मेरा मुन्ना भी खालिस पानी पर जिंदा है।
6: अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमारी बात किसी ने नहीं मानी।
5: लेकिन काकी तुम खलासी लंगर की तरफ से कैसे आ रही हो?
6: अरे गई तो थी 2 रोटी का इंतजाम करने, रोटियां तो नहीं मिली।

0: लेकिन हाँ, यूनियन की सच्चाई का पता लग गया।
1: यूनियन की सच्चाई? मैं समझी नहीं काकी।
0: हम मजदूर लोगन के खून पसीना की गाड़ी कमाई यूनियन के नेता दारू में उड़ा रहे हैं। अब तक बैठे हैं खलासी लंगर में वो दोनों गद्दार।
1: क्या? हाँ।

0: भाई वाह वाह बलबीर भाई वाह।
1: कालू भाई ये ले एक पैग और ले।
0: अरे वाह वाह वाह एक पैग और भाई वाह, पीने पिलाने का तो मजा ही कुछ और है। देखो भाई बलबीर, हड़ताल करें मजदूर, चंदा दे मजदूर, भूखे मरे मजदूर, और चंदे के पैसे से मौज मस्ती करें हम, यानी के यूनियन के नेता।
1: धीरे बोल धीरे कालू, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
0: अरे बलबीर भाई, तुम यूनियन के अध्यक्ष हो।
1: हाँ।
0: और मैं
1: सेक्रेटरी।
0: सेक्रेटरी शास्त्री जी का हाथ भी तो हमारे सर पर है। देखो भैया, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का।
1: लेकिन कालू, डरना सीख, डरना सीख। किसी से भले ही मत डर, लेकिन लेकिन यशवंत से तुझे डरना चाहिए।
0: यशवंत? अरे कौन यशवंत? हो, वो दलित नेता?
1: हाँ बिल्कुल वही।
0: अरे छोड़ यार बलबीर, उस मच्छर से क्या डरना। हाँ
1: अरे यार कालू, मत भूल कि एक मच्छर से मलेरिया की महामारी हो जाती है। और ये महामारी इंसान को मौत के आगोश में पहुंचा कर ही पीछा छोड़ती है।
0: यार बलबीर,
1: हाँ।
0: मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। हाँ। देख बलबीर, उसे तो जब कहे ना तब उसे मसल कर रख दो।
1: अरे अरे कालू, मत भूल कि साई के 4000 मजदूर उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो भी मजदूरों के लिए मरने मारने पर तैयार रहता है। अगर अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी इस मौज मस्ती पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। शास्त्री जी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, सो अलग।
0: भाई बलबीर, मुझे तो लगता है कि ये शास्त्री जी कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं यार।
1: अरे अब हमसे क्या, अब भाई हम तो ठहरे छोटे नेता, और वैसे भी शास्त्री जी ने यूनियन के एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया है। सबका सब पैसा हमारे पास है।
0: अच्छा,
1: फिर हमें उनके बड़े गेम से क्या लेना देना।
0: अरे अरे ठीक कहते हो भाई। अच्छा भाई बलबीर, इसी बात पर एक पैग और हो जाएगा।
1: चालू अभी लो।
0: अच्छा।

0: आजकल यूनियन में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। क्या यही सब करवाने के लिए मजदूरों की हड़ताल करवाई थी?
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी, अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: अब समझ में क्यों आएगा, यूनियन के नेता हमारे चंदे पर गुलछरे जोड़ा रहे हैं। कम से कम मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन आप भी ऐसे ही निकले।
1: देखो नारायणी, पहेलियां ना बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
0: पहले सुना था कि आपने यूनियन के पैसे से अपने लिए नया खादी का कुर्ता पजामा खरीदा है, तब मैंने विश्वास नहीं किया।
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
0: लेकिन जब पता चला कि यूनियन के नेता यूनियन का पैसा खलासी लंगर में दारू में उड़ा रहे हैं, तो जाकर एहसास हुआ कि उस समय मैं गलत थी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
1: नहीं, ये झूठ है नारायणी।
0: चिल्लाओ मत यशवंत बाबू, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल सकता।
1: तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी बात का यकीन करो नारायणी, यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
0: गलत फहमी? यशवंत बाबू, गलत फहमी में तो साई के सारे मजदूर आज तक जी रहे हैं। जिसे अपना मसीहा समझा, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी इंसान ने विश्वासघात किया।
1: नारायणी,
0: लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, चीख चीख कर सबको बता दूंगी। फिर देखना, जिन मजदूरों के साथ तुम लोगों ने छल किया है, वही मजदूर तुम सबको साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
1: होश में आओ नारायणी, मेरी बात का तुम यकीन क्यों नहीं करती? अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनियन के किस नेता की बात कर रही हो जो यूनियन का पैसा दारूबाजी में उड़ा रहा है?
0: बलबीर स्वामी और कालूराम।
1: क्या, बलबीर स्वामी और कालूराम?
2: भाई बाबू,
3: बोल रहा हूँ,
2: आजकल तो हमारी पांचों उंगलियां घी में है और सिर कड़ाई में।
3: तू सच कह रहा है रे, एक कंपनी की पुरानी मशीनों के कल पुर्जे और दूसरी चीजों को चुरा चुरा कर हम बेच रहे हैं।
2: और हमें इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं।
3: और जब कंपनी के अधिकारियों को इस चोरी का पता चलेगा
2: तो उनका शक सीधे हड़ताली मजदूरों पर जाएगा।
3: रामू, तूने कुछ सुना?
2: नहीं भैया बाबू, अगर तूने सुना है तो मुझे भी बता दे।
3: हाँ सुनाता हूँ। वो क्या है कि रोज शाम अंधेरा होने के बाद कोई औरत ठाकुर साहब के पास जाती है।
2: औरत? अरे क्या बात करता है।
3: अरे 16 आने, सच कह रहा हूँ भैया, 16 आने सच।
2: लेकिन तुझे कैसे पता?
3: अरे मैंने स्वयं कई बार ठाकुर साहब के घर से एक औरत की परछाई को आते जाते देखा है।
2: अच्छा, लेकिन ये औरत हो कौन सकती है भैया बाबू?
3: अरे रामू, यही तो पता लगाना है।
2: तो ठीक है, आज रात हम ठाकुर साहब के घर के सामने वाले सागवान के पेड़ पर बैठकर निगरानी करेंगे। अरे पता तो चले कि वो चरित्रहीन औरत है कौन।
3: तूने बिल्कुल ठीक कहा।
2: तो चलो पेड़ पे,
3: आज रात मिलते हैं सागवान के पेड़ पे।
2: हाँ,

0: क्यों? कंपनी के अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। हमारे मजदूर हताश और निराश नहीं है। कंपनी के पास रुपए पैसे हैं, लेकिन हमारे पास हौसला है। हौसला बनाए रखो, जीत हमारी होगी। हमारा बेमियादी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते।
1: आवाज दो, आवाज दो।
0: शांत भाइयों, शांत। हमारे बीच कंपनी का आदमी आया है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है।
2: सुनिए, ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं से मिलना चाहते हैं।
0: साथियों, ठाकुर साहब ने यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। लगता है कंपनी हमारे आगे झुक गई है। हमारे

0: के लिए तैयार हो गई है। यूनियन की ओर से मेरे साथ कालूराम और यशवंत ठाकुर साहब से मिलने जा रहे हैं, तब तक आप लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठ जाइए। आओ यशवंत,
1: आओ कालूराम।
2: क्या फैसला हुआ है?
3: देखिए, कंपनी के अधिकारियों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि हम 60 मजदूरों को परमानेंट करने के लिए तैयार।
0: क्या? सिर्फ 60?
2: हाँ। 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60? ठाकुर साहब,
4: सिर्फ 60?
3: हाँ भाई, सिर्फ 60। इससे ज्यादा हमारे लिए संभव नहीं है।
0: ठीक है, ये प्रस्ताव हमें लिखित रूप में दे दीजिए।
3: ये भी संभव नहीं है।
0: क्यों?
3: कंपनी लिखकर नहीं दे सकती।
4: कमाल है, ये क्या हिमाकत है? कंपनी अपना ही फैसला लिखकर देने में क्यों आनाकानी कर रही है?
3: हाँ, देखिए, समझने की कोशिश करिए, कंपनी के पास हजारों विभाग हैं, इस तरह लिखकर देना बहुत मुश्किल काम है।
2: देखिए ठाकुर साहब, इस तरह तो फैसला हो नहीं सकता।
4: नहीं हो सकता?
3: तो ठीक है, करो हड़ताल, 1 साल 2 साल तक हड़ताल करते रहो, आखिर में हम ये केस सरकार के हवाले कर देंगे।
2: क्या?
0: चलो भाइयों, हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
2: हाँ।
0: कंपनी को यूनियन के सामने झुकना होगा। झुकना होगा कंपनी को यूनियन के सामने। यशवंत कालू, चलो यहाँ से।
2: आओ अनिल भाई,
4: चलो चलो यहाँ से।
2: मेरे ख्याल से हम लोगों को ठाकुर साहब की बात मान लेनी चाहिए।
4: अरे यशवंत, तू अभी नरम बांस है। अरे यही उम्र है कि तुम पके बांस की तरह अपने आप को ढाल सकते हो।
5: यशवंत भाई, यशवंत भाई।
2: हाँ,
5: जरा इधर तो आना।
2: अब क्या बात है लीचू?
5: भयानक दिन आएगा यशवंत भाई, बहुत ही भयानक दिन। तुम लोगों को नदी की बालू में जिंदा दफना देंगे लोग।
2: क्या क्या कहा लीचू? क्या हुआ रामू? क्या?
6: अरे भैया बाबू, चींटियों और मच्छरों ने काट काट के सारा शरीर लाल कर दिया। दर्द के मारे बुरा हाल है भैया।
4: वैसे एक बात बताओ रामू, यूनियन ने भी अच्छा काम दिया है कि निगरानी करो कि कोई औरत कंपनी के किसी दलाल के पास तो नहीं जाती है,
6: और अगर जाती है तो उसे पकड़ कर मार मार कर हड्डियां तोड़ देने का भी आदेश है।
4: और दारू की बोतल भी नहीं देंगे यूनियन वाले, कहते हैं कि ये हमारा फर्ज है।
6: अरे दारू तो हमें ठाकुर साहब से मिली जाती है, और ठाकुर साहब का ही आदेश है कि हम दोनों यूनियन से मिलते रहे।
4: हाँ?
6: ताकि उन्हें हमारे जरिए यूनियन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
4: हाँ? हमें मच्छरों से कटवा कर औरतों की रखवाली पर लगा दिया, खुद नाक बजा बजा कर सोते रहते।
6: अरे भैया बामू, कहीं वो औरत पार्वती तो नहीं?
4: अरे वो ही
6: भृगु की बहन।
4: वो सुना है कि वो लोगों को खराब कर रही है।
6: अब तो तेरा मतलब है कि ठाकुर साहब के पास पार्वती ही आती होगी?
4: अरे क्यों नहीं आ सकती वो?
6: अब हवा आ तो सकती है, आज उसे घसीट कर साई के बालू तक ले जाऊंगा।
4: साई के बालू तक ले जाऊंगा? अरे कैसे ले जाएगा?
6: अरे कैसे का क्या मतलब? मुंशीगंज में आने वाली सड़क पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है भैया।
4: रामू, रामू भाई, एक दिन साई के बालू के पास पार्वती को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था, तुरंत सती सावित्री बन गई भाई, गालियां देने लगी। अगर आज हाथ लग गई ना, तो रामू भैया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
6: मैं भी नहीं छोड़ूंगा।
4: लेकिन उसे साई की बालू पर लेकर नहीं जाऊंगा। क्या पता यूनियन वालों ने बालू में गोला बारूद रखा हो।

0: क्या हुआ रामू? उधर देखो, उधर वो झाड़ी की तरफ, वो बसाने वाली बबूल की झाड़ी हिल रही है,
1: हिल रही है, शायद वो आ रही है। अरे दम साधे बैठा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं कर रहा। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगी, एक साथ हम उस पर कूद पड़ेंगे।
2: दोनों भूतों से जान बचा लिए तो मुझे भागना होगा, नहीं तो मार भी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी।
1: भैया बाबू, ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
0: रामू वो देख, उधर पोटली गिरी पड़ी है, देख तो, उधर पोटली,
1: देखता
0: हूँ, देख देख इसमें क्या है, देख, अरे क्या है, क्या है पता?
1: कुछ पैसे और सूखी रोटियां है बाबू।
0: सुन चला, पैसे जेब में डाल ले, रोटी इसके हवाले कर दे,
1: ले चल।
2: लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे, मैं कहती हूँ मेरे पैसे वापस कर।
1: अरे चल नारायणी, तू भी ऐसा काम करती है, चल।
2: सुना नहीं, जानवर की औलाद, लौटा मेरे पैसे।
1: चल यहाँ से आगे बढ़, चल।
3: देख नारायणी, ज्यादा हल्ला करेगी तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। अरे हम सफाई कर्मचारियों की इज्जत, अरे तूने तो मिट्टी में मिला दी।
2: मेरा पति बीमार है, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, 5 दिन से भूखी हूँ मैं। क्या कभी किसी ने एक पैसा देकर मेरी मदद की?
3: अब
2: नहीं की ना, अब हड़ताल के नाम पर अन्न के दाने भी छीन रहा है। मैं कहती हूँ चुपचाप मेरे पैसे लौटा दे।
1: चुप रह,
2: मेरे पैसे, चुप, सुना नहीं, दे मेरे पैसे।
3: अरे नहीं देते, अरे करते क्या, तेरे को पुलिस के हवाले, सारी जिंदगी जेल में सकती रहेगी।
1: समझ ले,
2: मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने शरीर बेच कर पैसा कमाऊं, तुझे क्या, मैं कहती हूँ लौटा मेरे पैसे।
3: अरे सवाल लड़ाई, सवाल
1: लड़ाई, शरीर बेच।
4: कौन है रात के इस अंधेरे में?
1: भैया भाग ले, भाग ले,
4: देखो तो सही।
1: बाबू भाग ले।
4: हैं नारायणी, तुम इस वक्त?
5: संग्रहालय से, इसके अंतर्गत अभी आपने जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा भारत के स्टार्टअप्स और नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये जमा करेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में 150 जगहों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में एक संवाद में उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के

0: शासकीय आरएके कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैच होगा और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के संग। एक बज चुके हैं, अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के महिला सभा अंक में शामिल है कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, गीत संगीत और खाना खजाना में आम पापड़ और करारी कुल्फी की विधि। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं रक्तदान महादान। रक्त मानव जीवन का आधार है। दुर्घटनाओं, बड़े ऑपरेशनों, कैंसर, थैलेसीमिया, एनीमिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में रक्तदान किसी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। विज्ञान ने आज अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर ली है, लेकिन रक्त का कृत्रिम निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए रक्त की आवश्यकता केवल मानव द्वारा किए गए रक्तदान से ही पूरी की जा सकती है। बहनों, रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं बल्कि मानवता की सच्ची मिसाल है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाता है। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। सखियों, इस विषय पर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 14 जून को प्रत्येक वर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि चिकित्सकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कुछ ही समय में शरीर उस रक्त की भरपाई कर लेता है। रक्तदान करने से पहले स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है जिससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। यदि प्रत्येक स्वस्थ नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान करने का संकल्प ले ले तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। किसी जरूरतमंद को जीवन दान देने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन रक्तदान करके हम यह पुण्य कार्य आसानी से कर सकते हैं। बहनों, इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें, जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करेंगे। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। वे अनुभव, ज्ञान और संस्कारों का अनमोल खजाना अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष

परिवार, समाज और देश के निर्माण में लगाए हैं। उनके त्याग, परिश्रम और संघर्ष के कारण ही आज हम एक सुरक्षित और सुखद जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दुर्भाग्यवश आज के बदलते सामाजिक परिवेश में अनेक बुजुर्ग उपेक्षा, अकेलेपन और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कुछ बुजुर्गों को परिवार में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है या उन्हें बोझ समझ लिया जाता है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहनों, प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बुजुर्ग दुर्व्यवहार केवल किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं पर भी प्रश्नचिन्ह है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वह समाज अपनी जड़ों से कटने लगता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो युवा है, वे भी एक दिन बुजुर्ग बनेंगे। इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ पर बुजुर्ग सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभवों का मान करें। जो आज हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। यह हम सबको समझने की आवश्यकता है।

बहनों चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने प्यारे परिवार की। परिवार जीवन की वह पाठशाला है जहां प्रेम, त्याग, सहयोग, जिम्मेदारी और जीवन जीने की कला सीखी जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों, विश्वास और सहयोग का आधार है। परिवार ही वह स्थान है जहां व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा पाता है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता हमें अनुशासन, परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। दादा दादी और नाना नानी अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन की अनमोल सीख देते हैं। परिवार के बीच रहकर हम दूसरों का सम्मान करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और मिलजुल कर आगे बढ़ना सीखते हैं। बहनों आज जब अनेक लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं तब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आर्थिक मदद भेजते हैं, उसे हम प्रेषण कहते हैं। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। इन पैसों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, घर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हालांकि आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है लेकिन परिवार का वास्तविक आधार केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव है। परिवार के सदस्यों के बीच नियमित बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और समय समय पर साथ बिताए गए पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तकनीक के इस युग में दूर रहकर भी परिवार के साथ जुड़े रहना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। बहनों परिवार जीवन का आधार है, खुशियों का सुंदर संसार है, तो कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, रिश्तों को सहेजें, पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं और प्रेम, सम्मान तथा सहयोग से भरे एक सुखी परिवार का निर्माण करें, क्योंकि परिवार के संग ही जीवन जीने की कला पूर्ण होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। सखियों

लीजिए, साइकिल चलाइए और पेड़ लगाइए। एक ऐसा संदेश है जो हमें ज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण तीनों के महत्व को एक साथ समझाता है। यदि हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर बनेगा बल्कि समाज और प्रकृति को भी इसका लाभ मिलेगा। बहनों, रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, सूचना और जागरूकता का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। रेडियो के माध्यम से हमें समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी सलाह और विभिन्न सामाजिक विषयों पर उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती हैं। रेडियो सुनने से हमारी जानकारी बढ़ती है और हम देश दुनिया की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। सखियों, हमने बात की रेडियो की, अब बात करते हैं साइकिल। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इसके साथ ही साइकिल एक पर्यावरण अनुकूलन वाहन भी है क्योंकि इससे किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं होता। यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल का उपयोग करें तो ईंधन की बचत भी होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। पेड़ पौधे पृथ्वी के जीवनदाता हैं, वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वातावरण को संतुलित रखते हैं और धरती को हरा भरा बनाते हैं। वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति यदि वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सखियों, रेडियो हमें जागरूक बनाता है, साइकिल हमें स्वस्थ बनाती है और पेड़ पौधे हमारी धरती को सुरक्षित बनाते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी है कि इन तीनों बातों पे हम अमल करें।

सखियों बातें तो बहुत हो गईं, अब चलते हैं खाना खजाना की तरफ। गर्मी के मौसम में आता है फलों का राजा आम। आम से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं आम पापड़ बनाने की विधि। तो नोट कीजिए आम पापड़ में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए पके हुए आम 1 किलो, चीनी 200 से 250 ग्राम, काला नमक आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा हमें घी चाहिए थाली या ट्रे को चिकना करने के लिए। आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आमों को अच्छे से धोकर उन्हें आप छील लें और उनका पल्प निकाल लें। अब इस पल्प को मिक्सर में एकदम चिकना पीसकर तैयार कर लें और अब एक भारी तले की कढ़ाई में आम का पल्प डालें और मध्यम आंच पर पकाना शुरू करें। अब आप इसमें चीनी मिला लें। लगातार मिश्रण को चलाती रहें ताकि वो तली में चिपके नहीं। जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें आप काला नमक और इलायची पाउडर मिला लें। लगभग 15-20 मिनट पकाने के बाद मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा और अब एक बड़ी थाली या ट्रे में हल्का सा घी लगा लें, उसको चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को थाली में पतली और एक समान परत

में फैला लें। इसको आप 2 से 3 दिन तेज धूप में सुखाएं। रात में इसको अंदर रख दें। पूरी तरह से सूख जाने पर आम पापड़ को मनचाहे आकार में काट लें या रोल बना लें। लीजिए, खट्टा मीठा आम पापड़ बनकर तैयार है। यह आम का स्वाद लंबे समय तक संजो कर रखने का एक बेहतरीन तरीका है। सखियों, ये तो बात हुई आम पापड़ की। अब चलते हैं गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने की। जी हाँ, गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने का मज़ा ही अलग होता है। यह कुल्फी बाजार जैसी गाढ़ी, मलाईदार और स्वादिष्ट बनती है। तो नोट कीजिए, कुल्फी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, हमें चाहिए दूध 1 लीटर, चीनी 1/2 कप, मिल्क पाउडर 3 बड़े चम्मच, मलाई 1/2 कप, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, कटे हुए पिस्ता 2 चम्मच। कुल्फी बनाने के लिए एक भारी तले के बर्तन में दूध को उबाल लें। दूध को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए लगभग 1/2 होने तक पकाएं। अब इसमें मिल्क पाउडर मिला लें और साथ ही चीनी डाल दें और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर मलाई, इलायची पाउडर और साथ ही कटे हुए पिस्ता भी डाल दें। अब गैस बंद करें और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब कुल्फी के सांचों में इस मिश्रण को भर दें। 8 से 10 घंटे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, स्वाद में लाजवाब मलाईदार और करारी कुल्फी बनकर तैयार है। तो आप बहनों, इन गर्मी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दें अनुमति। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
6: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
4: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी केंद्र की ये प्रस्तुति। कलाकार हैं प्रकाश चंद झा और साथी।

और लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुने ये दादरा। कलाकार एक बार फिर प्रकाश चंद्र झा और साथी।

और इसी दादरा के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की गाई हुई कुछ गज़लें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है।

0: घनश्याम वासवानी की गाई हुई इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी शिवपुरी की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
5: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है।
4: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा। ये रहा

ये गीत आपने सुना कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन, कल्याणपुर और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के कसेली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। साथ ही देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल भारत विकास परिषद शाखा द्वारा महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए समितियों के साथ पुलिस ने बैठक की। आगरमालवा में कल आयोजित वर्चुअल कार्यशाला अनुगुंज में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मीडिएशन और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवे

0: और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को UPA सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला

0: ला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं

0: रहा था। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान है।
3: बच्चों जय हिंद।
4: जय हिंद।
3: बच्चों आ गया है रविवार, यानी खुशी, मस्ती और धमाल का दिन। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी सुषमा दीदी, लेकर आई हूँ आज आपके लिए हंसी, सीख और मनोरंजन से सजा हुआ आपका अपना कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों, इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं नन्हे नन्हे सितारों से, जिनकी मुस्कुराहट में सुनहरे भविष्य की चमक होती है और जिनके सपनों में होती है एक नए भारत की तस्वीर। तो नए दोस्तों से भी मुलाकात होगी बच्चों, पर पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं? इन गर्मी की छुट्टियों में मजे कर रहे हो ना? अरे अरे, गर्मी की छुट्टियां वही ना जो बस अभी अभी खत्म होने वाली है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है ना? पर क्या करें बच्चों, छुट्टियां है ना तो खत्म तो होगी ही, है ना? पर एक बात तो है बच्चों, समर वेकेशन होता बड़ा ही कमाल का है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नानी और दादी के घर की सैर की होगी, उनसे ढेर सारे किस्से और कहानियां सुनी होगी। तो कुछ बच्चों ने अपनी स्किल्स को सुधारा होगा, समर कैंप ज्वाइन किया होगा, तो कुछ बच्चों ने स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट और होमवर्क पूरा करने में समय बिताया होगा। सही कहा ना बच्चों? आज भी कार्यक्रम में हम हमारे दोस्तों से यही जानेंगे, लेकिन पहले बच्चों आपको बता दूं कि आज 14 जून है, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, हमारे जीवन में रक्त यानी खून कितना महत्वपूर्ण होता है? जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी हो या किसी को ऑपरेशन के दौरान ब्लड की जरूरत हो, तब रक्तदान किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। इस दिन यानी 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है ताकि हम उन सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दे सके जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। हालांकि आप बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे ही तो कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, है ना? बच्चों, कार्यक्रम में आज मिलेंगे कुछ नए दोस्तों से, लेकिन उसके पहले क्यों ना सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: गीत सुन लिया? बच्चों, गीत के पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ नए दोस्तों से मिलेंगे, तो चलिए मिलते हैं अपने दोस्तों से। सबसे पहले अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते दीदी, मेरा नाम भरती तन्मय वैष्णव है और मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इंदौर प्रथम पाली में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। पता है दीदी, अभी तो हमारा समर वेकेशन चल रहा है।
0: अरे वाह, अभी भी आपका समर वेकेशन चल रहा है। तो महती, ये बताओ कि स्कूल कब से शुरू होने वाले हैं आपके?
1: हमारी स्कूल वेकेशन के बाद 22 जून से खुलेगी दीदी।
0: अच्छा, 22 जून से आपके स्कूल शुरू होने वाले हैं। ये बताओ महती कि इन गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या क्या किया, कुछ नया सीखा आपने?
1: दीदी, वैसे छुट्टियों में कुछ नया तो नहीं सीखा, परंतु मुझे लिखने की जो रुचि है उसमें थोड़ा विकास करके कुछ नई कविताएं जरूर लिखी है। और तो और दीदी, इन छुट्टियों में मैंने पहली बार छोटे छोटे गद्य लिखने से एक कदम आगे बढ़ाते हुए श्री वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेकर एक कहानी लिखी।
0: क्या बात है, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर आपने कहानी लिखी है, तो हमारे दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ बताओ महती।
1: जी दीदी, इस कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन त्रेता युग का। इसमें मैंने घटनाक्रम पूर्णतः श्री वाल्मीकि रामायण से लिया है, पर अपनी इमेजिनेशन का भी यूज किया है। इसके माध्यम से मैंने श्री राम जी तथा उनके तीनों अनुजों के एक दूसरे के प्रति अधिक भ्रातृ प्रेम के लिए मेरी श्रद्धा को शब्द दिए हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन की विधि का भी इस कहानी में मैंने बड़ा क्रिएटिव यूज किया है। जैसे जब जब भी भाइयों पर संकट आता तो उनको अपने रक्षा सूत्र के ढीले पड़ जाने से मानो एक आभास हो जाता। बाल्यावस्था, गुरुकुल के दिन, विवाह के पश्चात वनवास, युद्ध, अयोध्या पुनरागमन, देवी सीता परित्याग व भूमि प्रवेश और अंत में भाइयों की सरयू जल समाधि, इन सब में मैंने उन चारों भाइयों तथा रक्षाबंधन को मुख्य विषय बनाकर यह कहानी लिखी है।
0: क्या बात है महती, वैसे सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इंतजार होगा आपकी इस कहानी का। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने गए थे या नहीं, या फिर बस कविताओं को, कहानी को लिखने में ही समय बिताया?
1: हाँ दीदी, छुट्टियों में मैं मेरे नाना नानी के घर गई थी। वहाँ हम सब ने खूब मजे किए। और अब जब स्कूल शुरू होने वाला है तो 10th क्लास में मेहनत करने के लिए एनर्जी पूरी फुल है। मेरा मानना है कि बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को प्रेशर और डर के साथ नहीं, पर फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। आखिर बोर्ड्स एक वार्षिक परीक्षा ही तो है। मुझे 10वीं कक्षा में आने पर कैसा महसूस हो रहा है, मैंने उस पर एक कविता लिखी है। क्या मैं आपको वो सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुना सकती हूँ महती। अब आप 10वीं में पहुंच गई हो, नई नई क्लास है, नया सब कुछ है, बोर्ड्स की परीक्षाएं हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे अक्सर 10वीं की बोर्ड्स परीक्षाओं से डर जाते हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कविता लिखी है तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। सुनाओ जरा।
1: इस कविता का शीर्षक है देखो अब आगे 10वीं में। यह कविता कुछ इस प्रकार है। छोड़ दिया जब जन्म स्थली को और पहुंची अपनी कर्म स्थली को, थी मैं केवल पहली में, देखो अब आ गए 10वीं में। जन्मी केवल 15 वर्ष विगत हूँ, तौर तरीकों से बस थोड़ी ही अवगत हूँ। छिपा है बचपना अभी भी मन में, देखो अब आ गए 10वीं में। कोमल थे जो झुंझुना थामने वाले हाथ, कठोर बने वही कलम चलाने वाले हाथ। कहां 10 माह की नवजात थी मैं माँ की गोद में, देखो अब आगे 10वीं में। काल चक्र से ज्यों ज्यों आयु मेरी बढ़ती गई, 10वीं के भैया दीदी प्रति इज्जत भी बढ़ती गई। पर अब देखने वालों से दिखने वालों की हो श्रेणी में, देखो अब आगे 10वीं में। कहानियों की दुनिया और चित्र बड़े चित भावन से सम्मुख विविध विषयों के लगने लगे हैं वामन से। हुई गजब की वृद्धि मेरे मन मस्तिष्क में, देखो अब आगे 10वीं में। आते ही बज गया है परिणाम की आकांक्षाओं का डंका, हो जाती है मन में मेरे कभी घनी सी शंका। पर डरना क्या,

0: मेहनत, निश्चय और अपनों का साथ है मेरे जीवन में। देखो अब आ गई दसवीं में। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आपने लिखी महती, और हम सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो दसवीं का बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चों के दिलो दिमाग पर, लेकिन आप इस मानसिकता के साथ दसवीं कक्षा में प्रवेश कर रही हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत सारी जिज्ञासा है, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना, तो तालियां तो बनती है ना। महती, कविता तो आपने बहुत अच्छी लिखी है और सुनाई भी बहुत ही बढ़िया अंदाज में है। अब हमें ये बताओ महती कि इन गर्मी की छुट्टियों में समर असाइनमेंट मिले थे आपको?
0: जी बिल्कुल दीदी, समर असाइनमेंट्स तो मिले ही थे और मैंने कंप्लीट कर लिए।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरे भी कर लिए। बहुत अच्छा लगा महती आपसे बात करके और आपकी कविताओं को सुनकर। अब मिलते हैं एक और हमारे नन्हे सितारे से, तो अपना नाम बताइए।
2: दीदी मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: आशुतोष, तो आशुतोष आपके स्कूल कब से शुरू होने वाले हैं?
2: दीदी मेरे स्कूल 16 जून को स्टार्ट होने वाले हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताओ आशुतोष, आपको इन गर्मी की छुट्टियों में कुछ असाइनमेंट मिले या नहीं?
2: दीदी मुझे इन गर्मी की छुट्टी में बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले थे और मैंने अपना दिमाग लगा के स्टार्टिंग में ही सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लिए, जिससे मैं बाकी पूरी गर्मी की छुट्टी में आराम से रह सकूं, खेल सकूं।
1: तो असाइनमेंट ही पूरा करते रहे या कहीं बाहर घूमने भी गए थे आशुतोष?
2: दीदी इन गर्मी की छुट्टी में हम बाहर घूमने गए थे और मुझे बहुत मजा आया और मैंने तो डांस भी सीखा है।
1: क्या बात है, डांस भी सीखा? भाई वो तो हमें देखना ही होगा, मगर पहले ये बताओ आज अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाले हो?
2: दीदी मैं अब आपको एक कविता सुनाता हूँ जो हम सभी बच्चों की मन के भाव बताती है।
1: सुनाओ।
2: गर्मी की छुट्टियां बीत गईं, मस्ती वाली घड़ियां बीत गईं, नानी का घर आमों का स्वाद अब बन गए हैं मीठी याद। सुबह सुबह अब उठना होगा, स्कूल का बस्ता उठाना होगा, दोस्तों से फिर मिलना है, नई कक्षा में खेलना है, थोड़ी खुशी थोड़ा है गम, छुट्टियों की यादें हैं संग, खेल कूद अब कम हो जाएंगे, होमवर्क फिर से आ जाएंगे, नई किताबें नए सपने, सीखेंगे हम अब कितने अपने, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, ज्ञान के दीपक फिर जलेंगे, छुट्टियों को कहें अलविदा, स्कूल को कहें नमस्कार, खुश होकर हम कदम बढ़ाएं, उज्जवल हो अपना संसार।
1: कविता तो आपने सुनाई आशुतोष, मगर ऐसा लग रहा है कि स्कूल खुलने से आप थोड़े कम खुश हैं, तो खुशी हो रही है या नहीं आपको?
2: दीदी अच्छा तो लग रहा है थोड़ा कि अब नए वापस से दोस्त मिलेंगे और नए दोस्त भी बनेंगे और पुराने दोस्त वापस मिलेंगे जो 2 महीने से नहीं मिले थे, पर बुरा भी लग रहा है कि अब लेट उठने को नहीं मिलेगा, स्कूल वापस स्टार्ट होंगे तो वापस सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे और फिर से वही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देने पड़ेंगे, इसलिए मिली जुली सी फीलिंग्स है। अच्छा भी लग रहा है पर ज्यादा बुरा लग रहा है, और मेरे हिसाब से सबको ही बुरा लगता होगा जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होती होंगी।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि गर्मी की छुट्टियां जैसे ही खत्म होती है ना, तो सारे बच्चों को बुरा लगता है। खुशी तो होती है कि हम फिर से वापस स्कूल जाएंगे, अपने पुराने नए दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से दादी नानी का घर, घूमना, देर तक सोना, ये सब कुछ हमें याद आता है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जो है वो चलने का नाम है और समय जो है कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो हमें भी समय के साथ ही चलना पड़ता है। तो अच्छा है कि नया सत्र फिर से शुरू होने वाला है, ताकि आप अगली कक्षा में जल्दी से पहुंचे, जल्दी जल्दी परीक्षाएं दे और फिर अगली कक्षा में पहुंचे, है ना? तो ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं नई नई कक्षाओं में पहुंचने के लिए और फिर से स्कूल शुरू होने के लिए। अभी यहां पर थोड़ी देर रुकते हैं, दोस्तों से मिलेंगे, मगर क्यों ना पहले सुन लेते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: अच्छा बच्चों, अब हमारे साथ है एक और प्यारी सी दोस्त, तो चलो उनका नाम जानते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकृति चौहान है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, तो प्रकृति ये बताओ आज क्या बताने वाली हो दोस्तों को?
1: आज मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हर साल 14 जून को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में बहने वाला रक्त यानी खून हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी दुर्घटना, बीमारी या ऑपरेशन के समय लोगों को अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे समय में रक्तदान किसी के लिए जीवन दान बन जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रक्त यानी ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, इसे केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वेच्छा से दान कर सकता है। इसलिए रक्तदान करने वाले लोग वास्तव में किसी की जान बचाने में मदद करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और रक्तदाताओं का सम्मान करना है। इस दिन उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जाता है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं। दोस्तों हम बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए एक निश्चित आयु और स्वास्थ्य संबंधी नियम होते हैं, लेकिन हम इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। सोचिए यदि किसी अस्पताल में कोई मरीज रक्त की कमी से जूझ रहा हो और समय पर उसे रक्त मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। उस मरीज और उसके परिवार के लिए वह रक्तदाता किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। रक्तदान के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान सुरक्षित माना जाता है और कुछ समय बाद शरीर फिर से आवश्यक रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। दोस्तों हमें बचपन से ही दूसरों की सहायता करने की भावना विकसित करनी चाहिए। मदद केवल पैसे से नहीं होती बल्कि जागरूकता फैलाकर और अच्छे संदेश देकर भी की जा सकती है। तो दोस्तों आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हम यह संकल्प ले कि हम हमेशा मानवता, सेवा और सहयोग की भावना को अपने जीवन में अपनाएंगे और जब हम बड़े होंगे तब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी बात हमें प्रकृति ने बताई दोस्तों कि जब हम किसी को रक्तदान करते हैं ना, तो न केवल जीवन दान मिलता है बल्कि हमें भी अच्छा करने की सीख मिलती है, अच्छा करने की खुशी मिलती है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे काम जब आप करते हैं या किसी और को प्रेरित करते हैं तो वो काम आपके जीवन को हमेशा सही राह दिखाते हैं। तो बहुत अच्छी बात हमें प्रकृति ने बताई। अब हमारे साथ एक और प्यारी सी नन्ही सी दोस्त है, तो चलो उनसे भी कुछ सुन ले।
2: मेरा नाम है तनिशी भावसार और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। दीदी मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ।
0: अरे वाह तनिशी, आप 2 कक्षा में पढ़ती हो और हमें एक कविता सुनाने वाली हो, तो सुनाओ कविता।
2: मेरा बंदर मस्त कलंदर, पल में बाहर पल में अंदर, मेरा घोड़ा बड़ा निगोड़ा, कभी न पीता पानी थोड़ा, मेरी बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं, दूध मलाई चट कर जाऊं, मेरा बाजा करे तकाजा, पर लिख लो तो बनोगे राजा, मेरा तोता पंख भिगोता, राम राम रट के खुश होता, मेरा हाथी सबका साथी, लेकिन उसकी सूंड डराती, मेरी गुड़िया जादू की पुड़िया, रूप बदल बन जाती बुड़िया, मेरा डामी रंग बदामी, पाव उठाकर करे सलामी। थैंक यू।
0: बहुत अच्छी कविता हमें तनिशी ने सुनाई, बहुत प्यारी कविता।
3: मेरा नाम समृद्धि नागर है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा समृद्धि, मुझे ये बताओ आपके स्कूल कब से खुलने वाले हैं?
3: मेरे स्कूल 16 जून से शुरू होने वाले हैं।
0: और ये बताओ इन गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या सीखा?
3: जी हाँ, मैं छुट्टियों में डांस सीखे हैं।
0: अच्छा आपने डांस सीखा है, और जो गर्मी की छुट्टियों में मिलने वाला समर असाइनमेंट होता है आपने पूरा कर लिया?
3: जी हाँ, मैंने अपना असाइनमेंट पूरे कर लिए।
0: तो इन छुट्टियों में मजे आए आपको?
3: जी हाँ, मुझे छुट्टियों में बहुत बहुत ज्यादा मजे आए।
0: तो स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो खुशी है या नहीं आपको?
3: जी हाँ, मेरे स्कूल शुरू होने वाले, उस चीज की मेरे को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है।
0: खुशी है, खुशी होनी चाहिए, है ना? तो क्या सुनाओगी आज?
3: मैंने छुट्टियों में कविता सीखी है,
0: तो सुनाओ हमें।
3: ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को चीर कर चढ़ गई है पैर पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में हो जाऊंगी, मुन्नी बोली हंस कर हवा रानी बस कर, अगर तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। थैंक यू।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी कविता हमें समृद्धि ने सुनाई। अब आगे आप दोस्तों को इंतजार होगा गीत का, तो चलो सुनवा देती हूँ आपको एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जून का महीना चल रहा है, गर्मी अभी भी अपने पूरे जोरों पर है और हम सब बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि इस गर्मी में पेड़ पौधों और पक्षियों का क्या हाल होता होगा? सोचा है बच्चों, जिस तरह से हमें ठंडी हवा, छांव और पानी की जरूरत होती है ना, उसी तरह से प्रकृति को भी हमारी थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। तो क्यों ना हम इस बार बारिश आने से पहले हम एक संकल्प लें एक पौधा लगाने का, और साथ ही साथ अपने घर की छत, बालकनी या फिर आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का। बच्चों याद रखिए, एक पौधा धरती को हरा भरा बनाता है। तो बच्चों, बारिश से पहले पौधा रोपण की तैयारी करनी है, आप अपने स्तर पर कहीं ना कहीं अपने घर के आंगन में या फिर अपने पास के बगीचे में छोटे छोटे पौधे रोपित करिए, ताकि जब बारिश का पानी उन पर गिरे ना, तो वो पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक दिन बड़े होकर छांव दे, फल दे और खूब सारी बारिश दे। तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए सुषमा दीदी का टाटा, बाय बाय और जय हिंद।
1: बच्चों का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के केसली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। 37वीं किस्त के रूप में 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले देश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के शुरुआती मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेब पर हमारी ये सभा संपन्न हो, उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से। और इस बीच आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत, इसे आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से। और इसके पश्चात पुनः ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच के समापन तक आप सुन सकते हैं। ये थी उन कार्यक्रमों की जानकारी जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। डीटीएच पर इस बीच प्रसारण जारी रहेगा। आप सभी को हमारा नमस्कार। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है। कलाकार हैं प्रकाश चंद्र झा और साथी।

और इसी दादरा के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। अब हुआ है समय सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इसमें अब आप सुनेंगे घनश्याम वासवानी की गाई हुई चंद गज़लें। कार्यक्रम का आगाज़ इस गज़ल से

और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:30 होने को जा रहे हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में। अभी आपने सुनी ये कव्वाली जिसे हमने लिया था लैला मजनू फिल्म से। मदन मोहन की तर्ज थी और शब्दकार थे साहिर लुधियानवी।

ये खूबसूरत गीत हमने लिया था हेरा फेरी फिल्म से, जिसे आवाज़ दी थी महेंद्र कपूर और किशोर कुमार ने। कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत की धुन बनाई थी और इंदिवर ने बोल दिए थे।

अब आ रहा है इंदु जैन का लिखा हुआ वो गीत जिसकी तर्ज बनाई है राजकमल ने। हेमंती शुक्ला और येशुदास ने इसे स्वर दिए हैं और फिल्म का नाम है चश्मे बद्दूर।

और अब इस कार्यक्रम के आखिर में आप सुनने जा रहे हैं रज़िया सुल्तान फिल्म का वो गीत जिसे गाया है कब्बन मिर्ज़ा ने। निदा फाजली ने इस गीत को शब्द दिए हैं और संगीतकार हैं खयाम।

0: और इसी खूबसूरत नगमे के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण DTHA ऑडियो चैनल पर। इस समय 3:58 हुए हैं। पेश है इस घंटे की ख़ास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के केसली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनाओं के खाते में योजना की 37वीं किस्त जारी की। प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कहा कि सभी रक्तदाता सच्चे अर्थों में मानवता के रक्षक और ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेशवासियों से रक्तदान जैसे पुण्य कर्म के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियाँ तेज बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज कुछ ज़िलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाना।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में हाज़िर आया तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। साथियों, अॼु 14 जून हिकु ख़ासि ॾींहुं आहे, विश्व रक्तदाता दिवस। रत जंहिंजो को बि कृत्रिम विकल्प न आहे। हादसनि, ऑपरेशन या वरी थैलेसेमिया जी बीमारीअ में मरीज़नि जी जान बचाइण लाइ इंसान जे रत जी घुर्ज रहंदी आहे। रक्तदाता दिवस मल्हाइण जो मक़सदु सुरक्षित रत जी उपलब्धता बाबति सुजाॻी पैदा करणु ऐं पाण मुरादो रत ॾियण वारनि जा थोरा मञणु आहे। हिन ॾींहं जी चूंड माहिर साइंसदान कार्ल लैंडस्टेनर जे जनम जे ॾींहं जे मान में कई वई आहे, जिन ब्लड ग्रुप्स जी खोज कई हुई। दोस्तों, कुझु माण्हुनि जे मन में इहा भ्रांति या वहम वेठल आहे त रत ॾियण सां शरीर में कमज़ोरी अची वेंदी, पर इहा ॻाल्हि बिल्कुलु बि सही न आहे। हिकु तंदुरुस्त माण्हू हर 3 महीने में सलाईअ सां रत दान करे सघे थो। पाण सच त इहो आहे त रत ॾियण सां शरीर में नयूं रत जूं कोठड़ियूं बणिजनि थियूं ऐं दिलि जी बीमारियुनि जो ख़तरो बि घटिजे थो। तव्हांजो ॾिनल 1 यूनिट रत बि माण्हुनि जी जान बचाए सघे थो। त अचो हिन ॾींहं ते पाण मुरादो रत ॾियण जी पह कयूं, छो त ही रत कंहिंजी ज़िंदगी बणिजी सघे थो। हाणे कार्यक्रम में वक़्तु आहे तव्हांजे मनपसंदि गीत संगीत जो। अचो त मज़ो था माणियूं मास्टर चंदर ऐं साथियुनि जी आवाज़ में हिन सुहिणे कलाम जो।

दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही सिट्टू खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आखिर कह न बुद्धियो हुंदियो। 18 जून रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस करे मल्हायो वेंदो आहे। वाराणसी में ॼायल मणिकर्णिका तांबे, जंहिंखे अॻिते हली रानी लक्ष्मीबाई सॾायो वियो, सां मार्शल आर्ट, निशानेबाज़ी ऐं घुड़सवारी में माहिर हुई। 1842 में संदसि संगु झांसी जे महाराजा गंगाधर राव सां थियो। गंगाधर राव जे गुज़ारे वञण खां पोइ अंग्रेज़नि जी हड़प नीति जी ख़िलाफ़त कंदे रानी लक्ष्मीबाई ललकार कई ऐं चयाईं त मां पंहिंजी झांसी कंहिं बि हाल में न ॾींदसि। 18 जून 1858 में ग्वालियर जे पासे कोटा जी सराय में बहादुरीअ सां अंग्रेज़नि जो सामनो कंदे रानी लक्ष्मीबाई पंहिंजी मातृभूमिअ लाइ बलिदान ॾिनो। ही ॾींहुं अलवतनी, बहादुरी ऐं नारी सशक्तिकरण जी मिसाल पेश करे थो। रानी लक्ष्मीबाई जो ही बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जी तवारीख में सदा ही अमर रहंदो। हाणे कार्यक्रम में अचो त ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में गोवर्धन भारती पारां लिखियलु ही गीतु।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे काव्य पाठ जो। आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां नींढ ॾिनी आहे कवियत्री अनीता लाला जी खे, त अचो गॾिजी मज़ो था माणियूं अनीता जी जी कुझु बहितरीन रचनाउनि जो।
1: जय झूलेलाल। मुंहिंजी पहिरीं रचना आहे नाज़ुक रिश्ता। जंहिंखे बि छुई ॾिसो सोई भॻल टुटल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। जंहिंखे बि छुई ॾिठो सोई भॻल टुटल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। ॾिसण में त सभु माण्हू लॻनि था मुकमल ॿाहिरियां, पर अंदरऊं अलाए छा आहे, हॾ हॾ में सूर भरियल आहे। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। सुविधाऊं पैसनि सां वरितियूं, रुतबो समाज में आहे। गाॾियूं बिल्डिंगूं सभु आहिनि, पर बूथ सभिनी जो लथल आहे। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। नज़रूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। नज़रूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। ही क्रॉकरियूं, ही बासण सभु असां ते खिलनि था। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। मानीअ जो मोल कोन्हे, मानीअ जो मोल कोन्हे। बाज़ार खाधनि सां भरियल आहे, बस मोबाइल हुजे सॼो ॾींहुं, इते ई त ज़िंदगी रुकियल आहे। सुहिणा हुया उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमा, सीरो खाइण जो दिलि आहे। सुहिणा हुआ उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमा, सीरो खाइण जी दिलि आहे। हू ॾींहुं वया उॾामी, पेट सभिनी जो भरियल आहे। साईं जी मेहर हुजे, बाक़ी त सभु ॼण वयल आहे। कंहिंखे धीउनि जी चिंता, कंहिंखे धीउनि जी चिंता। को पुटनि सां रुठल आहे, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं। जीवन जॾहिं छलियल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। हिकिड़ी हास्य रचना। एयरपोर्ट वारो मूंखे इहो ॿुधायो, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए, भॼंदे टुकंदे

टैक्सिनि में वेही ॿ कलाक पहिरियों पाण खे पहुचाए, पर पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाउ।

0: घर सां वेब चेक इन था कयूं, एयरपोर्ट ते चेक इन, वरी सामान स्कैनिंग, वरी सिक्योरिटी चेक इन, वरी सामान स्कैनिंग ऐं सिक्योरिटी चेक इन, पैसेंजर वीचारो चेक इन जे चकर में, कॾहिं बेल्ट पर्स कढी जूता तो लाहे, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। एयर होस्टेस तव्हांजी कुझु नओं न सिखी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी। अड़े कुझु त नओं सेखारियो, पाण खे सुधारियो, अॼु एआई जो ज़मानो किथे वेठो आहे, एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। आख़िर में बि त ड्रिजी ड्रिजी लहूं था, सामान मिलंदो सॼो इहो ई सोचूं था, सामान जो सिस्टम, बेल्टनि जो सिस्टम, नंबरनि सां तव्हां छो नथो हलाए, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। छा ॿुधायां यारो, मुंहिंजी ही पेती सभिनी खां आख़िर में इठलाए वेठी, सभिनी खां आख़िर में इठलाए वेठी। मुंहिंजा घर वारा घूरन मूंखे ता, को बि पंहिंजा सूर भला कंहिंखे ॿुधाए, एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। मुंहिंजी अॻिली रचना, असांजा सभई कम ऑनलाइन हली विया, गीत जे रूप में पेश थी कयां। असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया, असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया, ऑनलाइन हली विया, माण्हुनि जो मोल घटिजी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बिजलीअ जा बिल बि, पाणीअ जा बिल बि, बिजलीअ जा बिल बि, पाणीअ जा बिल बि, तरह तरह जा टैक्स घर वेठे भरिजी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बुहारी असांजी रोबोट तो पाए, कपड़ा मशीनुनि में हर को सुकाए, बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया, बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया, असांजा महिनतुनि जा कम हे मशीन ॾे विया। घर जो किरानो ऑनलाइन घुरायूं, कपड़ा लटा बूट शूट सभु घर वेठा आणियूं, माउ जी जॻह ते, हा माउ जी जॻह तो ज़ोमेटो टोमेटो खणी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ड्राफ्टिंग ऐं चिठियूं एआई थो ठाहे, अरे डॉक्टरनि जा कम बि एआई ॿुधाए, तरह तरह जी टिकटूं मोबाइल थो कराए, तरह तरह जूं टिकटूं मोबाइल थो कराए, लाइन में बीहण जो आनंद फिटी वियो आहे, भाॼियूं वठण जो आनंद फिटी वियो आहे, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो, ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो, असां चवूं तव्हां सिहत था गवायो, अहिड़ी ही बहसुनि में, अहिड़ी ही बहसुनि में परिवार फिटी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया।
1: महिरबानी अनीता जी हिन सुहिणी पेशकश लाइ, मूंखे पूरो विश्वास आहे त तव्हांजी रचनाऊं असांजे श्रोताउनि खे सोचण लाइ मजबूर ज़रूर कंदियूं। दोस्तो, तव्हां सभिनी पढ़ियो ऐं ॿुधो ई हूंदो त हाणोकी भारत सरकार खे देश जी सेवा कंदे 12 साल गुज़री विया आहिनि। इन टाणे समाज जे हर तबिके लाइ ऐं हर खेत्र में कम कया विया आहिनि। 80 करोड़ खां वधीक आबादीअ लाइ मुफ़्त राशन मुहैया कराइणु हुजे या शौचालय जी सुविधा ॾियारे जीवन सवलो करण जो कमु हुजे, स्वास्थ्य जे खेत्र में आयुष्मान भारत ऐं जन औषधि के

केंद्र जहिड़ा कम, अटल टिंकरिंग लैब ज़रिए युवाउनि खे नवां वज ॾियारण जहिड़ा कम, हारियुनि लाइ फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड जहिड़ियूं सुविधाऊं, मेट्रो नेटवर्क, वंदे भारत ट्रेनूं, अटल सेतु, चिनाब रेल ब्रिज जहिड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रिए राष्ट्र निर्माण या आत्मनिर्भर भारत जी संकल्पना, ही सभु गुज़िरियल 12 सालनि जो हासिलु आहे। कुल मिलाए चई सघिजे थो त ही 12 साल विश्वास, विकास ऐं जन कल्याण जा साल रहिया आहिनि। दोस्तो, इन्हीअ सां गॾु ई अॼु असां तव्हांखे ॼाण ॾियण था चाहियूं प्रधानमंत्री जे 15 सूत्रीय कार्यक्रम जी, जंहिंजो लक्ष्य आहे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जे आर्थिक नज़रिए कमज़ोर तबिके ताईं सरकारी योजनाउनि जो फ़ाइदो हिकु सरियो पहुचाइणु। हीउ कार्यक्रम हिकु जतन आहे अल्पसंख्यकनि खे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जहिड़े खेत्रनि में सशक्त ठाहिण जो। इन्हे जे तहत कोशिश रहे थी त सभिनी सरकारी योजनाउनि, जीअं त छात्रवृत्ति योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत वग़ैरह जो कुल बजट जो हिकु हिसो अल्पसंख्यकनि ताईं पहुचाइण लाइ निर्धारित ज़रूर करे सघिजे। साल 2006 खां हलंदड़ हीउ कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय जी निगरानी में रहंदो आहे। पोइते रहिजल तबिके खे मुख्य धारा सां जोड़ण ही हिन कार्यक्रम जो उद्यम आहे। ऐं दोस्तो, इन ज़रूरी ॼाण खां पोइ अचो त हलंदे हलंदे कार्यक्रम में ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में अर्जुन हासिद पारां लिखियलु गीत।

दोस्तों, इन गीत सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थो थिए। उमेद आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजिबो, सभ जो भलो।

0: और अब हम आपको सुनवा रहे हैं संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियो मैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नशा करते करते शिबू को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नारायणी लिचू को नशा करवाने के लिए कोसती है। होश में आने पर शिबू नारायणी से माफी मांगते हुए फिर ऐसा न करने की शपथ लेता है। शंभू और भृगु हड़ताल से फैल रही भुखमरी पर करुण चर्चा करते हैं और बेरोजगारी को देश के लिए कोढ़ बताते हैं। ठाकुर साहब लिचू को फेंकने के लिए जो कबाड़ देते हैं उनमें से उसे एक बोतल मिलती है। लिचू और शिबू मिलकर नशा करते हैं। तब शिबू कहता है कि वो औरत से डरने वाला आदमी नहीं है। यशवंत बलबीर स्वामी से हड़ताल को लेकर बहस करता है और लोकल लीडर शास्त्री जी से मिलवाने के लिए कहता है। दोनों शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री उनसे फंड का इंतजाम करने के लिए कंपनी का स्टील, सीमेंट, लोहा आदि बेचने के लिए कहता है। यशवंत ध्यान दिलाता है कि कंपनी ने इन सामानों को बेचने के लिए कोटेशन मंगवाए हैं। शास्त्री कोटेशन देने वाले व्यापारियों को पीट पीट कर भगा देने के लिए कहता है। ये सुनकर यशवंत और बलबीर स्वामी चौंक जाते हैं। अब आगे

0: हाथ दबा दो।
1: अब तुम्हारी यूनियन क्या कर रही है रामू बामू?
2: हुजूर, सुनने में आया है कि यशवंतर बलबीर स्वामी शास्त्री जी से मिलने गए थे।
1: अच्छा, तो शास्त्री जी ने क्या कहा?
0: सरकार, शास्त्री जी सन 1975 में यूनियन और कंपनी के बीच हुए समझौते को इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती हुआ समझौता साबित करना चाहते हैं।
2: सरकार,
0: सुनना है वो कोई सबूत भी पेश करने वाले हैं सरकार।
2: और अगर ऐसा हो गया माई बाप तो कंपनी कहीं साई के पानी में।
1: नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे रामू बामू, हम ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।
0: आप क्या करने की सोच रहे हैं?
1: अभी ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, जब समय आएगा तो तुम भी जान जाओगे।
2: ठीक कह रहे सरकार। ठाकुर साहब की जय हो,
0: जय हो।
2: आप तो जो भी कदम उठाएंगे कंपनी के हित में ही उठाएंगे सरकार।
1: क्यों भाई रामू बामू, सुना है कि यूनियन के साथ तुम दोनों की कोई गुप्त सभा हुई थी।
0: सरकार, आपने बिल्कुल ठीक सुना है सरकार।
1: तो क्या यूनियन ने तुम दोनों को कोई खास काम सौंपा है?
2: हाँ हुजूर, कंपनी ने पुराना सामान बेचने के लिए कोटेशन मंगाए हैं ना, तो अब कोटेशन देने वाले व्यापारियों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाए।
1: तुम लोग क्या करोगे?
2: पूरा इंतजाम है साहब, साई नदी गवाह रहेगी और हम मशीनों के पुराने बचे हुए टुकड़े और पुर्जों को खरीदने वाले व्यापारियों को मार पीट के भगा देंगे।
1: क्या तुम लोग कंपनी के खिलाफ कदम उठाओगे?
0: अरे नहीं नहीं सरकार, भला हमारी क्या वजह, क्यों क्यों क्यों रामू, जो हम कंपनी की मुखालफत करें?
2: अरे नहीं सरकार, जरा सोचिए, अगर हम व्यापारियों को मार पीट कर भगा दे तो क्या होगा?
0: क्या होगा?
2: यहाँ पर हिंसा फैलेगी।
0: हाँ सरकार, हड़ताल करने वालों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगेगा।
2: हाँ सरकार, और पुलिस वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
0: हाँ सरकार, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा।
2: और इसी में तो कंपनी का फायदा
0: ही फायदा है सरकार।
1: अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, बुद्धिमान भी हो।
2: सरकार की मेहरबानी।
1: ये लो अपनी बोतल, विलायती है।
2: ठाकुर साहब की जय हो।
1: बस बस बस, तुम लोग इसी तरह यूनियन की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना, बस तुम्हें इसी तरह बोतल मिलती रहे।
3: देखा बलबीर स्वामी, शास्त्री जी की बात मानने का क्या नतीजा निकला?
4: यशवंत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिटने वाले व्यापारियों ने हड़तालियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है, चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है।
3: अरे पुलिस ने हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अब क्या होगा बलबीर? अरे कब तक हम मुख्यालय से मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा।
4: हम गिरफ्तार हुए साथियों को छुड़ाने के लिए जुलूस निकालेंगे, कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे।
3: लेकिन प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास फंड कहाँ है बलबीर?
4: तो मजदूरों से चंदा इकट्ठा करो।
3: वाह वाह बलबीर स्वामी वाह, हमारे मजदूर भाई भूखे पेट रहकर भी आप लोगों पर विश्वास करके हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और एक तुम हो जो मजदूरों की खाल तक उधेड़ लेना चाहते हो। जानते हो कल क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
3: अरे हमारे दो मजदूर किसानों से गेहूं मांगने गए तो किसानों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारे टूटी कमर लेकर सरकारी अस्पताल में पड़े हुए हैं।
4: ये कैसे हो सकता है? किसान तो हम मजदूरों के साथ हैं। तुम्हारे सामने ही तो सबने मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे ना।
3: बलबीर, सुना है कि ठाकुर साहब ने किसानों के मुखिया को खरीद लिया है।
4: ओह, तो ये बात है, इसका मतलब पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है।
3: अब तुम ही बताओ बलबीर कि हम लोग क्या करें? अगर मजदूरों पर ऐसे ही दमन चक्र चलता रहा तो हड़ताल तो बीच में ही टूट जाएगी।
4: अरे कंपनी का मकसद भी तो यही है कि हड़ताल टूट जाए।
3: क्या?
4: मगर हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे।
3: तुम्हारा चरित्र मैं आज तक नहीं समझ पाया बलबीर स्वामी।
4: तुम कहना क्या चाहते हो यशवंत?
3: अरे कभी तो मुझे लगता है कि तुम शास्त्री जी के साथ मिलकर हम मजदूरों के साथ छल कर रहे हो, और कभी लगता है कि तुम सच्चे मन से हमारे साथ हो।
4: देखो यशवंत, सच बात तो यह है कि ताकत के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और वो ताकत

0: शास्त्री जी के पास है। उनकी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जान पहचान है। ऐसे में उनकी ताकत का मजदूरों के हित में इस्तेमाल करने के लिए उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, वरना हकीकत तो यह है कि मैं तन मन धन से मजदूरों के साथ हूँ।
1: अच्छा, तो फिर मेरी एक बात मानोगे?
0: जरूर।
1: बलबीर, क्यों ना मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों का इंतजार करने की जगह हम अपना प्रतिनिधि मुख्यालय भेजें?
0: विचार तो तुम्हारा अच्छा है।
1: तो फिर विलंब क्या है? अब क्या शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हो?
0: नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, एक सुझाव और है मेरे पास।
1: सुझाव? अब कैसा सुझाव, जरा मुझे भी बताओ।
0: हम थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके कंपनी के दफ्तर पर बेमियादी धरना देंगे, और जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात नहीं करते तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे।
1: हाँ, बलबीर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। चलो अधूरी तैयारियों को पूरा करें।
0: हाँ, चलो ये चलो। आप
2: नारायणी काकी, राम राम काकी।
3: राम राम।
2: कहाँ से आ रही हो?
3: अरे नारायणी, तेरे पास कुछ खाने को है? हमारे पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया।
2: काकी, क्या बताऊं, मैं खुद 3 दिन से भूखी हूँ, और मेरा मुन्ना भी खालिस पानी पर जिंदा है।
3: अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमारी बात किसी ने नहीं मानी।
2: लेकिन काकी, तुम खलासी लंगर की तरफ से कैसे आ रही हो?
3: अरे गई तो थी 2 रोटी का इंतजाम करने, रोटियां तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, यूनियन की सच्चाई का पता लग गया।
2: यूनियन की सच्चाई? मैं समझी नहीं काकी।
3: हम मजदूर लोगन के खून पसीना की गाड़ी कमाई यूनियन के नेता दारू में उड़ा रहे हैं। अब तक बैठे हैं खलासी लंगर में वो दोनों गद्दार।
2: क्या?

0: भाई वाह वाह बलबीर भाई वाह।
1: कालू भाई ये ले एक पैग और ले।
0: अरे वाह वाह वाह एक पैग और। भाई वाह पीने पिलाने का तो मजा ही कुछ और है। देखो भाई बलबीर हड़ताल करें मजदूर, चंदा दे मजदूर, भूखे मरे मजदूर और चंदे के पैसे से मौज मस्ती करे हम यानी के यूनियन के नेता।
1: धीरे बोल धीरे कालू, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
0: अरे बलबीर भाई तुम यूनियन के अध्यक्ष हो।
1: हाँ।
0: और मैं
1: सेक्रेटरी।
0: सेक्रेटरी शास्त्री जी का हाथ भी तो हमारे सर पर है। देखो भैया जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का।
1: लेकिन कालू डरना सीख, डरना सीख। किसी से भले ही मत डर लेकिन लेकिन यशवंत से तुझे डरना चाहिए।
0: यशवंत? अरे कौन यशवंत? हो वो दलित नेता।
1: हाँ बिल्कुल वही।
0: अरे छोड़ यार बलबीर उस मच्छर से क्या डरना। हाँ
1: अरे यार कालू मत भूल कि एक मच्छर से मलेरिया की महामारी हो जाती है। और ये महामारी इंसान को मौत के आगोश में पहुंचा कर ही पीछा छोड़ती है।
0: यार बलबीर
1: हाँ।
0: मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। हाँ। देख बलबीर।

0: उसे तो जब कहे ना तब उसे मसल कर रख तुम।
1: अरे हाँ। अरे कालू मत भूल कि साई के 4,000 मजदूर उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो भी मजदूरों के लिए मरने मारने पर तैयार रहता है। अगर अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी इस मौज मस्ती पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। शास्त्री जी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी सो अलग।
0: भाई बलबीर, मुझे तो लगता है कि ये शास्त्री जी कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं यार।
2: अरे अब हमसे क्या, अब भाई हम तो ठहरे छोटे नेता, और वैसे भी शास्त्री जी ने यूनियन के एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया।
1: सबका सब पैसा हमारे पास है।
0: अच्छा,
2: फिर हमें उनके बड़े गेम से क्या लेना देना।
0: अरे ठीक कहते हो भाई। अच्छा भाई बलबीर, इसी बात पर एक पे गौर हो जाएगा।
1: अभी लो।

0: यशवंत बाबू, यशवंत बाबू।
1: अरे नारायणी, तुम मेरे घर में? अब आओ, अंदर आ जाओ।
0: नहीं, क्षमा चाहती हूँ यशवंत।

0: तो मैं ही बाहर आता हूँ।
1: हाँ
0: कहो नारायणी, कैसे आना हुआ?
2: आजकल यूनियन में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। क्या यही सब करवाने के लिए मजदूरों की हड़ताल करवाई थी?
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी, अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: अब समझ में क्यों आएगा, यूनियन के नेता हमारे चंदे पर गुलछरे जोड़ा रहे हैं। कम से कम मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन आप भी ऐसे ही निकले।
0: देखो नारायणी, पहलिया ना बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
2: पहले सुना था कि आपने यूनियन के पैसे से अपने लिए नया खादी का कुर्ता पजामा खरीदा है, तब मैंने विश्वास नहीं किया।
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
2: लेकिन जब पता चला कि यूनियन के नेता यूनियन का पैसा खलासी लंगर में दारू में उड़ा रहे हैं, तो जाकर एहसास हुआ कि उस समय मैं गलत थी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
0: नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है नारायणी।
2: चिल्लाओ मत यशवंत बाबू, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल सकता।
0: तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी बात का यकीन करो नारायणी, यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
2: गलत फहमी? यशवंत बाबू, गलत फहमी में तो साई के सारे मजदूर आज तक जी रहे हैं। जिसे अपना मसीहा समझा, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी इंसान ने विश्वासघात किया।
0: नारायणी,
2: लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, चीख चीख कर सबको बता दूंगी। फिर देखना जिन मजदूरों के साथ तुम लोगों ने छल किया है, वही मजदूर तुम सबको साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
0: होश में आओ नारायणी, मेरी बात का तुम यकीन क्यों नहीं करती? अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनियन के किस नेता की बात कर रही हो जो यूनियन का पैसा दारूबाजी में उड़ा रहा है?
2: बलबीर स्वामी और कालूराम।
0: क्या, बलबीर स्वामी और कालूराम?
3: भाई बाबू,
4: बोल रहा हूँ,
3: आजकल तो हमारी पांचों उंगलियां घी में है और सिर कड़ाई में।
4: तू सच कह रहा है रे, एक कंपनी की पुरानी मशीनों के कल पुर्जे और दूसरी चीजों को चुरा चुरा कर हम बेच रहे हैं।
3: और हमें इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं।
4: और जब कंपनी के अधिकारियों को इस चोरी का पता चलेगा
3: तो उनका शक सीधे हड़ताली मजदूरों पर जाएगा।
4: रामू, तूने कुछ सुना?
3: नहीं भैया बाबू, अगर तूने सुना है तो मुझे भी बता दे।
4: हाँ सुनाता हूँ। वो क्या है कि रोज शाम अंधेरा होने के बाद कोई औरत ठाकुर साहब के पास जाती है।
3: औरत? अरे क्या बात करता है।
4: अरे 16 आने, सच कह रहा हूँ भैया, 16 आने सच।
3: लेकिन तुझे कैसे पता?
4: अरे मैंने स्वयं कई बार ठाकुर साहब के घर से एक औरत की परछाई को आते जाते देखा है।
3: अच्छा, लेकिन ये औरत हो कौन सकती है भैया बाबू?
4: अरे रामू, यही तो पता लगाना है।
3: तो ठीक है, आज रात हम ठाकुर साहब के घर के सामने वाले सागवान के पेड़ पर बैठकर निगरानी करेंगे। अरे पता तो चले कि वो चरित्रहीन औरत है कौन।
4: तूने बिल्कुल ठीक कहा।
3: तो चलो पेड़ पे,
4: आज रात मिलते हैं सागवान के पेड़ पे।

0: साथियों, कंपनी के अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। हमारे मजदूर हताश और निराश नहीं है। कंपनी के पास रुपए पैसे हैं, लेकिन हमारे पास हौसला है। हौसला बनाए रखो, जीत हमारी होगी। हमारा बेमियादी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते।
1: आवाज दो, आवाज दो।
0: शांत भाइयों, शांत। हमारे बीच कंपनी का आदमी आया है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है।
2: सुनिए, ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं से मिलना चाहते हैं।
0: साथियों, ठाकुर साहब ने यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। लगता है कंपनी हमारे आगे झुक गई है, हमारी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है। शांत साथियों, शांत। यूनियन की ओर से मेरे साथ कालूराम और यशवंत ठाकुर साहब से मिलने जा रहे हैं। तब तक आप लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठ जाइए। आओ यशवंत।
3: चलो
4: हाँ, बताइए ठाकुर साहब, क्या फैसला हुआ है?
5: देखिए, कंपनी के अधिकारियों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि हम 60 मजदूरों को परमानेंट करने के लिए तैयार।
6: क्या, सिर्फ 60?
4: 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60? ठाकुर साहब,
6: सिर्फ 60?
5: हाँ भाई, सिर्फ 60। इससे ज्यादा हमारे लिए संभव नहीं है।
7: ठीक है, ये प्रस्ताव हमें लिखित रूप में दे दीजिए।
5: ये भी संभव नहीं है।
7: क्यों?
5: कंपनी लिखकर नहीं दे सकती।
6: कमाल है, ये क्या हिमाकत है? कंपनी अपना ही फैसला लिखकर देने में क्यों आनाकानी कर रही है?
5: देखिए, समझने की कोशिश करिए, कंपनी के पास हजारों विभाग हैं, इस तरह लिखकर देना बहुत मुश्किल काम है।
4: देखिए ठाकुर साहब, इस तरह तो फैसला हो नहीं सकता।
6: नहीं हो सकता
5: तो ठीक है, करो हड़ताल। 1 साल 2 साल तक हड़ताल करते रहो, आखिर में हम ये केस सरकार के हवाले कर देंगे।
4: क्या है?
7: चलो भाइयों, हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
4: हाँ।
7: कंपनी को यूनियन के सामने झुकना होगा।
4: हाँ,
7: झुकना होगा कंपनी को यूनियन के सामने। यशवंत कालू, चलो यहाँ से।
4: आओ, चलो अनिल भाई,
6: चलो चलो यहाँ से।
4: मेरे ख्याल से हम लोगों को ठाकुर साहब की बात मान लेनी चाहिए।
6: अरे यशवंत, तू अभी नरम बांस है। अरे यही उम्र है कि तुम पके बांस की तरह अपने आप को ढाल सकते हो।
8: यशवंत भाई, यशवंत भाई।
4: हाँ,
8: जरा इधर तो आना।
4: अब क्या बात है लीचू?
8: भयानक दिन आएगा यशवंत भाई, बहुत ही भयानक दिन। तुम लोगों को नदी की बात के लोग।
4: क्या क्या कहा लीचू? क्या हुआ रामू? क्या?
9: अरे भैया बाबू, चींटियों और मच्छरों ने काट काट के सारा शरीर लाल कर दिया। दर्द के मारे बुरा हाल है भैया।
4: वैसे एक बात बताओ रामू, यूनियन ने भी अच्छा काम दिया है कि निगरानी करो कि कोई औरत कंपनी के किसी दलाल के पास तो नहीं जाती है।

0: जाती है तो उसे पकड़कर मार मार कर हड्डियां तोड़ देने का भी आदेश है।
1: और दारू की बोतल भी नहीं देंगे यूनियन वाले, कहते हैं कि ये हमारा फर्ज है।
0: अरे दारू तो हमें ठाकुर साहब से मिली जाती है, और ठाकुर साहब का ही आदेश है कि हम दोनों यूनियन से मिलते रहे, ताकि उन्हें हमारे जरिए यूनियन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
1: हमें मच्छरों से कटवा कर औरतों की रखवाली पर लगा दिया, खुद नाक बजा बजा कर सोते रहते हैं।
0: अरे भैया बामू, कहीं वो औरत पार्वती तो नहीं?
2: अरे वो ही
0: भृगु की बहन।
1: वो सुना है कि वो लोगों को खराब कर रही है।
0: अब तो तेरा मतलब है कि ठाकुर साहब के पास पार्वती ही आती होगी?
1: अरे क्यों नहीं आ सकती वो?
0: अब हाँ आ तो सकती है, आज उसे घसीट कर साई के बालू तक ले जाऊंगा।
1: साई के बालू तक ले जाऊंगा? अरे कैसे ले जाएगा?
0: अरे कैसे का क्या मतलब?
1: पुलिस की सीटी सुनी तूने?
0: चुप हो जा।
1: अरे देखा नहीं चार और बंदूकधारी पुलिस बहरे पर है।
0: अरे साई के उस पार तक मुंशीगंज में आने वाली सड़क पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है भैया।
1: रामू भाई, एक दिन साई के बालू के पास पार्वती को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था, तुरंत सती सावित्री बन गई भाई, गालियां देने लगी। अगर आज हाथ लग गई ना तो रामू भैया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं,
0: मैं भी नहीं।
1: लेकिन उसे साई की बालू पर लेकर नहीं जाऊंगा, क्या पता यूनियन वालों ने बालू में गोला बारूद रखा हो।
2: क्या हुआ
1: रामू? उधर देखो, उधर वो झाड़ी की तरफ, वो सामने वाली बबूल की झाड़ी हिल रही है।
0: हिल रही है, शायद वो आ रही है। अरे दम साधे बैठा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं कर रहा। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगी, एक साथ हम इस पर कूद पड़ेंगे।
1: हाँ,
3: जान बचा ली, तो मुझे भागना होगा, नहीं तो मार भी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी।
0: भैया बाबू, ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
1: रामू वो देख, उधर पोटली गिरी पड़ी है, देख तो, पोटली
0: देखता
1: हूँ, देख इसमें क्या है, देख क्या है बता।
0: कुछ पैसे और सूखी रोटियां है बाबू।
1: सुन पैसे जेब में डाल ले, रोटी इसके हवाले कर दे,
0: ले चल।
3: लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे, मैं कितने भी पैसे वापस कर।
0: अरे चल नारायणी, तू भी ऐसा काम करती है? चल।
3: सुना नहीं जानवर की औलाद, लौटा मेरे पैसे।
0: चल यहाँ से आगे बढ़। चल
1: देख नारायणी, ज्यादा हल्ला करेगी तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। अरे हम सफाई कर्मचारियों की इज्जत, अरे तूने तो मिट्टी में मिला दी।
3: मेरा पति बीमार है, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, 5 दिन से भूखी हूँ मैं। क्या कभी किसी ने एक पैसा देकर मेरी मदद की?
1: अब
3: नहीं की ना, अब हड़ताल के नाम पर अन के दाने भी छीन रहा है। मैं कहती हूँ चुपचाप मेरे पैसे लौटा दे।
0: चुप रह,
3: मेरे पैसे चुप। सुना नहीं, दे मेरे पैसे।
1: अरे नहीं देते, अरे करते कि तेरे को पुलिस के हवाले, सारी जिंदगी जेल में चलती रहेगी।
0: समझ ले,
3: मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने शरीर बेचकर पैसा कमाओ, तुझे क्या, मैं कहती लौटा मेरे पैसे।
1: सवाल लड़ाई,
0: चल हमें शरीर बेच।
4: कौन है रात के

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना जंग लगी तलवार धारावाहिक का 9वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188 किलोमीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा को लगभग 151 करोड़ रुपये के लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24,00,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत है, इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इनके माध्यम से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के 30 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है जल को व्यर्थ न बहाएं, करें संरक्षित। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व। वार्ताकार है कनक श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करना है। रक्त मानव जीवन का आधार है और इसका कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। यह दिन महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। उन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अधिक से अधिक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार रक्त की कमी के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है। यदि समाज में अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः कुछ महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर नया रक्त बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इससे रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की नियमित जाँच भी हो पाती है। साथियों, समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वास्तव में चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान करने से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, इसलिए लोगों को इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर, रैलियां, संगोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक सफल बना सकती है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण दिवस है। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। हमें इस दिवस के महत्व को समझते हुए स्वयं रक्तदान करना चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सच ही कहा गया है कि रक्तदान महादान है। यह न केवल किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा में अपना अहम योगदान देना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय जल को व्यर्थ न बहाएं करें संरक्षित पर चर्चा करने का। दोस्तों जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा जीवित प्राणी जल पर निर्भर हैं। इसलिए जल को जीवन का आधार कहा जाता है। साथियों आज बढ़ती जनसंख्या औद्योगिकीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में जल को व्यर्थ बहाने की बजाय उसका संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। साथियों जल हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसका उपयोग पीने भोजन बनाने स्नान करने खेती करने तथा विभिन्न उद्योगों में होता है। कृषि उत्पादन पूरी तरह जल पर निर्भर करता है। यदि जल की उपलब्धता कम हो तो खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसके अलावा स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसलिए जल का महत्व किसी भी अन्य प्राकृतिक संसाधन से कम नहीं है। साथियों वर्तमान समय में विश्व के अनेक देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियां तालाब झीलें सूखती जा रही हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सभी जल के महत्व को समझें और उसे संरक्षित करें। दोस्तों जल संरक्षण के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। नल को खुला न छोड़ें और रिसाव वाले नलों को तुरंत उनकी मरम्मत करवाएं। दोस्तों वर्षा जल संचयन को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि वर्षा का पानी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। कृषि क्षेत्र में टपक सिंचाई स्प्रिंकल जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे पानी की बचत हो सके। उद्योगों में जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था अपनानी चाहिए। साथ ही

0: नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। साथियों, जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही पानी बचाने की आदत सिखानी चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपना योगदान देगा तभी जल संरक्षण का लक्ष्य सफल हो सकेगा। साथियों, जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज की छोटी छोटी बचत भविष्य की बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि हम अभी से जल संरक्षण के प्रति सजग हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों, हमें संकल्प लेना चाहिए कि जल है तो कल है, और जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करते हुए उसका संरक्षण हम करेंगे। साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं कनक श्रीवास्तव।
1: दोस्तों, आइए हम आधुनिक परिवेश में योग का महत्व इस विषय पर चर्चा करें। इससे पहले हम योग क्या है इसको समझ लेते हैं। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़, अर्थात जुड़ना। व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है योग। योग ऐसा ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। प्राचीन काल में योग को अपनाने वालों को योगी कहा जाता था, जो योग मार्ग पर चलते हुए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करते थे। इसी अवस्था को मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। योग विद्या अति प्राचीन है। भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना जाता है। सप्तऋषि के द्वारा योग को आगे बढ़ाया गया। कालांतर में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग कई प्रकार का है, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग आदि। मित्रों, अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते योग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनमें ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, पतंजल योग आदि सम्मिलित हैं। मित्रों, आधुनिक समय में योग को मुख्य रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनाया जा रहा है। इस दिशा में अनेक व्यक्ति, संस्थाएं प्रयासरत हैं। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और लगातार कर रहे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए एवं उपचार के लिए लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं। योग का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में जागरूकता आ रही है, क्योंकि वर्तमान समय में योग एक अनिवार्य आवश्यकता समझ में आ रही है। उसका कारण है कि आज व्यक्तियों को स्वस्थ रहना एक चुनौती लग रहा है। लगभग 80% लोग किसी बीमारी की चपेट में हैं। कोई ना कोई दवा ले रहा है, क्योंकि जीवन शैली आज स्वास्थ्य के अनुकूलन नहीं है। खान पान जहरीला हो गया है। अनाज, सब्जी, फल सभी में कीटनाशक का जहर मिला हुआ है। यहाँ तक कि हवा और पानी जैसे प्रमुख चीजें भी शुद्ध नहीं रह गई हैं। इसी प्रकार कई प्रदूषण के चलते हवा दूषित हो गई है और जल प्रदूषित हो गया है, अथवा स्वस्थ रहना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब लग रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना अनिवार्य हो गया है, और इसके लिए सर्वोत्तम साधन है योग। योग का नियमित अभ्यास करने से, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि जगह जगह स्कूलों में, पार्कों में, मैदानों में, संस्थानों में योग शिविर लगाए जाएँ और लोगों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया जाए। इस दिशा में सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु ये जागरूकता प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। समाज, संस्थाएं सभी एकजुट होकर योग का प्रचार प्रसार करें और अपना योगदान दें, तभी हम निरोग रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को विरासत में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की विद्या एवं योग विद्या हम उन्हें दे सकते हैं। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 69वें सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री

0: भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। उद्बोधन देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने अपने सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और तभी से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। मित्रों, योग का अभ्यास सही विधि से और नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आसपास का वातावरण साफ रखें, शरीर और मन को शुद्ध रखें। योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्प आहार लेकर ही करना चाहिए। योग अभ्यास मल मूत्र विसर्जन के पश्चात ही करें। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी या कंबल अथवा योग मैट का उपयोग करना चाहिए। आरामदायक वस्त्र पहनकर योग अभ्यास करें ताकि शरीर की गतिविधि आसानी से हो सके। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी या तनाव की स्थिति में योग ना करें। यदि कोई पुराना रोग है, बीपी या हार्ट समस्या है, तो चिकित्सक या योग विशेषज्ञ से परामर्श लें। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग विशेषज्ञ से सलाह के बाद ही योग अभ्यास करें। अभ्यास के समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान श्वास को रोकना नहीं चाहिए जब तक कि ऐसा करने को कहा नहीं जाए। श्वास प्रश्वास हमेशा नासिका से ही ले जब तक कि विशेष रूप से कहा ना जाए। शरीर में किसी प्रकार का झटका प्रदान ना करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही योग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। अच्छे परिणाम आने के लिए कुछ समय लगता ही है, इसलिए लगातार नियमित अभ्यास करते रहें। हर आसन को सीमाएं एवं निर्देश अनुसार ही करें। योग सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करें और समापन शांति पाठ से करें। इससे मस्तिष्क एवं मन को शांति का वातावरण मिलता है। अभ्यास के बाद 20 मिनट के बाद ही स्नान करें और 20 मिनट के बाद ही आहार लें, तुरंत ना लें। शाकाहारी भोजन ही श्रेयस्कर है। अब हम ये देखते हैं कि योग किस प्रकार सहायता कर सकता है। मित्रों, योग सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने का साधन है। वर्तमान समय में हुए चिकित्सा शोधों ने योग से होने वाले कई शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। यही नहीं, लाखों लोग अभ्यासियों के अनुभवों को आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि योग कई प्रकार से हमें लाभान्वित करता है। योग में शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकार अभ्यास है। मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार की समस्याओं से बचाव होता है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकारों और तनावों को दूर करने में सहायक है। योग अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों की स्पष्टता और मनोबल बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है, पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताज़ा करता है। ध्यान से हम आत्म अनुभूति करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर। वार्ताकार थी कनक श्रीवास्तव। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य का विकास उसके विचारों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सोच व्यापक सकारात्मक और प्रगतिशील होती है वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति के विकास में बाधा आती है। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है सीमित दृष्टिकोण रखना, दूसरों के विचारों का सम्मान न करना तथा जाति धर्म भाषा क्षेत्र या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर भेदभाव करना। ऐसी सोच न केवल व्यक्ति के विकास में बाधक बनती है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने हितों और विचारों को ही महत्व देता है। वह नए विचारों को स्वीकार करने से बचता है तथा दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं करता। ऐसे लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं और अपने पूर्वाग्रहों में बंधे रहते हैं। परिणाम के स्वरूप उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। दोस्तों संकीर्ण सोच व्यक्ति की सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता को कम कर देती है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है वह नए अनुभवों और ज्ञान से वंचित रह जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए खुली सोच सहनशीलता और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता आवश्यक होती है। संकीर्ण मानसिकता इन गुणों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इससे व्यक्ति आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी खो सकता है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता समाज में भेदभाव असहिष्णुता और संघर्ष को जन्म देती है। समाज का विकास तभी संभव है जब लोग मिलजुल कर कार्य करें तथा एक दूसरे का सम्मान करें। संकीर्ण सोच सद्भाव को नष्ट करती है और प्रगति के मार्ग में रुकावट बनती है। ऐसे में आवश्यक है कि संकीर्ण सोच को न रखा जाए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उनके नागरिकों की सोच पर निर्भर करती है, इसलिए राष्ट्र के निर्माण में संकीर्ण मानसिकता का त्याग आवश्यक है। साथियों संकीर्ण मानसिकता से दूर रहने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है तथा उसके विचारों को व्यापक बनाती है। इसके अलावा हमें विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। परिवार और विद्यालय बच्चों में मानवता समानता और भाईचारे के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में एक बड़ी बाधा बन जाती है। यह हमारी सोच को सीमित कर देती है और प्रगति के अवसरों को कम कर देती है। आज के आधुनिक और वैश्विक युग में सफलता के लिए व्यापक दृष्टिकोण सहनशीलता और सकारात्मक सोच आवश्यक है। इसलिए हमें संकीर्ण विचारों का त्याग कर उदार प्रगतिशील मानसिकता अपनानी चाहिए। दोस्तों अब समय हुआ है आप विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी जो वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: हेलो
10: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
9: फिर से?
10: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
11: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
9: सर इतने कहाँ से?
11: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
10: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
9: 2 लाख
12: क्या हुआ पापा?
9: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
12: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
9: फ्रॉड?
12: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
9: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए गीत से। कालीघटा फिल्म के लिए इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तुमको मेरी कसम, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। नीति मोहन और अब्दुल शेख की आवाज़ें, श्वेता बोथरा की शब्द रचना और प्रतीक वालिया का संगीत।

अगला गीत कुणाल गांजावाला की आवाज़ में है। प्रवीण भारद्वाज ने गीत लिखा है और रैन फिल्म के लिए इसे संगीत दिया है सतीश अजय ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत घातक फिल्म से अलका याग्निक, शंकर महादेवन और अनु मलिक की आवाज़ हैं। राहत इंदौरी की शब्द रचना है और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म का गीत। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और विजय प्रकाश की। शब्द रचना गुलजार की है, संगीतकार AR रहमान।

अगला गीत महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में है। निदा फाजली ने गीत लिखा है और सुर फिल्म के लिए इसे संगीत दिया है MM करीम ने।

हेलो ब्रदर, इस फिल्म का गीत सोनू निगम, कमाल खान और जसविंदर नरूला की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फैज़ अनबर के लिखे गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत, विशाल ददलानी की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना है और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: कुछ मुकाबले सिर्फ खेले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। कुछ प्रतिद्वंद्विताएं सिर्फ आंकड़ों में नहीं बसती, वे करोड़ों दिलों की धड़कनों में धड़कती हैं। और जब बात भारत और पाकिस्तान की हो तो हर गेंद एक कहानी बन जाती है, हर रन एक उम्मीद और हर विकेट एक उत्सव। आज बर्मिंघम की धरती पर महिला T20 विश्व कप में भारत के अभियान का आगाज हो रहा है। वनडे विश्व विजेता भारत आत्मविश्वास की नई उड़ान के साथ मैदान में है, जबकि पाकिस्तान की टीम अपने जज्बे जुनून से बड़ा उलटफेर करने का सपना लेकर आएगी। आसमान में तिरंगे की उम्मीदें हैं, मैदान पर खिलाड़ियों का हौसला और रेडियो के इस सफर में आपके साथ क्रिकेट का सबसे रोमांचक कारवां। मैं हूं आपका होस्ट आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट साक्षी मांडवाल।
5: थैंक यू सो मच आनंद एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। वी आर बैक ओवर हियर वंस अगेन ब्रिंगिंग यू द फर्स्ट गेम ऑफ द ऑनगोइंग वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026, द बिग वन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जॉइनिंग मी ओवर हियर इन द स्टूडियो टुडे आर थ्री वेरी स्पेशल गेस्ट। इट्स अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू देम, टू ऑल ऑफ यू टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ओवर हियर विद अस फॉर्मर क्रिकेटर वैशाली माथुर। नमस्कार, गुड इवनिंग। और दोस्तों, उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर कर्नल भूप राज सिंह। गुड इवनिंग, नमस्कार कर्नल।
6: हेलो, गुड इवनिंग।
5: एंड सीनियर शुड आई से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, राइटर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वेरी पैशनेटली कवर्स एंड फॉलोज क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स, मोना पार्थ सारथी जी। गुड इवनिंग मोना, नमस्कार।
7: नमस्कार, थैंक यू साक्षी।
5: टू क्विकली जस्ट स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन वैशाली विद यू, आई स्टार्ट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स गुड टू हैव सच अ ह्यूज, और शुड आई से मेजॉरिटी women representation today over here because it's the Women's World Cup. But before we go over there, we are headed straight towards the toss.
8: New Zealand internationals, I've got the skippers with me as well, Padmasana and Harmanpreet Kaur. Harman, I think you've got the coin.
9: Heads is the call. It's a tail.
10: We'll bat first.
8: Heads is the call. It has fallen your way. Well, you're very quick to say you're going to bat first. Why is that?
10: Well, I think it's a very good pitch to bat on, so we just thought let's bat and set decent total on the board.
8: First World Cup that you've come in as World Cup champions. I know it's a different format, but what does that do to a team? Does it sort of make you walk a little bit taller?
10: Well, I think we all are very excited. The last World Cup definitely given us a lot of confidence, and we just want to, you know, carry that confidence to this World Cup.
8: And the build-up has been quite immense, hasn't it? You beat Australia away, then you've come out to South Africa, then you're in England as well. Have you been pleased with the build-up?
10: Yes, definitely. We have break a lot of barriers, and now it's only about, you know, playing good cricket, and we are looking forward to that.
8: Okay, let's get into this team. You're going to bat first. You've had a little bit of tinkering in the batting lineup. Yastika's coming in, then Bharti's been in at different stages. Is one playing, both playing, or none at all?
10: Bharti's playing today, Yastika's did really well, but today we thought of going with the Bharti.
8: Okay. And it's going to be a tough pitch for your bowlers. What does that bowling unit look like?
10: We are going with three spinners and two medium pacers.
8: Here we go. All the best today, Harman. I know
10: you'll entertain. Thank you.
8: Fatima, come on in. What would you have done if you had won the toss?
11: I think if we won the toss, we're going to bat first as well because it looks like a batting track.
8: Okay. Talk to us. It hasn't been the best build-up in terms of performances as a team, but your batting unit, you've had two centurions. You've hit the fastest 50 ever in the game as well. Do you feel as if the batting unit is looking good?
11: Yeah, I think as a team, we are doing great in the batting and the bowling as well. So we know we have a good bowling unit, and so we just need to improve in the batting side. So we are good to now.
8: Okay. Let's talk about the bowling as well. How's the knee to start with?
11: Yeah, good? It's good. Yeah.
8: Okay. How do you bowl on a wicket like this that's offering some runs?
11: Yeah, obviously it looks like a batting track, so but still we have a good bowling unit. We have a good spin bowling attack, so I think it will be a good contact.
8: Okay. Any key in or outs for you for the team?
11: Yeah, we are going with Saira. She will be playing first time in the World Cup, so that will be a...
8: Oh, the Kalesha Valley will be happy with that. All the best today.
11: Thank you. Thank you.
8: India have won the toss today and they're going to have a bat first.
5: So a very happy Indian captain over there, Smriti, all smiles, telling us that we have won the toss and India has chosen to bat first. A good toss to win today over here, Vaishali.
6: मुझे ये लगता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग का सही फैसला लिया है, क्योंकि इस पिच पे एक तो बैटिंग पिच है जो कि हमारी फातिमा पाकिस्तान की कैप्टन ने बोला है, लेकिन इसमें एक खासियत और है. जैसे जैसे यहाँ पे टाइम ढलता जाएगा वैसे वैसे स्विंग और स्पिनर्स पे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता जाएगा. सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया है इन्होंने.
5: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandana but of course Harmanpreet Kaur. But just to carry that conversation forward very quickly, jo aapne yahan baat rakhi abhi Vaishali ki jaise jaise ye wicket aur purana ho gaye pitch hogi, so it's a good wicket abhi bat karne ke liye, lekin baad mein bowler friendly ho jayega. I'll come to you Mona on that. We saw both the captains jumping over there at the choice of having chosen to bat first today, and given the fact that also we have Bharti coming back into the playing 11 for us today, do you think that's an added advantage in terms of batting for India?
12: Definitely yes, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारती फुलमाली को आज रखा गया है टीम में. हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं. तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है. फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है. तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है, जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं, और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है. इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है. तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए.
4: जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं. T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मजीब मारी है. कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया. जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहाँ हमने देखा कि 200 से ज़्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहाँ वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई. क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाज?

0: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट फोर मंथ्स में, दैट इज़ दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे वेयर दे प्लेड ऑन देयर ओन ग्राउंड, सो दे स्कोर्ड वेल. इन रेस्ट ऑफ द मैचेस, दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, दे हैव लॉस्ट ऑल मैचेस एक्सेप्ट वन विच दे वन. सो जनरली इफ यू सी देयर बैटिंग रिवॉल्व अराउंड फातिमा सना. इफ शी गेट्स आउट अर्ली, then they are scoring in the range of 120 to 130 runs. So in wickets ke upar mere khayal se hum agar batting first abhi hum kar rahe hain, batting hamari strong hai, to agar hum score 170 se upar kar dete hain, to it will be a very challenging total for Pakistan and we should be able to beat them.
1: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 183.06 का है.
2: जी एंड आनंद, दिस इज आल्सो फॉर ऑल आवर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर. आवर कॉलिंग लाइंस आर ओपन. जी हाँ, हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं 011-2342-1084, 011-2342-1085. आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कर्नल भूपराज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थ सारथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वैशाली, आई विल कम टू यू. बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीन अ स्लो पिच, 6.77 का यहाँ पर हमने देखा है एवरेज नेट रन रेट पर ओवर चलता है जो हम बात करते हैं. उस एंगल से हमने आज ही भी देखा कि व्हेन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी आर ब्रिंगिंग इन 3 स्पिनर्स एंड 2 मीडियम पेसर्स. फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेके उतर रहा है?
1: वैशाली मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं. स्वागत है कार्यक्रम में आपका. नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप. ढाई सौ की उम्मीद लगा रहे हैं. जी वैशाली,
3: जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का. लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति मंदना जब उनके सामने नासरा संधू और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है. लेकिन आज हमारी स्मृति मंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ उनको लैक करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच. लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है. और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है. सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है.
1: जी हाँ बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी. आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की. 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं. फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नासरा संधु जिनका आप जिक्र कर रही थी, उनके नाम 9 विकेट हैं. तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करती हैं. मुना, अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शिफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम हैं और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं. स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहाँ किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी, क्योंकि पिच पर काफ़ी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
4: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में. इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे, उसके बाद से उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है. तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते. तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, शुरू से पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी. ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता, वो अतीत की बात हो गई है. ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का, वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट. तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं. तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागज़ों पर बनती है, उसको मैदान पर, रणनीति पर अमल करना ज़रूरी होगा. और यहाँ पर चूँकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको

0: शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहाँ बचना बहुत जरूरी होगा.
1: राइट, एंड वी आर टोल्ड वी हैव अनदर लिसनर जॉइनिंग अस राइट नाउ विद अस. नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. अविनाश जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप.
2: जी

0: Right, I'll take that question straight to our expert, Colonel Hoopraj. Would you want to address that? Richa Ghosh coming in at number three is his ask or suggestion. How good or bad do you think that is in terms of placement at number three for Richa Ghosh over there?
1: Well, what I feel is that we've got a very settled first four or five batsmen and they are experts in their position. And Richa Ghosh may not be a good option to send at number three. Let her play at number six or seven at whatever stage she comes so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandana, they are good players. They will, you know, manage on top along with Jemima Rodriguez.
0: Right.
2: जी हाँ.
0: I'll just take a question with Vaishali also. आपके पास आऊँगी मैं. आनंद ने अभी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है, 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान. बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इवॉल्व्ड, डू यू थिंक इट इज़ नो मोर अ फाइट और अ राइवलरी बिटवीन, इफ यू टॉक स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ द टू नेशंस टुडे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग?
3: आई थिंक इट्स अ माइंड सेट. क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की अचीवमेंट्स है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस है उसके पास और वो कैसे प्ले करता है, रेदर देन हम अपनी पॉलिटिक्स साइड में रख के देखें तो. एंड उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का फील्डर है, कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के साथ, और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं. और अभी मैं एक और चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि ऋचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, तो ऋचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जहाँ पे उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डाउन पे भेजेंगे, वो वहाँ जाके अपने आप को शो करती है. हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती हैं. और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मज़ेदार लगता है. और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था, उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ, और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी.
2: जी बिल्कुल. अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत के प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधना हैं, शेफाली वर्मा हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स हैं, हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान, भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, श्रीचरणी और क्रांति गौड़. इस टीम के साथ खेल रही है टीम इंडिया. थोड़ी बात हरमन की जाए, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान. इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं. मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं, लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. क्या लगता है इस बड़े मंच पर दबाव होगा उन पर?
4: देखिए ये कहना तो गलत होगा कि दबाव नहीं होगा, और ख़ासकर अब ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैम्पियन हैं. और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में, हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है. हरमन की हम बात करें तो एज अ बैटर मुझे अभी भी उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद आती है जब अकेले दम पर उन्होंने मैच जिताया था. अभी हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट से ठीक पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने, अनुभव है. तो रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यू वांट मी टू रिटायर व्हाई. तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की, जहां आक्रामकता दिखानी होती है वहां वो आक्रामक रहती है. और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है, और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में. तो मुझे लगता है कि वो दबाव ज़रूर होगा, लेकिन उस दबाव से कैसे पार पाना है उस खेल की वो अब माहिर हो चुकी है.
0: Right, and I'll come to you, Mona, just to take that question forward, yeah. because aap jawab dena cha rahe

0: थे अबाउट हाउ द क्रिकेट ऑफ बोथ द कंट्रीज हैज इवॉल्वड एंड वेदर पॉसिबली इंडिया का क्रिकेट से ज्यादा उच्च हो गया है कंपेयर टू पाकिस्तान का क्रिकेट.
1: साक्षी आपने जो सवाल पूछा था कि दोनों देश कहाँ ठहरते हैं महिला क्रिकेट में, ये आपका क्वेश्चन था, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय टीम खासतौर पर WPL आने के बाद से या फिर एक्सपोजर की हम बात करें तो लगातार खेलती आ रही है और पाकिस्तान 2 साल में 1 या 2 श्रृंखलाएं खेला है. जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है उसको तो मैं कहूंगी बेमेल ही श्रृंखला है, उसमें शायद सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई फातिमा सना ने. लेकिन जो हार्ड टेस्ट होते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले, उनसे होकर पाकिस्तानी टीम नहीं गुजरी है और भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ WPL, आप हंड्रेड्स में देख लीजिए, आप बिग बैश में देख लीजिए, भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो काफी अनुभव हो गया है बड़े मुकाबले खेलने का और वर्ल्ड कप फाइनल तक खेल चुके हैं. तो बहुत ही फर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखे या प्लानिंग वाइज भी हम देखे या कहां पर दोनों टीमें खड़ी हैं और बोर्ड का कितना सपोर्ट है पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को और भारत में, तो काफी फर्क पड़ता है. आप कितने साउंड होकर उतर रहे हैं मैदान पे वो काफी मायने रखता है. तो मुझे लगता है यहां पर निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है.
0: Right.
2: गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी पर सबकी नजरें होंगी. 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा, एवरग्रीन दीप्ति शर्मा के नाम 23 विकेट हैं और अरुंधति रेड्डी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है. श्री चरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, काफी नई खिलाड़ी हैं लेकिन रनों पर अंकुश लगाना हो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना हो, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं इस वर्ल्ड कप में.
3: देखिए श्री चरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है एंड आपने WPL में भी अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज़ वेरी गुड. एंड आल्सो इन दीज लास्ट 4 months दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, शी इज़ टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, 2 wickets, 3 wickets इन एवरी सेकेंड इनिंग शी इज़ टेकन, सो शी इज़ वेरी गुड. बट वॉट इज मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा.
2: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, स्ट्रगल कर रही है.
3: या शी हैज जस्ट टेकन इन 1 match 5 wickets, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस शी इज नॉट दैट ओल्ड दीप्ति शर्मा दैट वी नो हर टू बी, पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करेगी. एंड बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन श्रियंका पाटिल ऑल्सो, शी इज बोल्ड वेरी वेल इन WPL एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस मैचेज दैट वी हैड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका. So these 3 spinners we are looking at and Arundhati the fast bowler also she's done well. So our bowling is quite good when we compare ourselves with Pakistan.
0: Right, since we're talking of Deepti Sharma abhi, Deepti Sharma just requires 5 more wickets to go past actually Thipacha Puttawong of Thailand to become the leading wicket taker in women's T20. Mona, aapke paas aa jaati hu is baat se ki a moment of pride kyunki hum Indian women's cricket ke evolution ki baat kar rahe hain. Deepti Sharma today stands at accomplishing a feat where she could become the record holder in terms of the number of wickets. 5 more wickets to go and she becomes the highest wicket taker in women's T20 cricket.
2: Muna, is sawal ke jawab par aayenge. Caller hamare saath jud gaye hain. Ji, swagat hai karyakram mein aapka. Ji, namaste. Ji, bataye kya batana chahte hain aap. Ji, shukriya. जी हाँ, इस विश्व कप में भारत के सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे. आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं? जी हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं. जी मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी.
1: जी बिल्कुल, आपने बात की रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी हैं और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज़्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट और ये T20 में खास तौर पे दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उतना उस कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही हैं, उस लय में वो नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी. लेकिन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और बैक ऑफ माइंड चाहे वो कितना भी बोले कि हमारा ध्यान नहीं रहता है पर्सनल माइलस्टोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड रहता ही है कि अभी इतने विकेट बाकी हैं. तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है. तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो

0: एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
1: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारती फुलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में शफल देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर हैं जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तर्रार पारी खेल सकती हैं।
2: अगर मैं भारती की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया ए में जो उन्होंने खेला था उन्होंने नाबाद 50 प्लस स्कोर किया था एंड वो कॉन्टिन्यूस करती हुई आ रही हैं, दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है। जैसे कि हम देखें, अगर कंपैरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है। और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही हैं, लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका ज़िंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आएं। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50 प्लस स्कोर करें और हो सकता है कि जहाँ भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहाँ पर अपने आप को प्रूव करें।
3: Right, I'll come to you now, Colonel Bhupraj, and ask you, does India go in as heavy favourites in the game today?
4: Oh yes, we are heavy favourites and I'm hoping for a one-sided match.
3: One-sided, wow. Mona ji?
5: Hands down, बिल्कुल इंडिया फेवरेट है। और जैसे हम बार बार बात करें कि इस पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी हैं। काफ़ी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी की वो नक्शे कदम पर ना चले और आज बिल्कुल भारत फेवरेट रहे।
1: कर्नल भूप राज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर उतरती है और विश्व कप का जब मंच होता है, गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है। और हम देख भी रहे हैं कि पिछली बार जब दोनों टीमें पुरुष विश्व कप में खेली थी तो किस तरीके का माहौल था, यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
4: देखिए, इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट लेटली अगर आप देखिए तो इंडिया बोथ मेंस एंड वेमेंस में बड़े आराम से जीत रहा है। तो वो जो टेंशन इंडियन प्लेयर्स में है वो थोड़ी सी कम होगी इस बार एंड मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा खेलेंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे। वैशाली, क्विक आपसे टेक लेना चाहेंगे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके की शुरुआत की उम्मीद कर रहे होंगे? हमने शेफाली की बात की, स्मृति की बात की, हमने ये भी चर्चा की कि स्मृति का फॉर्म उनके साथ नहीं है, जो टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने गई थी, जो इंग्लैंड में वो बल्लेबाजी करके आई हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वो बिग मैच प्लेयर है।
2: जी बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और बाकी फैंस भी यही उम्मीद करते होंगे कि जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए और जितने रन्स हम लूट सकते हैं उतने रन्स हम लूटें। हमारी टीम वो उसके बाद जब हमारी शेफाली वर्मा मारने को आती है ना तो वो रुकती नहीं है, ये हमने काफ़ी टाइम तक देखा है। और स्मृति मन्ना का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है, वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में।
1: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं। तो विश्लेषण, आंकड़ों और उम्मीदों का यह सफर यहीं थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान की टक्कर में अब हर गेंद इतिहास लिख सकती है। वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मोना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: Thank you.
6: First ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है 12 जून से, और अब तक इस प्रतियोगिता के, इस विश्व कप के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 6वां मुकाबला है, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू होने वाला है एजबेस्टन बर्मिंगम पर। और इस मैच में टॉस जीता है भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और टॉस जीतकर जैसा कि तमाम खेल के जानकारी अनुमान लगा रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा इस पिच पे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये उपयुक्त

0: फिलहाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और हरमनप्रीत कौर ने भी ठीक वैसे ही किया। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया, उसका फैसला किया। और जो 11 खिलाड़ी आज वो टीम में उतारे गए हैं वो हैं स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कि टीम के कप्तान हैं, भारती फुलमली, ऋचा घोष टीम के विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरनी और श्रियंका पाटिल। तो ये है भारतीय टीम, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो कप्तान हैं वो हैं फातिमा साना, मुनीवाली टीम के विकेटकीपर गुल फिरोज़ा, आयशा जफ़र, साइरा जबेन, नतालिया फरवेज, आलिया रियाज, रमीन शमीम, नाशरा संधू, सादिया इकबाल और तास्मिया रुबाब। तो ये है दोनों टीमों का लेखा जोखा। फिलहाल बीच मैदान पर भारत के दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा बीच मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारत के तमाम जो खेल शायकीन हैं, खेल के जानकार हैं या खेल प्रशंसक हैं, उनको यही उम्मीद होगी कि ये जोड़ी भारत को एक अच्छी शुरुआत दे। और जैसा कि हमने देखा भी है कि 2024 के विश्व कप के बाद स्मृति और शेफाली की जोड़ी ने सबसे ज़्यादा 762 रन बनाए हैं T20 मुकाबलों में, और कमोबेश वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद आज इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों से होगी। तो फिलहाल मैं स्वागत करूँगा अपने साथी कॉमेंटेटर दर्पण तिकिया का।
1: It is India versus Pakistan and we are all set to call the live action. The thing is that today must be a good day for India because they won the toss, and Ashish, let me tell our listeners that India had lost 8 consecutive tosses before this match in T20Is, and therefore things have started off on the right note. Of course, they say well begun is half done, and we are hoping that our openers get us off to a good start. Smriti Mandhana and Shefali Verma out there in the middle, and we can spot Pakistan's wicketkeeper Muniba Ali. She is standing up to the stumps, which means that she doesn't want the batter to step out and alter the length of the bowler. That is what Pakistan are looking at. In fact, it looks like they're going to start off with a spinner. By the looks of it, it's going to be Sadia Iqbal who is going to get us started. Sadia Iqbal, who is currently ranked number 2 in ICC Women's T20Is. She was number 1 not too long ago. And it is going to be the right-handed Shefali Verma who's going to be facing the first ball. All set here at Edgbaston in Birmingham. This is the place where the Commonwealth Games of 2022 happened. And Team India came very, very close to the summit. In the end, they had to settle for the silver. But at this ground, in that tournament against Pakistan, India were able to register a one-sided victory. They got Pakistan bowled out for 99 and chased it down. However, it is going to be India batting first. First delivery on a length, and Shefali Verma lofts it over mid-off. It's gone for 6. The perfect start.
2: Ye laga abha ka chakka.
1: Delivered what they call the slot ball these days, and Shefali Verma is not the one to shy up on. It was not too far from the off stump. She pressed forward and lofted it using a straight bat. The ball went sailing over the long off boundary, 73 meters far. So 6 of the first ball, and immediately Sadia Iqbal responds with a dart, a quicker delivery, a fuller delivery, which forbids Shefali Verma to get underneath. It is delivered in line with the middle pole, and hence Shefali Verma has to plunge down a vertical bat in order to block it. 6 without loss after 2 deliveries in this match. Here comes Sadia Iqbal, left arm around the wicket for the third delivery of the over. Delivers this one from slightly wider of the crease. However, Shefali Verma made a movement towards the leg side early on, trying to make room, trying to go inside out once again. But this one did not spin, rather came in with the arm, finished near about the leg stump, and hence took the inside edge off her bat and trickled away towards the mid-wicket fielder. No runs of this delivery either. 3 balls done, 6 without loss. Here comes Sadia Iqbal for the next delivery of the over. Delivers this one from the corner of the crease, and this one wraps Shefali Verma on the pads. She was looking to flick it towards the leg side, probably towards square leg, however wasn't quite able to lay bat on ball. Another delivery which slanted in with the arm of the left arm spinner, hit the pad but would have obviously gone down the leg side, and hence no appeal from the Pakistan players.
3: Next delivery of the over, Sadia Iqbal very quickly running into ball. What will be the penultimate ball? Once again, shuffles to the leg side. There's an appeal for caught behind and Shefali Verma is out. Sadia Iqbal draws first blood for Pakistan. Delivered on a good length, Shefali Verma made that premeditated movement towards the leg side in order to give herself room, almost as if she had decided yesterday that she would be looking to loft it over cover. However, Sadia Iqbal very cleverly pulled her length back and hence was able to generate some extra bit of bounce. The replay on my monitor suggests that she left this delivery along with the seam. Therefore, she was never ever looking to get spin on it. It rather fell on the seam, generated extra bounce, scratched the outside edge of Shefali Verma's bat, and Muniba Ali, the wicketkeeper who was standing up to the stump, took it with her fingers pointing skywards. So India started off with the six of the first ball, but they've lost a wicket of the fifth delivery of the first over.
0: तो निश्चित रूप से पाकिस्तान ने जिस इरादे के साथ वहां पर सादिया इकबाल को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया था वो कहीं ना कहीं वो प्लॉय वो कामयाब होता हुआ बिल्कुल और इस गेंद पर लेग स्टंप की तरफ पहले से ही मानो हटकर वो इरादा बना चुके थे शफाली वर्मा कि उस गेंद को कट करेंगे और बहुत ही चतुराई के साथ वहां पर सादिया इकबाल ने भी गेंद की दिशा को लेग स्टंप की तरफ रखा और जैसे ही कट करने की कोशिश की गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट कीपर मुनीबा अली ने कोई कोताही नहीं बरती आसानी के साथ उस गेंद को अपने दस्तानों में कैद कर लिया और इस तरह से भारत को एक बहुत बड़ा झटका देने में कामयाब रहे पहले ही ओवर के दौरान भारत 6-1 विकेट के नुकसान पर.
3: Jemima Rodrigues is the new batter and Sadia Iqbal misses her mark this time around, delivers this one down the leg side on a good length, too far for Jemima to make contact. Now this is an interesting one. Remember, recently they had Yastika Bhatia batting at number 3, who is a left-hander. Obviously, Pakistan have two left-arm spinners, so the left-hander can be very useful in modern-day cricket to counter the left-arm spinner. However, today, India have left left-handed Yastika Bhatia out. Meanwhile, Sadia Iqbal delivers this one in line with the stumps on a good length, presses forward as Jemima Rodrigues and wards it off towards extra cover. End of the first over, 7-1.
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
4: तुम हो ही भुलक्कड़.
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
6: ली. जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: रिकॉर्ड जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर और अब स्मृति मंधना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर जेमिमा रॉड्रिक्स हैं. 25 वर्ष की उनकी उम्र, मुंबई में जन्मी और पिछले 8 वर्षों से लगातार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और न केवल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बल्कि एक बहुत गहरी छाप उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर अब तक छोड़ी है. 126 मुकाबले जो इससे पूर्व उन्होंने खेले हैं उसमें कुल 2732 रन उन्होंने बनाए हैं और औसत की यदि बात करें तो 30 से ऊपर का उनका औसत और स्ट्राइक रेट लगभग 129 की. काफ़ी उम्मीदें भारत को इस अनुभवी जोड़ी से और देखना यह है कि ये जोड़ी अब किस तरह से यानी पारी को आगे बढ़ाती हैं. फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फातिमा के द्वारा और फातिमा साना की इस गेंद को स्क्वायर लेग के दिशा में खेल दिया एक आसान से रन के लिए वहां पर स्मृति मांधना ने और इस एक रन के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया और भारत का स्कोर इस एक रन की मदद से अब बढ़कर 8-1 विकेट के नुकसान पर. जेमिमा अगली गेंद का सामना करेंगी और देखना यह है कि यहां पर क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमय रखेंगे या फिर कुछ हाथ खोलकर पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक लगाना पसंद करेंगे. फिलहाल फील्ड प्लेसिंग के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है वहाँ पर ये देखते हुए कि बीच मैदान पर इस समय जो दो बैटर्स हैं वो एक बाएं हाथ का स्मृति मंधना और जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जेमिमा रॉड्रिक्स. एक स्पिन स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय फातिमा साना जो कि टीम के कप्तान हैं, हालांकि कल चोटिल हो गई थी घुटने में, नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने पर गेंद आकर के लगी थी और काफ़ी संशय था कि वो आज का मुकाबला खेलेंगी या नहीं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से फिट. अगले गेंद फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को सीधे बल्ले से हल्का सा पुश कर दिया लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, बाईं तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया. भारत टॉस जीतकर एक विशाल स्कोर खड़ा कर देना चाहता है, एक बड़ी चुनौती यहां पर रखना चाहता है.
3: And immediately, Pakistan make a change. They call Muniba Ali, the wicketkeeper, onto the stumps. She's called for the helmet and she's going to now stand on the stumps because Jemima Rodrigues stepped out of her crease to play the first ball in order to try and alter Fatima Sana's length. So, proactive Pakistan today.
0: अच्छी कप्तानी वहां पर फातिमा साना की. फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार कट करने की कोशिश. गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया और एक बाउंस के बाद जाकर विकेट कीपर मुनीबा अली के पैरों में जाकर गेंद टकराई और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई. और निश्चित रूप से जमीमा रॉड्रिक्स को संभल कर खेलने की आवश्यकता है. यहाँ पर फातिमा साना ज़रूर प्रसन्न है कि जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक परेशानी में डालने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाबी हासिल की. अगली गेंद देकर फातिमा साना टीम की कप्तान पाकिस्तान की एक बार फिर से तैयार. दाएं हाथ से ओवर द विकेट. इस बार स्टंप के नज़दीक से गेंद थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ ऑफ मिडल स्टंप की तरफ आती. इस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया. गेंद को वहां पर फील्ड किया. रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं. पिछली तीन गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाई हैं जमीमा रॉड्रिक्स. अब तक चार गेंदों का उन्होंने सामना किया है और खाता अभी तक नहीं खुला है. शफाली वर्मा का पहले ही ओवर के दौरान आउट होकर जाना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो पावर प्ले में अच्छा खासा एक गति भारतीय स्कोर बोर्ड को दे सकती थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर के दौरान उन्हें अपने जाल में फंसा लिया. फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके हल्के से पुश किया. ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर सीधा थ्रो स्टंप्स के ऊपर लेकिन स्टंप के आसपास कहीं भी गेंद नहीं थी और डाइव लगाते हुए जमीमा ने अपना इस मैच का पहला रन पूरा किया. भारत 9 एक विकेट के नुकसान पर.
3: थ्री थिंग्स हैपेंड देयर आशीष. फर्स्ट ऑफ ऑल the ball went to mid on where Alia Riaz fielded it.
7: श्रोताओं, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब आप सुनेंगे 7:21 से. यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे.
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी.
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के.
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी. अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
9: पक्का.
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
11: हर घर सूर्य घर.
12: बड़ी बहू,
13: ये तुम्हारे नाम.
12: इतनी भी क्या जल्दी थी.
13: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम.
12: और ये
14: मेरी गुड़िया के नाम.
15: पर दादी,
13: हाँ,
15: आपके नाम.
16: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है. कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो.
13: शुभ शुभ बोलो.
15: क्या
16: आरबीआई कहता है.
17: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
18: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे. सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को मिला रोजगार. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1.25 करोड़ बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टार्टअप, प्रमुख निवेशक, प्रौद्योगिकी लीडर और दुनिया भर के शिक्षा संस्थान शामिल हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र किया. श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और भारत लोकोन्मुखी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है. उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति देने के साथ ही भविष्य को आकार दे रही हैं.
19: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
18: वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के नवाचार तंत्र और फ्रांस के प्रौद्योगिकी विस्तार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक MSME इकाइयों के माध्यम से 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। आज भोपाल में समृद्ध MSME विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
20: 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ पंजीकृत MSME इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ।
18: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की 900 से अधिक MSME इकाइयों को 350 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही समस्त देवताओं का भुगतान और विशेष पैकेज के तहत भी इकाइयों को सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति 2025 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हित लाभ प्रदान किए। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफ़ायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
21: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
18: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा,
22: आज लाडली बहनाओं की राशि डालते डालते लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93 लाख की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि ये हमने लाडली बहनाओं के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया उनके खाते में जा रहा है।
18: ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बेरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को मिट्टी और पौधों की वैज्ञानिक जाँच, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और विशेषज्ञ सलाह एक ही स्थान पर मिलेंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के 19 जिलों की बाल कल्याण समिति CWC के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तंत्र, पुनर्वास और बाल कल्याण समितियों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर जानकारी दी। अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में तेज आंधी

व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन, यूएवी तथा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले में अनुगुंज अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मंदसौर जिले में आयोजित जन कल्याण शिविरों में अब तक 3,841 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,582 पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। खंडवा जिले की जनपद पंचायत हरसू द्वारा आयोजित जन शिविर में जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने सहभागिता कर ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में कल देर शाम नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में सिंदौवा गांव में आज दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
0: ओ
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनिए ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
5: शमीम तैयार। इस बार ये गेंद घुटनों के बल बैठते हुए स्वीप कर दिया। फील्डर गेंद के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं। और गेंद सीमा रेखा से जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: साहिरा जवीन ने हालांकि दौड़ तो काफी लगाई थी, लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे काफी ज्यादा तेज थी। फ्लाइटेड गेंद थी थोड़ी सी, और उस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए स्वीप कर दिया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। जानते थे कि वहाँ फील्डर मौजूद हैं, लेकिन उनके बगल से गेंद को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी इस अवसर पर स्मृति मांधना ने। 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्मृति इस चौके की मदद से।
7: Now, the interesting thing, Ashish, is that Pakistan have quickly gone to Shamim, who's an off-spinner. She's by no means a frontline bowler. She does bowl her off-breaks, but she's considered more of a part-time option. Meanwhile, Saira Jabeen, who dived awkwardly in order to try and stop that ball, landed in a very clumsy manner, and she seems to have hurt herself. The team physio for Pakistan is currently on the field, and she's attending Saira Jabeen. Looks like she's good to continue. Shamim, meanwhile, prepares herself to deliver what will be the third ball of the fifth over. India 24 for 2. Smriti Mandhana facing.
5: अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार हैं शमीम, और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद सीमा रेखा से बाहर दनदनाते हुए 4 रनों के लिए।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: इस चौके की मदद से भारत का स्कोर अब 28 दो विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद, और इन 28 रनों में 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है एजबेस्टन पर पाकिस्तान के खिलाफ ICC महिला T20 विश्व कप के अपने इस पहले मुकाबले में। एक बार फिर से तैयार वहाँ पर रमीन शमीम, बाएं हाथ से ऑफ स्पिनर गेंदबाज, और इस बार क्रीज के बिल्कुल कोने से ही गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर, और गेंद को वहां पर पॉइंट की दिशा में इससे पहले कि फील्ड किया जा सके आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल ली, और इस एक रन की मदद से हरमनप्रीत ने अपने और अपने टीम के खाते में 1 रन का इजाफा किया, बल्कि स्मृति मंदाना थी, माफ कीजिए, वहां पर, और इस एक रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा अब 20 पर। तो 14 गेंदों में 20 रन स्मृति के। हरमनप्रीत तैयार हैं इस समय अगली गेंद का सामना करने के लिए।
7: The good thing is Smriti has looked good. They brought in the off spinner probably to counter the left hander, but she has looked unhurried and she has already struck 2 boundaries. Now over to Harmanpreet, who gets a flighty delivery which was delivered from over the wicket just 70 km/h.

0: So good air given there by Shamim. However, the length allowed Harmanpreet to get onto the front foot, push it towards long on and pick up a single. 30 on the board now for India. One ball remaining in the fifth over. Around the wicket goes Shamim and delivers this one with a round armish action. Tries to deliver the quicker one. However, once again, in a very unhurried, languid manner, Smriti taps it towards extra cover. No runs to be had of that delivery. This over produced 10. 30 for 2 after 5.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: फातिमा साना एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर वहां पर नजर आ रही हैं। भारत ने पावर प्ले के पहले 5 ओवर में अब तक 30 रन बनाए हैं और 2 विकेट भारत अब तक गंवा चुका है। फातिमा साना नए ओवर की शुरुआत करते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट कप्तान हरमनप्रीत के लिए, और हरमनप्रीत के लिए गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी। पैर को आगे की तरफ निकाल कर उस गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं और गेंद को वहां पर विकेटकीपर ने आसानी के साथ अपने कब्जे में कर लिया। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर हरमनप्रीत ने 4 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाए हैं। 15 गेंदों का सामना करने पर के बाद स्मृति ने अब तक 20 रन बना लिए हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। आज अपेक्षाकृत अगर देखें तो अन्य किसी भी भारतीय बैटर की अपेक्षा वो ज़्यादा बेहतर आत्मविश्वास से खेलती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी बीच वहाँ पर तीसरे अंपायर का कॉल आता हुआ कि फातिमा साना की पिछली जो गेंद थी वो नो बॉल थी, तो यहाँ पर फ्री हिट भारत के लिए। क्या उसका भरपूर लाभ कप्तान हरमनप्रीत कौर उठा पाएंगे? दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार ये गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की थी और गेंद को वहां पर मोड़ दिया। स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के भारत का 32 2 विकेट के नुकसान पर। फातिमा साना की अच्छी गेंदबाजी, कोई अवसर नहीं दिया कि बड़ा हिट लगा सके वहां पर हरमनप्रीत।
0: राइट, फातिमा साना इज टर्निंग आउट टू बी इंप्रेसिव। And the interesting thing was that the wicketkeeper was standing up to the stumps for Harmanpreet Kaur. We have seen in the past that when Fatima began bowling, the keeper was standing back, and now she goes back again for Smriti Mandhana, who has taken strike, delivers this one on a good length, angled away towards the imaginary fourth stump. Mandhana uses a vertical bat to tap it towards mid-off and picks up a comfortable single. Meanwhile, a good news coming from the land of Turkey, where World Cup Stage 3 of archery is currently underway, and the good news is that in the men's recurve individual event, Dheeraj Bomadevara of India has won a gold medal. So congratulations to entire country, congratulations to all Indians, congratulations to all sports fans. We are expecting a lot from Dheeraj Bomadevara, who missed out on an Olympic medal, finished 4th in the mixed team event alongside Ankita Bhakat at the Paris Olympics. Meanwhile, back to this game, 33 for 2 India after 5.2 overs. Last over of the power play underway. Fatima Sana once again has called the keeper up to the stumps as Harmanpreet Kaur is on strike. She stands there with an open stance, good length delivery, angled in towards the middle and off stump, and Harmanpreet plays it with soft hands, just bunts it towards the front of square leg, calls for a prompt single, and Mandhana responds as promptly too. The two batters cross over, add yet another single to their account. India's score after 5.3 has moved to 34 for 2. 3 deliveries remaining in the power play. The Indian fans would want a couple more boundaries. Are we being too greedy though, Ashish?
4: निश्चित रूप से भारत को यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स की आवश्यकता है, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाहे आप उसे ग्रीड का नाम दें या फिर ज़रूरत का, लेकिन भारत को यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स खेलने की आवश्यकता है। ये देखते हुए कि भारत तो 2 विकेट गंवा चुका है, रनों की औसत रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 6 के आसपास मंडराती हुई। 5.4 ओवर के बाद भारत ने 34 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और पिछली गेंद पर भी कोई स्कोरिंग शॉट भारत के बैटर नहीं लगा पाए। स्मृति मांधना 21 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 4 चौके शामिल हैं, एक बार फिर से तैयार हैं फातिमा साना की अगली गेंद का सामना करने के लिए। फील्ड प्रेसिंग में थोड़ा सा परिवर्तन वहाँ पर किया जाता हुआ उनके लिए ऑफ साइड में, और फातिमा साना काफ़ी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ खेलने वाले एक पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई, इस गेंद को फ्रंट फुट पे जाकर हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया जाता हुआ बिना किसी रन के। पिच के मिजाज को यदि आप देखें तो इस पर घास बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, भूरे रंग की पिच है और बल्लेबाजी के लिए जैसा कि माना जा रहा था कि काफ़ी उपयुक्त था। और मुझे लगता है कि दर्पण यहाँ पर समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे ये पिच स्पिनर्स के लिए शायद ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है।
0: We hope and expect the same because India is packed with spinners. More on that after this delivery. Next delivery has been hit uppishly, but it goes away from the outstretched right hand of Fatima Sana and ends up hitting the boundary cushions straight down the ground. So a lovely straight drive from the bat of Smriti Mandhana marks the end of the power play. 6 overs done. 38 for 2 India. Smriti Mandhana in this phase has been the top scorer. She's been elegant. She's been steady, sturdy, unhurried. And she currently wears a smile on her face. And Smriti, India will keep smiling if you stay in the middle. 25 runs off 19 balls against her name. She's joined by Harmanpreet Kaur, the captain, at the other end. 4 runs off 6 deliveries for Harmanpreet Kaur. As I said, India are 38 for 2 after 6 overs.
5: The cricket commentary will continue after a short FIFA update.
6: World Football Update from the BBC.
7: Hello, I'm Conor O'Grady of the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. Vinicius Jr.'s equaliser rescued a point for Brazil in their World Cup opener with Morocco in New Jersey. 1-1 was how it finished. The five-time champions remain unbeaten in their opening World Cup match since 1934. But the former Chelsea and Tottenham midfielder Gus Poyet was disappointed with their overall performance.
8: I was surprised how bad technically they were today. I don't know if it was a pitch that was a problem, but they were missing passes, simple passes that you would expect a Brazilian Pelé to do well.
7: Scotland atop of Group C after a 1-0 victory against Haiti. It's their first World Cup win since 1990 at their first finals since 1998. It's their former midfielder, Scott Brown.
9: It's an emotional game. For us just to get the 3 points, we're sitting top of the group, it's incredible. We didn't have the best second half performance, we've all got to be honest, but we had to grind out and we knew we were going to grind out.
7: Elsewhere, Nesroy Irinkunda became Australia's youngest World Cup goalscorer as they beat Turkey 2-0 in Vancouver. Qatar claimed their first ever point at World Cup finals with a 1-0 draw against Switzerland. And there's another 4 games on Sunday. The smallest nation ever to reach a World Cup get their campaign underway. Curaçao played Germany in Houston. They're coached by the former Sunderland boss, Dick Advocaat.
10: We have everything to win, nothing to lose, because the expectation is not that high outside us, because we think that we can still surprise somebody.
7: Elsewhere on Sunday, Netherlands play Japan, Ivory Coast face Ecuador in Philadelphia, and Sweden play Tunisia. And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
6: World Football Update from the BBC.
4: मंथना और हरमनप्रीत वो दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। सुजी बेट के बाद अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधना के हैं और उसके बाद हरमनप्रीत कौर के हैं। तो अनुभव की कोई कमी नहीं है और इस तरह की कई परिस्थितियों से उन्होंने सामना किया है, जूझते रहे हैं और उसके बाद सफलताएं उनके हाथ लगी हैं। हरमनप्रीत कौर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये उनके लिए 10वां विश्व कप है, हर विश्व कप के हर संस्करण में उन्होंने खेला है और 5वां ऐसा अवसर जबकि लगातार वो कप्तानी कर रही हैं भारतीय टीम की। तो दायित्व उनके कंधों पर बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसका निर्वाह वो किस तरीके से करती हैं ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल 6 ओवर में 38 रन भारत के, 2 विकेट के नुकसान पर रनों की औसत रफ्तार पावर प्ले में 6.33 की। हरमनप्रीत 4 पर खेल रहे हैं, स्मृति 25 पर। नए ओवर की शुरुआत शमीम के द्वारा, पहली गेंद ओवर द विकेट हरमनप्रीत के लिए, मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेला और वहां पर गेंद को इससे पहले कि आलिया रियाज फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों ही बैटर्स ने 1 रन के लिए छोर बदल लिया। इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्मृति बाएं हाथ के बल्लेबाज, फील्ड पेसिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। 19 गेंदों का सामना करने के बाद स्मृति ने अब तक 25 रन बना लिए हैं। पूरी एकाग्रता के साथ खेलते हुए

0: विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के साथ चिपके हुए और उनके लिए राउंड द विकेट आते हुए और ये गेंद फ्रंट फुट पे आके हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया वहाँ पर रमीन शमीम ने और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। दर्शक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मौजूद। अगली गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड मिडल और स्टंप पर एक कदम आगे निकलकर इस गेंद को ड्राइव किया था वहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहाँ पर नतालिया के रूप में मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैटर्स को और इस एक रन की मदद से भारत अब 40 दो विकेट के नुकसान पर। स्मृति पहुंची 26 पर 21 गेंदों का सामना करने के बाद। इसमें 5 चौके शामिल हैं। हरमनप्रीत 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद का ओवर द विकेट शमीम आती हुई फ्लाइटेड गेंद एक कदम आगे निकालकर इस गेंद को हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर अपने दाईं तरफ जाकर फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को एक बार से फिर से ध्वस्त कर दिया। 40 पर अभी भी टिका हुआ भारतीय टीम का स्कोर। फील्ड प्रेसिंग का मुआयना काफ़ी बारीकी से कप्तान हरमनप्रीत ऑन साइड पर करते हुए क्या अगला शॉट उस दिशा में आएगा और इस बार इस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए हल्के से पुश करा ऑन साइड की तरफ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं 30 गज के दायरे के अंदर। रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। अंतिम गेंद का आना बाकी है रमीन शमीम की। रमीन शमीम क्या कुछ कर पाएंगी इस अपनी अंतिम गेंद पर देखना दिलचस्प होगा। रनों की औसत रफ्तार भारत की अब 6 से लुढ़क करके 5.85 रन रह गई है। अगली गेंद और इस बार गेंद की पिच के नज़दीक पहुंचकर हल्के से गेंद को पुश किया और आलिया रियाज इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड करें मिड ऑन की दिशा में एक रन के लिए छोर बदल लिया हरमनप्रीत और वहां पर स्मृति ने। इस एक रन की मदद से स्कोर भारत का बढ़कर 41 दो विकेट के नुकसान पर 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: The last over was a neat one from Pakistan's perspective, only 3 singles of it, and Tasmia Rubab, the left-arm seamer, has once again been called into the attack. She was the one who picked up the wicket of Jemima Rodrigues. She delivers this first delivery of the 8th over from over the wicket and looks like a bit of an off cutter, pitches outside leg and then moves towards the stumps. Harmanpreet Kaur was standing deep in her crease, allowed the ball to come close to her and then swiped across the line in order to send the ball rollicking away towards deep backward square leg, and she picks up a comfortable single with that. The score moves to 42-2. Remember, Tasmia Rubab, as we told you before, is a bit of an unknown quantity. She last played a T20I in this year, but that was only her second T20I. The first T20I, meaning her debut match, was back in 2024. So she hasn't played a lot of international cricket. She is a bit of an unknown quantity. And therefore, India will have to deal with her with care and caution. Delivers this one on a good length outside the off stump. Smriti Mandhana hangs back, allows the ball to come close to her, and then drives it with an angled face. The ball goes trickling away towards the deep backward point fielder. A comfortable single has been taken. That takes Smriti to 27 and India to 43-2. Now remember folks, 22 women's T20 internationals before today have been played at this particular venue. It's an iconic venue, the Edgbaston in Birmingham. More about that after this ball. Tasmia Rubab runs in to deliver this one on the shorter side of good length. The ball angled away towards the off stick. Once again, the batter hangs back and swipes across the line. That swish towards deep backward square leg produces a single for Harmanpreet Kaur, who is now on 8 of 12. 44-2 India after 7.3. The average score at Edgbaston in those 22 women's T20 internationals is 138. Even the match that happened in the afternoon today, according to India's time, between Bangladesh and Netherlands, saw Netherlands score 139 in the first innings. Meanwhile, a full toss which Smriti Mandhana has hit straight to the fielder. She wears a wry smile on her face because she knows that she has missed out on an opportunity. She had expected Tasmia Rubab to do something of that sort and hence shuffled towards the leg side early. Rubab went for a yorker, ended up bowling a full toss at the stumps, and then Smriti Mandhana unfurled a crisp extra cover drive however, straight to the fielder. So a dot ball

0: after the three singles. Next delivery once again shuffles to the onside. Dasmiti Mandana gets followed up and hits this one aerial. The catch has been put down. Ali Arias running back from mid-off could not grab that one, and Smriti Mandana gets alive. India breathe a sigh of relief.
1: काफी बड़ा अवसर था पाकिस्तान के लिए स्मृति मंदाना जैसी बल्लेबाज को वापस पवेलियन लौटाने का, और इस बार जैसे ही गेंद को खेला था गेंद हवा में काफी ज्यादा उछल गई थी और आलिया रियाज वहां पर मौजूद थी, गेंद तक पहुंच भी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पूर्वानुमान में कमी रह गई जिसकी वजह से गेंद उनके हाथों से फिसलती हुई सीधा जमीन को स्पर्श कर गई। तो एक सुनहरा अवसर पाकिस्तान ने गवा दिया यहां पर स्मृति को आउट करने का। फिलहाल भारत 45 दो विकेट के नुकसान पर।
0: Last delivery of the over, delivered on the fuller side of good length on the pad line, and Harmanpreet Kaur presses forward, knocks it towards wide long on, picks up a comfortable single that marks the end of an of over number 8, which had a life for Smriti Mandana. Big moment in the match. How much will that cost Pakistan and how much will India be able to cash upon it? We will find out together. 46 for 2 the score currently.
1: तो तास्मिया रुबाब जो कि मात्र 23 वर्ष की हैं, मात्र अपना तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रही हैं। इससे पहले कोई भी उनके नाम के आगे विकेट दर्ज नहीं था। पहला ही अंतर्राष्ट्रीय विकेट जो उन्होंने लिया वो जेमिमा रॉड्रिक्स का था, और पिछले ओवर के दौरान एक सुनहरी अवसर उनके हाथ से निकल गया। अगर वो कैच लपक लेती आलिया रियाज तो स्मृति मंदाना का विकेट भी उनके नाम के आगे दर्ज हो जाता और क्या शानदार मैच उनके लिए साबित हो सकता था। लेकिन निश्चित रूप से इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी से, अपने ऑफ स्पिन गेंदबाजी से काफ़ी मुतासिर किया है। भारत के बैटर्स को रोकने में कहीं ना कहीं उन्होंने कामयाबी हासिल की, और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ। कुल मिलाकर अब तक 4 गेंदबाज मोर्चे पर लगाए गए थे कप्तान फातिमा साना के द्वारा, और अब 5वां गेंदबाज नाशरा संधु के रूप में यहाँ पर लाया जाता हुआ गेंदबाजी के मोर्चे पर 46 दो विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की समाप्ति के बाद। हरमनप्रीत 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। रनों की औसत रफ्तार 5.63। अगली गेंद, और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया पॉइंट और कवर के बीच में से। कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: हरमनप्रीत कौर का ये पहला चौका, ये पहला शानदार कवर ड्राइव जो उन्होंने खेला, देखते ही बनता था। पॉइंट और कवर के बीच में से गैप हासिल करते हुए उन्होंने इस शॉट को खेला। 13 मीटर का फासला था बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच जो खिलाड़ी हैं उनके बीच, और उसका भरपूर फायदा उठाने में हरमनप्रीत कौर इस बार कामयाब रही थी। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ करके 50 दो विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद।
0: द फर्स्ट बाउंड्री फॉर इंडिया इन 14 डिलीवरीज।
1: जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी देर हो गई थी दर्पण जबकि भारत को तलाश थी कुछ बड़े शॉट्स की, और अंततः हरमनप्रीत, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि उनके पास खासा अनुभव है, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उसका निर्वाह वो फिलहाल बखूबी करते हुए एज वेस्टर्न के मैदान पर नजर आ रही हैं। अगली गेंद हरमनप्रीत के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश, लेकिन बैकवुड पॉइंट पर सीधा फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची और रन बनाने का वहां पर कोई प्रश्न नहीं। स्कोर भारत का 50 दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 ओवर प्रगति पर। बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं नाशरा संधू, और अंपायर और स्टंप के बीच में आकर ये गेंद उन्होंने की अराउंड द स्टंप्स, और इस बार गेंद को खेल दिया था वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर एक बार फिर से वहां पर मौजूद, रन नहीं मिल पाएगा। स्कोर अभी भी 50 पर टिका हुआ। रनों की औसत रफ्तार 5.77 रन इस समय है। भारत ज़रूर यहां पर कोशिश करेगा कि रनों की रफ्तार हाल फिलहाल में बढ़ाए, और दर्पण अब कहीं ना कहीं जो अगर आप आंकड़े देखें तो वो ये दर्शाते हैं कि पावर प्ले में और अंतिम जो डेथ ओवर्स होते हैं उससे भी ज़्यादा जो खेल पनपता है, जो रन बनते हैं वो मिडल ओवर्स में बनते हैं। जो टीम मिडल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी कर ले या अच्छी गेंदबाजी कर ले वो कहीं ना कहीं विजेता साबित होती है। अगली गेंद, और इस बार खेल को खूबसूरती के साथ खेल दिया हरमनप्रीत सिंह ने, मिड विकेट क्षेत्र में शानदार अंदाज में स्वीप करते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: गेंद की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं थी, अपने आप को ठीक से पोजीशन किया था वहाँ पर, और बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को स्वीप शॉट खेलते

0: वे 4 रन बटोर लिए अपने और अपनी टीम के लिए। हालांकि गेंद काफी देर तक हवा में थी लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित, कोई भी फील्डर वहां पर आसपास नहीं था। अगली गेंद देकर एक बार फिर से तैयार वहां पर नाशरा संधू, उनके ओवर की अंतिम गेंद। 2 चौके अब तक हरमनप्रीत लगा चुकी हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, लेकिन बैकफुट पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया जाएगा। ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ। 9 ओवर के बाद भारत 54 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Hold on to your hats, folks, because Hamarpreet has arrived. A couple of sweep shots, her favorite shot in the previous over, one of which resulted in a boundary. Next delivery from Tasbih Rubab. Smriti Mandhana steps out and smashes this one over long off for half a dozen. It's gone for 6, the second 6 of the match, the first of Mandhana's bat, and the Indian spectators in the stands are jumping for joy.
6: ये लगा आभा का छक्का।
0: इस छक्के के साथ ही मानो स्मृति कहना चाह रही हूँ हरमनप्रीत को कि तू डाल डाल तो मैं पात पात का शानदार अंदाज में उन्होंने इस गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। और उसके बाद जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है।
5: She stepped out of her crease in order to hit this one. It was delivered on a length from over the wicket by the left-arm seamer, who has been super impressive today. Tasbih Rubab, we are talking about. And Smriti Mandhana, the good thing was that she stepped out of her crease after the ball had left the bowler's hand, and therefore there was absolutely no chance for Rubab to make any sort of adjustment. The next delivery on a good length. This time, Mandhana very cleverly hangs back because she was expecting the bowler to shorten her length. However, Rubab did not do that, and in the end, it has been tucked away neatly towards square leg for a comfortable single. Mandhana on to 35, India 61 for 2. Next delivery is a fuller length delivery, this time around from Tasbih Rubab, and there's a chance of a run out. However, a big desperate dive from Smriti Mandhana ensures that she is home and the run has been taken. She gets up, dusts herself off, takes her gloves off, and then gives a thumbs up to her partner at the other end, saying that I'm safe and sound, don't you worry about anything. It was on a fuller length in line with the stumps, and Harmanpreet Kaur went onto the back foot, and after that she used her wrists to close the face and dinged it towards the empty midwicket region. The bowler herself ran, picked it up and hurled it back towards the stump. Alas, she could not score a direct hit, or else Mandhana might have been in trouble. The next delivery is a bit of a cutter delivered on the shorter side of good length, allows Harmanpreet to hang back and swish across the line. The ball goes towards deep backward square leg, allows for a comfortable single, which takes India's score to 64 for 2 after 9.4 overs. So pretty eventful. These middle overs are turning out to be just like you predicted, Ashish.
0: जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो मोमेंटम अब इन दोनों बैटर्स को हासिल हो चुका है, क्या उसको जारी रख पाएंगे। फिलहाल अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप की तरफ हटते हुए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलने में कामयाब रही थी। हालांकि वहाँ पर प्रोटेक्शन है, फील्डर ने गेंद को रोका सीमा रेखा से करीब करीब 8-10 गज अंदर, लेकिन तब तक आसानी के साथ 1 रन के लिए दोनों बैटर्स ने अपना छोर बदल लिया था।
5: So the score moving to 65 with that. 9.5 overs are done. Harmanpreet Kaur on 20. She is back on strike after that single that was taken by Smriti Mandhana. Last delivery of the 10th over coming up. Here comes Rubab and beats the bat. It was angled away towards the offside and hung back did the Indian captain. Went for a cut shot but did not make contact. At least that is what we felt on the first look. However, Rubab has made a polite inquiry for caught behind. The umpire has denied it. Then she has a conversation with her captain Fatima Sana, possibly discussing the possibilities of opting for DRS. However, Fatima Sana denies it. They do not opt for DRS. Remember, 2 reviews per side per innings are allowed in this particular World Cup. End of the 10th over, 65 for 2 India.
0: भले ही एजबेस्टन पर महिला क्रिकेट में जो औसत स्कोर है वो 138 का है, लेकिन भारत यहाँ पर कम से कम 150-160 का लक्ष्य पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहेगा और देखना यह है कि क्या उस इरादे में कामयाब भारतीय टीम हो पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 65 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और निश्चित रूप से कहना होगा कि 18 पर जब भारत का दूसरा विकेट गिरा था उसके बाद से लेकर अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की है, और देखना यह है कि इस साझेदारी को, इस तरह की बल्लेबाजी के क्रम को वो और कितना देर जारी रख सकते हैं। नाशरा संधू के नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद स्वीप कर दिया स्मृति ने, और स्मृति के इस स्वीप के बाद जैसे ही गेंद को वहां पर फील किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के नज़दीक, तब तक आसानी के साथ 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। 37 पर पहुंच चुकी हैं स्मृति अब 28 गेंदों का सामना करने के बाद, और कप्तान हरमनप्रीत 22 गेंदों का सामना करने के बाद 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। हमारे स्टेटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि हरमन और मंधना ने दोनों ने ही अब तक T20 मुकाबलों में 86-86 छक्के लगा चुकी हैं। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को कट किया लेकिन खूबसूरती के साथ वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गुलफिरोजा ने, शानदार क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन गुलफिरोजा के द्वारा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अगर जरा सी भी चूक होती तो शर्तिया 4 रन वहां पर भारत को मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल भारत इस 1 रन के साथ संतुष्ट, हरमनप्रीत भी 1 रन के साथ संतुष्ट। 67 पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए गेंद को स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी, अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद पैड पर टकराई लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद पैड पर टकराई थी जिसकी वजह से कोई अपील नहीं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से ओवर द विकेट, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच के नज़दीक पहुंचकर गेंद को वहां पर खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया, 2 रन के लिए बहुत तेज़ी से पलट लेंगे इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जा सके और थ्रो किया जा सके। इन 2 रनों के साथ भारत अब 69 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर पहले जो औसत रनों की रफ्तार 5.85 के आसपास मंडरा रही थी वो अब 6.47 रन हो गई है, और दोनों के बीच साझेदारी भी 51 रनों की हो चुकी है 45 गेंदों का सामना करने के बाद। पहली अर्धशतकीय की साझेदारी भारतीय टीम की आज इस मुकाबले में।
4: Right, fifth delivery of the 11th over, and Smriti Mandhana unfolds an exquisite inside-out drive, gets 4 for it.
6: ये लगा आभा का चौका।
4: Delivered on a good length, however, Smriti Mandhana shimmied down the pitch, as they say in cricket commentary often. She put her dancing shoes on, shuffled towards the leg side, and that allowed the bat to come through. Inside out she went, the ball into the gap between long off and cover, and skipped away to the boundary. Mandhana into the 40s now. Next delivery, once again she uses her feet, steps out of her crease, however Nashra Sandhu darts one into her pads in order to ensure that she cannot free her arms. However, Mandhana is able to clip that one away towards deep mid wicket, pick up a single, end of the 11th, 74 for 2.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: स्मृति मंधना ने 44 रन बना लिए हैं, मात्र 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से, और अगर ये 6 रन वो बना लेती हैं तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ये उनका 34वां अर्धशतक होगा। और वैसे भी दर्पण उनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी उन्हें खासी रास आती है, 2021 के बाद से अब तक कुल मिलाकर इससे पूर्व 6 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं। तो नए ओवर की शुरुआत शमीम के द्वारा, पहली गेंद और इनसाइड आउट, इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में है लेकिन कोई भी फील्डर आसपास नहीं, लंबी दौड़ वहां पर क्षेत्र रक्षक लगाते हुए गेंद को 1 या 2 गज अंदर रोका, और रिले थ्रो के द्वारा गेंद पहुंचती हुई वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए स्मृति ने। स्मृति इन 2 रनों की बदौलत अब 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर। भारत का स्कोर बढ़कर हुआ 76 2 विकेट के नुकसान पर। 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, और निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह के क्षेत्र रक्षण को सराह रहे हैं।

0: एक बार फिर से शमीम की अगली गेंद और इनसाइड आउट। इस बार फिर से 30 गज के दायरे के अंदर जो फील्डर खड़े थे उनके ऊपर से गेंद निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से। हालांकि आलिया रियाज वहां पर पहुंचे थी लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हो चुका है स्मृति मांधना का। स्मृति मांधना का ये 5वां अर्धशतक है T20 विश्व कप में, और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 34वां अवसर कुल मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, और पाकिस्तान के खिलाफ यदि बात करें तो ये उनका दूसरा अर्धशतक। क्या शानदार बल्लेबाजी की है। शुरुआत में भारत को झटके ज़रूर लगे। शेफाली वर्मा जो बल्लेबाजी के लिए उनके साथ आई थी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, मात्र 6 रन बनाकर वो वापस पवेलियन लौटी थी। जमीवमा का बल्ला आज ज़्यादा चला नहीं, 1 रन का उन्होंने योगदान दिया और 18 के कुल स्कोर पर वो पवेलियन की राह पकड़ बैठी। लेकिन उसके बाद से हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की। अगली गेंद को लॉफ्ट कर दिया और एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: माफ कीजिएगा, 4 रनों के लिए वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर पहुंची थी एक बाउंस के बाद, और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा इस समय करते हुए नजर आ रही हैं स्मृति मांधना। अपने हाथ पूरी तरह से खोल बैठी हैं इस अवसर पर वहाँ पर पाकिस्तान के गेंदबाज रमीम शमीम के खिलाफ। रमीम शमीम एक बार फिर से तैयार, बार फिर से गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद को खेलने के प्रयास में इस बार पूरी तरह से चूक गई थी, स्टंप के ऊपर से गिल्लियां जरूर बिखेर दी थी वहां पर विकेट कीपर मुनीबा अली ने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। पिछला पैर बिल्कुल क्रीज के अंदर मौजूद था स्मृति का, और किसी तरीके की कोई क्षति की संभावना वहां पर भारत को नहीं थी। स्कोर अभी भी टिका हुआ भारत का 84, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का आना बाकी है। उत्साह में वो गिल्लियां जरूर बिखेरी थी मुनीबा का। मुनीबा ने एक दबाव डालने की कोशिश की थी स्मृति के ऊपर, लेकिन स्मृति का पिछला पाव अंगद की तरह क्रीज में पूरी तरह से डटा हुआ था।
2: Two things. First of all, these are first signs of turn. This is the first ball that we have seen spinning in this particular match. The second thing is Smriti Mandhana had lunged forward and she had to stretch her back foot backwards as she realized that there was an opportunity of some sort of stumping, and in that she seems to have sprained her groin. She has currently taken her gloves off and she is down on the floor. The team physio has been summoned and Indian fans would hope that this is not anything serious. However, Pakistan might need to pull their socks up because this is some ordinary cricket for them. Right throughout this over, we saw that the offside field was up in the circle. Remember, there's a 25-yard circle in women's cricket and you're only allowed 4 fielders outside of it. Barring long off, everybody outside the circle was on the leg side, and with turn, Smriti Mandhana went inside out, which is one of her strengths, and Pakistan should have realized that this is the area that she will be looking to target, and yet they were bowling the off spinner and had the offside field up. So it was some ordinary cricket from them. Mandhana picked up a couple of boundaries in that direction, and after that, when they pushed one fielder back, Mandhana very cleverly went over mid-on and picked up a boundary in that direction as well. So some smart cricket. It has been a responsible innings, a class act from Smriti Mandhana all throughout the day today. She's currently batting on 54, and the good news is that the physio has done her job. Mandhana is back on her feet. 4,387 runs in T20 internationals against her name. She is the second highest scorer in all of women's T20 internationals. Only Susie Bates ahead of her with 4,720 runs. Next delivery of the over from Rameen Shamim. Delivers this one with a flatter trajectory so that Smriti Mandhana cannot use her feet. Delivers this one outside off as well. Mandhana rocks back and then wards it off towards the point fielder.
0: 145 ke lagbhag strike rate Smriti ka aur 54 run ab tak unke khate mein. Agle gend is baar off stump ki taraf pehle se hi shuffle karke aa chuki thi aur chaturai ke saath Shamim ne halaki gend को थोड़ा उनसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एन वक्त पर बल्ला अड़ाने में कामयाब रही 1 रन के लिए।

0: इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सकता डीप पॉइंट के क्षेत्र में। इसी के साथ ओवर की भी वहां पर समाप्ति हुई। 85 दो विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है। और साझेदारी की अगर बात करें तीसरे विकेट के लिए तो वो निश्चित रूप से इस समय काफ़ी बढ़िया 67 रनों की साझेदारी 53 गेंदों का सामना करने के बाद इन दोनों बैटर्स ने अब तक भारत के लिए अर्जित कर ली है। तो ये साझेदारी यहाँ से अगर और विकराल रूप लेती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दर्पण निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएंगी। शुरुआत में ज़रूर ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बैटर्स को कुछ परेशानी में डालने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हरमनप्रीत का बीच मैदान पर पदार्पण हुआ एक विश्वास जो टीम में आया, उसके बाद जो एक साझेदारी पनपी वहाँ पर स्मृति के साथ, उसने कहीं ना कहीं अब भारतीय समर्थक दर्शकों को एक राहत की सांस दी है। सादिया इकबाल नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद को खेलने की कोशिश वहां पर स्मृति मंदाना की तरफ से, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और वाइड का इशारा वहां पर आता।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब हम आपको सुनवाएंगे 8:35 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
4: धन्यवाद।
3: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
4: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
3: जी।
4: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
3: जी।
4: और तीसरा, विज्ञान में जहाँ ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
3: जी।
4: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से अरोमा में जब लेवेडी प्रिसाइज हो टाइमिंग, तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है। इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी दो ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहां सरकार में 200,000 शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी एक हफ्ता हो जाएगी।
3: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हम हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा

0: डिमांड और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया। कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
1: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। The vindication of Homi Baba's dream has happened through Prime Minister Modi. और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचें तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
0: बिल्कुल
1: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसके में लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
0: उसकी मात्रा भी सर कम है,
1: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे, उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
0: जी।
1: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
0: जी,
1: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
0: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया ये पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है
0: जी।
1: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं, अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
0: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोडमैप तैयार किया गया था, 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया, क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
1: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च

0: किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के, अब हम बराबर चल रहे हैं। तो क्वांटम में, और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर लें और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है, और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी मैन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसकी इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटअप, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। यहाँ पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए?
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: अब देखिए आज से

0: साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी। आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग 9 बिलियन US डॉलर और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके 40-45 बिलियन डॉलर हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए। और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिद्धूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही हैं, इंडोनेशिया जा रही हैं, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए, लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, ना बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठा कर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहाँ हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम

0: से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके, और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, जिस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे चार अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरी कल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरी कल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमने यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around

0: development focuses on policies, budgets, and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
1: Thank you for having me.
0: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
1: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with, say, something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally becoming, developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
0: Ashish, you know, you mentioned SIPs is so true, because now almost every pin code is covered by the State Bank of India Mutual Fund. So that tells you how big the footprint has become. Based on all these examples that we discussed, what is your sense about how India has grown capacity of the state or the administrative capacity?
1: Yeah, so obviously when people look at state, they tend to think of the elite services. And I think that's fine. But really what we need to look at, in my mind, is the people at mid-level and lower levels in state capacity. So if we take something like education, it has the largest base of government employees because school system is very large. We have 10.5 lakh government schools. And the reason why it's harder than, say, doing rural roads or rural electricity, at the front line, we have almost 60 lakh government school teachers. And nothing will really change in terms of outcomes unless the classroom transaction changes. So I think the hard part of this soft infrastructure is that you have to work through people. And we don't recruit that many more teachers anymore because we have achieved a fairly good pupil-teacher ratio. With our demographics now, you know, yes, we are growing a little bit in secondary school as enrollment increases. But in primary school, actually, enrollment peaked a while back. It's actually declining now as the number of births has come down over the last few years. So I think we will have to do whatever we would do with the current stock of people. The churn rate is only about 3-4%. So it's not like you can get a new breed of people. With the current set of people, how do we achieve better outcomes? That is the challenge. And I think that's a slow process. So unlike building a road, which can happen faster, I think we have to realize that this is a slow moving indicator. It'll take 10 years, 15 years to achieve the outcomes. But with a mission like Nipun Bharat, I have seen that this has already started to lead to changes on the ground in terms of teachers realizing the importance of foundational learning, teachers starting to use daily lesson plans, teachers starting to do a weekly formative assessment, teachers starting to identify the bottom half of children and see what remediation can be done to help them improve, teachers understanding the goals very clearly. I think these are big changes we've seen in the last 5 years. But even as we rolled them out in states like Uttar Pradesh, we did a great job. You found even after 5 years, there's only about 60-70% compliance because not every teacher will come on board. You know, it's a bell curve. You get the early adopters, then the others do it, then some don't. So it's hard work and you have to be patient. And so I'm very glad that government now is looking at Nipun Bharat 2.0, because government has realized that, you know, in 5 years, it's not like we're going to solve the problem. It'll need 15 years of hard work to actually make this happen at scale. So because human beings are involved at the last mile, education, health, livelihood, these are much more complicated than the hard infrastructure.
0: In fact, your foundation has worked very closely on this Nipun policy. So tell me, based on that experience, is this replicable across the country? Uttar Pradesh is the first test case for this.
1: Yes. So actually in Uttar Pradesh, when we went meet the chief minister, he immediately said Bunyadi Shiksha is important. They already had something called Kayakalp, which was to improve the school infrastructure. So they were doing a good job. But then they started something called Mission Prerna. And this is pre-COVID. And Chief Minister himself agreed to certain goals, very clear goals on oral reading fluency. Children need to read 35 words per minute in class 2 and 60 words per minute in class 3. Very clear goal was communicated to all teachers. Chief Minister took this document and made him line up all the officials. And unhone kaha ki hum shapath lete hain, you know, we will achieve these goals. So he got the whole system aligned, put a very good officer for Mission Prerna, who was there for 4 years, so there was stability. And, you know, they have seen dramatic improvement. If you look at Parakh, which is government runs National Achievement Survey, or you look at even Asar, which is a third party survey, Uttar Pradesh is the most improved state and at very large scale. So they started earlier. Then Madhya Pradesh launched Mission Ankur, Haryana launched. And then after NEP, the Honorable Prime Minister decided to make it a national mission and launch Nipun Bharat. We then started to support 11 states with this mission. And as I said, we've seen the change is gradual, but we have seen real change on the ground with Nipun Bharat and the improvement. Our foundational literacy was so bad, you know, if you look at it 6 years ago. World Bank publishes this learning poverty report in terms of percentage of children at the end of class 5 who can't read class 3 text. And basically, if you've missed the bus, you missed it permanent, because the curriculum by then assumes that you have to read. So 55%. And sub-Saharan Africa is much worse. But if you looked at countries like China, they were at 15%. Developed world is in single digits. So India has a long journey. And normally countries are improving at the rate of 0.7 percentage points per year. So if India had to follow the normal trajectory, even in a decade, we would get from 55 to 48% children. I think because we started Nipun Bharat, we are attempting to bend the curve. It's called bending the Preston curve. And I think we can do it much faster. I believe we'll go from 55 down to 25. It may take 15 years, but it'll be much faster than any other country has done it before.
0: The final thought that based on the last 12 years, based on your own experiences, very short response as to how do you, is the cup half full or half empty?
1: I'm in the half full camp. I think that we are poised to do great things as a country, both economically and also on the development side. I can tell you that when I travel across the world, I mean, some countries already have done a much better job. They started earlier, like China on human development has, and economically also they did better. Vietnam, I think, really prioritized human development early on, much before India did. So we may have started doing it more recently, but they have been doing it for 30, 40, 50 years. I think the communist system brought this focus on basic health, basic education very early on. So I think that we've started on the journey. As I said, the hard infrastructure part, we have the formula. On the soft infrastructure part, we are developing the formula and we need the patience. I think with slow moving indicators, nobody has taken an education system from poor to fair to good to great and lagaud a chalang and done it even in one decade. It's a journey, even from poor to fair is a decade, 15-year journey. Then you get to the fair level and you go to good. That's another 10, 15-year journey. Even in Singapore, when they went from good to great, was a 20-year journey. So I think in this, the problem is political cycles are shorter. Hmm. So you need leaders who have the confidence to back something for a longer period of time, because you may not see immediate wins like you see when a road is constructed or when water comes to a home. You do see certain, so what we also realize, because obviously politicians want to show a win, like say with reading, reading is a very hard task. So to improve reading at scale where every child can read with meaning will be impossible in 5 years. But we see that, look, about 30% of children couldn't even read letters. Can't we solve that problem in 5 years? Of course you can. We can do that. Can we at least show that the child can start to read basic text in front of their parent? a little bit better than they were doing before? Of course we can. So I think we have to pick a ladder of metrics, I call it. The eventual goal may be hard, but then there are these things behind, you know, which are easier to achieve and you can show. And they are, it's part of the ladder of progress. So I think that's very important in order to keep the political salience high behind these issues.
0: Unfortunately, we are out of time. Thank you so much for speaking to us, Ashish.
1: My pleasure. Thank you for having me.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you are listening to an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer was Anil Padmanabhan, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: ये लगा आभा का छक्का
4: 15 of the over with two balls still remaining. Very, very valuable runs for India. Richa Ghosh has moved to 20 of 11. She went deep in her crease and that allowed her to get underneath that very full ball which was delivered at the stumps. And then she swung her bat hard, 72 meters far. The ball went once again, goes deep in her crease, swings the bat hard. This one was delivered outside the off stump. She miscues it but still gets a boundary of the outside edge. India cross 150.
3: ये लगा आभा का चौका.
4: Tasmia went wide off the off stump because she did not want to get inside Richa Ghosh's arc. However, Ghosh threw her bat at it. She did not connect in the meat of the blade, ended up slicing this one. However, the ball still went over the head of the shot third fielder and skipped away to the fence. 19 runs in this over. A crucial one from India's perspective. Will this be the difference at the end of the day? One ball remaining. Tasmia Rubab wearing a stern expression on her face. Deepti Sharma ready to run at the non-striker's end. Ghosh on strike. A shot is delivery and it has been swatted away into the gap. Four more.
3: Ye laga aabha ka choka.
4: 155 for 5 after 19. It was a long hop from the youngster with plenty of width on offer. Richa Ghosh had her weight on the back foot and she was able to pull it away into the gap. There's a geometry lesson for all of you. Deep mid wicket, long on, both were stationed on the boundary and the ball went right in the center of that gap. She bisected it. That's what you call a bisector. 155 for 5, 6 balls to go. Fatima Sana to bowl, Deepti Sharma to bat, Richa Ghosh at the non-striker's end and Ashish Charangu to call.
5: Tasmia Rubab ka pichla over kafi mehenga sabit hua. 23 run usme aaye jisme 4 chauke aur ek chhakka bhi shamil tha. Kya shandar ballebazi ka pradarshan Richa Ghosh ke dwara aur Deepti ke dwara hota hua is samay Edgbaston ke maidan par, jiski badolat Bharat is samay 19 over ki samapti ke baad 155 hai 5 wicket ke nuksan par. ये 23 रन इस ओवर में जो बनाए हैं भारतीय बैटर्स ने, ये निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस मुकाबले के नतीजे का जहां तक सवाल है. फातिमा साना अपने नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं जो कि भारतीय पारी का अंतिम ओवर है और वहां पर दीप्ति शर्मा है. पहली गेंद को बाएं हाथ के दीप्ति शर्मा ने खेल दिया वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में. एक रन वहां पर ज़रूर मिल जाएगा उन्हें. इस एक रन की मदद से उनका स्कोर बढ़कर के हुआ 12 और भारत का स्कोर 156 5 विकेट के नुकसान पर. ऋचा घोष जो कि इस समय आग उगल रही हैं एजबेस्टन के मैदान पर, देखना है कि अगली गेंद पर क्या कुछ कर पाएंगी. 13 गेंदों में अब तक 28 रन बना चुकी है. अगली गेंद और इस बार फिर से खेल दिया उस गेंद को, देखना है कि एक क्षण के लिए लगा था कि वहां पर ऋचा घोष दोबारा से संभवतः उसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास करेंगी. भारत 156 5 विकेट के नुकसान पर. साना की अगली गेंद और इस बार लो फुल टॉस पर आती हुई इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेल दिया. लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है 4 रनों के लिए.
3: ये लगा आभा का चौका.
5: ऋचा घोष का बल्ला इस समय मानो आग उगल रहा हो एजबेस्टन के मैदान पर. 160 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया है ऋचा घोष ने 32 रन बना लिए हैं 14 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। 228 के लगभग का उनका स्ट्राइकिंग रेट। भारत को इसी तरीके की बल्लेबाजी की दरकार थी अपने लोअर मिडल ऑर्डर से, और ऋचा और दीप्ति ने अब तक बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। 4 गेंदों का आना बाकी है। फातिमा के इस बार शॉट ऑफ लंग गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया पटकने की कोशिश, और इस बार इस गेंद को वहां पर पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम पूरा किया वहां पर मुनीबा अली ने, और कोई रन नहीं इस गेंद पर। पहली डॉट गेंद इस ओवर में आती हुई, और देखना ये है कि क्या अगली बची हुई गेंदों पर रन बनाने में भारतीय बैटर्स कामयाब होंगे या फिर नहीं। भारत 160 पर पहुंच चुका है, जो कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा सकता है। अगली गेंद लेक्सम से काफी ज्यादा बाहर, और उसको खोल दिया फाइनल की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
5: भारत इस समय शानदार बल्लेबाजी करता हुआ, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष 4 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के, देखना यह है कि तीसरे अंपायर क्या इस गेंद को वाइड भी देते हैं या फिर नहीं। 4 वाइड के रन वहां पर भारत को मिलते हुए 165, 5 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। बाउंड्री लाइन पर जो 3 फील्डर हैं वो सभी ऑन साइड पर। अगली गेंद लेक्सम से फिर ज्यादा बाहर की तरफ, और वाइड का इशारा आएगा। जैकलिन विलियम्स, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, अपना 91वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जिसमें वो अंपायरिंग कर रही हैं, उनकी नजरों से बच नहीं पाई ये गेंद, और लगातार 2 वाइड गेंद जिस तरह से की है कप्तान फातिमा साना ने, वो कहीं ना कहीं दर्पण दिखाता है कि दबाव इस समय पाकिस्तान की टीम के कप्तान पर है।
4: Look like she is trying to follow up Ghosh. She is trying to ensure that she doesn't get the room to swing her arms. Keeper goes back. One of the fielders on the offside drops back. However, Richa Ghosh opens her arms and pumps this one over extra cover. This was delivered outside the off stump at 105.5 kilometers per hour on a length. Richa Ghosh, however, was able to get underneath it. Yet she was not able to find the desired timing. The ball slows up in the outfield, and the pair of Deepthi and Richa have to settle for a couple. 168 for 5. The score moves to. It has been a long over from Fatima Sana because of those couple of wide deliveries. 2 deliveries still coming up. 2 legitimate balls still out. Almost as if Ghosh had decided yesterday that she would be and try and swung it even before the ball arrived. It was on a length. It was there to be hit. And hence an awry smile on the face of Ghosh's, on the face of Richa Ghosh, because she knows it was there to be hit. However, it seems like, according to the replay on our monitors, that it might have been the wobble seam delivery, which sometimes can land on the seam and generate extra bounce, sometimes can land on the side and skid through. It generated a bit of off and the
5: 34 रनों की शानदार पारी खेल करके ऋचा घोष, जो कि टीम की विकेट कीपर भी हैं, वो वापस इस समय पवेलियन लौट चुकी हैं, और जिस तरह की पारी की दरकार थी टीम को उनसे, उन्होंने ठीक उसके अनुरूप बल्लेबाजी की है। बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर अंतिम गेंद का आना बाकी है। श्रृंखला पाटिल इस समय बीच मैदान पर हैं, और इस पारी के अंतिम गेंद का सामना वो करेंगी। देखना है क्या कुछ कर पाती हैं। 9 पारियों में 26 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं और 74 का उनका स्ट्राइक रेट। यार अगली गेंद करने के लिए बाहर की तरफ, क्या वाइड होगी? जी हाँ, एक बार फिर से गेंद वहां पर वाइड। लगातार इस ओवर में यदि बात करें तो वाइड का सिलसिला देखने को मिला है। तीसरी वाइड गेंद जो कि कप्तान फातिमा साना करती हुई, 7 बाई के रन इस ओवर में भारत को मिल चुके हैं उपहार स्वरूप, और जैकलिन विलियम्स ने एक बार फिर से कोई कोताही नहीं दिखाई। जैसे ही उन्होंने देखा कि लेक्सम से काफी ज्यादा बाहर गेंद है, दोनों भुजाओं को जमीन के समानांतर फैलाकर उन्होंने वाइड का इशारा किया। फातिमा का ये लंबा ओवर
6: क्या इस गेंद के साथ समाप्त होगा या फिर एक और वाइड या नो बॉल। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को रिवर्स स्वीप करना चाहती थी एलबीडब्ल्यू की वहां पर अपील। स्टंप के बिल्कुल सामने जाकर गेंद उनके शरीर पर टकराई थी और देखना यह है कि टीवी अंपायर का वहां पर क्या फैसला होगा।
7: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
8: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
7: तुम हो ही भुलक्कड़।
8: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
9: ली। जानिए आभा के बारे में।
10: आभा
9: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
11: The score was reading 169 for 6 after 19.
12: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
13: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
12: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
13: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
12: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
10: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
12: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
14: The world seeks trusted and reliable partners.
15: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
14: And a scale that few can match.
12: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
16: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
17: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
12: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकी

0: क्यों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
7: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
6: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
7: दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग-अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
6: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
8: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as in Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
6: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
8: We did Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस डेस एक्सपोजिशो में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बैरोट और दिगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट तकरीब का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। तीन रोज़ा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई ज़हानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई अख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाज़े किया कि आज भारत में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के ज़रिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क़्यादत के मॉडल को फ़रोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरक विज़न के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकतदारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकतदारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरक अखदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नज़रिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ

0: जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखो ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के अख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आज़ादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी।
1: The world seeks trusted and reliable partners.
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
0: वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वज़ीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंस के मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकतदारी को मुस्तहकम करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोज़ा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं। ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
4: GST को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
3: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में NDA हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج بتایا کہ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 8 سے 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 40 سے 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ

0: adamant in saying that we need to galvanize the way we bat in T20I cricket. He summoned some youngsters into the team, and since then we have seen this approach. Currently Muniba Ali batting on 25 and Aisha Zafar batting on 12. The only two Pakistani batters who have scored centuries in women T20Is are in the middle, and the drinks break has now come to a conclusion. Deepti Sharma once again has the ball in her hand, the only successful bowler for India so far. She begins the seventh over, delivers this one from over the wicket on a drivable length, and in a very measured manner, Muniba Ali gets onto the front foot, square drives it towards the fielder at deep cover, who runs to her right and then cleans it up. In the drinks break, we saw animated conversation from India's bowling coach Avishkar Salvi, who was on the park having a conversation in the team huddle. And we hope that the words of wisdom that he gave would work, and we will see its effects soon. Deepti Sharma meanwhile delivers this one from around the wicket to the right-hander, and Aisha Zafar nudges the ball back to the bowler. 53 for 1 after 6.2.
1: 53 एक विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से अराउंड द विकेट वहां पर दीप्ति शर्मा और गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन वहां पर फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, कोई कोताही नहीं, बहुत ही सफाई के साथ उस कैच को मुकम्मल कर लिया और यहां पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता हुआ। आयशा जफर, जिनसे काफी उम्मीदें पाकिस्तान की टीम को निश्चित रूप से रही होगी, जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, शतक लगाया था, लेकिन यहां पर दीप्ति शर्मा ने उन्हें वापस पवेलियन चलता कर दिया है मात्र 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर। इस गेंद को जैसे ही उन्होंने अपना मौका ताड़ने की कोशिश की, स्वीप किया था, लेकिन फाइन लेग जो कि 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर मौजूद था, कोई गलती वहां पर नहीं हुई और इस तरह से उस कैच को मुकम्मल कर लिया गया। तो एक और झटका पाकिस्तान की टीम के लिए। स्मृति मांधना ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की तरफ डाइव लगाते हुए उस गेंद को अपने हाथों में कैद किया और ये कामयाबी भारत की झोली में डाल दी।
0: विकेट वंस अगेन फॉर दीप्ति शर्मा, शी डिलीवर्स एवरी टाइम इंडिया नीड्स हर टू। व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अटैक, व्हाट डिड वी से, इन ट्रबल कॉल दीप्ति, and she has delivered with not just one but two wickets now. Two wickets in her 1.3 overs, 2 for 3, and in walks youngster Saira Jabeen now. Saira Jabeen and Muniba Ali in the middle. Pakistan still needing 117 in 80 balls here at Edgbaston, which has been an iconic ground and has witnessed many iconic moments in cricket, is witnessing another iconic match because both the teams are tussling it out there. Deepti Sharma still around the wicket, delivers this one on a good length, slow through the air, just 70 kilometers per hour, and that allows the batter to get onto the front foot and then nudge it towards backward square leg and pick up a comfortable single. In case you've just joined us, Pakistan have just lost their second wicket. Smriti Mandhana with an excellent catch at short fine leg, for which she had to fling herself forward and grab it inches from the ground, produced that wicket of the bowling of Deepti Sharma. Meanwhile, the next delivery, Deepti beats the bat. Good length, pitches outside off and then spins further away. Muniba Ali flayed her hands away from the body. The ball whizzed past the outside edge and Richa Ghosh once again fumbled in collection. Final ball of the over on a drivable length. In a measured manner, Muniba knocks it towards deep extra cover, where Jemima Rodrigues mops up a comfortable single added. Pakistan move to 55 for 2 at the end of the 7th.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: अपना पांचवा T20 विश्व कप खेल रही दीप्ति शर्मा ने दो सफलताएं अब तक अपने पहले दो ओवर के स्पेल में हासिल कर ली हैं। और भारत की अब तक एकमात्र सफल गेंदबाज हैं और उनका गेंदबाजी का विश्लेषण यदि आप देखें दर्पण तो दो ओवर में कोई मेडल नहीं, 5 रन उन्होंने दिए और 2 सफलताएं, ना केवल सफल बल्कि साथ ही साथ किफायती भी, और जिसकी दरकार है भारत को गेंदबाजी में परिवर्तन। श्री चरनी इस समय अरुंधति रेड्डी के स्थान पर आती हुई पहली गेंद और इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स के द्वारा, लेकिन तब तक 1 रन के लिए छोर बदल लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से मुनीबा का स्कोर हुआ 28 25 गेंदों का सामना करने के बाद। और अब वहां पर श्री चरनी की यदि बात करें तो 21 मैचों में अब तक 28 विकेट उन्होंने हासिल की हैं, शानदार प्रदर्शन रहा है चरनी का पिछले कुछ समय में। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं और अराउंड द विकेट आते हुए इस अवसर पर 1 रन के लिए खेल दिया था उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। इस 1 रन की मदद से सायरा का स्कोर पहुँचा 2 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर हुआ 57 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है, गेंद की रफ्तार यदि आप देखें तो चाहे श्री चरनी की बात करें या फिर दीप्ति शर्मा की, बहुत ज़्यादा गति नहीं दे रही हैं अपनी गेंदों को। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन का और इजाफा होता हुआ मुनीबा अली के खाते में। इस 1 रन की मदद से मुनीबा पहुंची हैं अब 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पाकिस्तान की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच गया है 58 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों सफलताएं दीप्ति शर्मा के खाते में। श्री चरनी की अगली गेंद और लीडिंग गेंद और इसके साथ ही एक और सफलता वहां पर भारत को। श्री चरनी जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई हाल फिलहाल में नजर आ रही हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है एजबेस्टन के इस खूबसूरत मैदान पर। और सायरा जबीन ने जबकि इस गेंद को खेलने की वहां पर कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया था, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगती हुई लीडिंग एज लेती हुई हवा में उछली और 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर उस गेंद को लपकने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती कप्तान हरमनप्रीत ने। तो इस तरह से पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका है। एक बार फिर से भारतीय टीम इस समय बहुत तेजी के साथ इस मुकाबले में वापसी करती हुई, हालांकि एक समय जिस तरह से उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, लेकिन 38 के कुल स्कोर पर भारत को पहली सफलता दीप्ति शर्मा ने दिलाई और अगले ही ओवर में एक और कामयाबी उन्होंने दिलाई दी थी आयशा जफर का विकेट लेकर। और मज़े की बात है गुल फिरोजा और आयशा जफर दोनों ही 12-12 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे।
5: Right, so third wicket down now. Natalia Parvez makes her way to the middle and Shri Charni producing the goods for India. Left-arm spinner, the preferred left-arm spinner, should I say. Why did I say that? We'll tell you after this ball. Around the wicket, she comes in to deliver what will be the fifth ball of the eighth over. This one, an attempted slog sweep from Natalia Parvez, which lands in the vacant region at mid-on before Kranti Gaur can run in from long on, pick the ball up and hurl it back towards the 22-yard strip. A comfortable single will be taken. So not a very convincing shot, but it allows Natalia Parvez to get off the mark. Remember, Radha Yadav is a part of the squad and she is an all-rounder. She can bat a bit too. However, Team India prefers Shri Charani over her, even though she's a bit of a liability in the field or has not really been that good in the field of late. She has also, she doesn't have that kind of batting credentials either. Yet, she brings so much with the ball in her hand that India prefer her. The next delivery, which was the final one of the 8th over, was delivered on a drivable length. Muniba Ali inside edged it onto her pads. End of the 8th, 59 for 3 are Pakistan. And they are in pursuit of 171. Still need 113 more in the remaining 72 balls. So Shri Charani and Deepti Sharma, the successful bowlers for India. Deepti Sharma will continue and she will deliver her third over. Big appeal for LBW and shakes her head. Does umpire Claire Polosak? This one was delivered from around the wicket. pretty much in line with the stumps. At least it looked so to my untrained eye. Attempted a sweep.

0: there, did the batter and did not connect. And interestingly, India have challenged the decision. They have opted for the use of DRS, and Claire Polosak makes the signal over to TV umpire.
1: तो भारत के लिए यहाँ पर एक और अवसर है. हालांकि अपील बहुत विश्वास के साथ की थी वहाँ पर दीप्ति शर्मा ने, अंपायर क्लेयर पोलोसेक ने उसे नकार जरूर दिया था, लेकिन एक लंबी मंत्रणा वहाँ पर दीप्ति शर्मा, विकेटकीपर ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत के बीच में हुई थी, और उसके बाद हरमनप्रीत ने फैसला लिया कि वो DRS के लिए जाएंगे. तो देखना ये है कि TV अंपायर का वहाँ पर क्या निर्णय आता है. निश्चित रूप से भारतीय टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं. जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दीप्ति शर्मा अपनी इस अपील पर नज़र आ रही थी, और मुनीबा अली 29 रन बनाकर खेल रही हैं, नतालिया परवेज़ 1 रन बनाकर खेल रही हैं, इस समय प्रश्न चिन्ह उन्हें लेकर के है कि नतालिया परवेज़ क्या मैदान पर रहेंगी, बल्लेबाजी को जारी रखेंगी या फिर पवेलियन की तरफ वापसी करनी होगी.
0: The thing to be seen here is whether the ball pitched in line with the stumps or not. Because remember, Deepti Sharma went around the wicket to the right-handed batter. She often gets a lot of drift. Did the ball drift enough to pitch in line with the stumps is the question. Before that, of course, TV umpire Kim Cotton will go through the procedures. First of all, she will check if there is any bat involved or not. And Ultra Edge tells us, according to the graph that is up on our monitors, it tells us that there is no bat or no glove involved. Ball tracker coming up next. Yes, it has drifted in enough to pitch in line with the stumps. However, it is spinning, or rather drifting a little bit too much, suggests ball tracker. It would have only clipped the off stump. Hence, it's two reds, pitching in line, impact in line, but wickets hitting is umpire's call. Two reds and an amber. India will keep the review. However, Natalia Parvez survives.
1: So, Natalia Parvez abhi bhi beech maidan par ek ke vyaktigat score ke saath tappa khane ke baad gend drift hokar bahar ki taraf nikal rahi thi, aur umpire's call thi wo wahan par, जिसका लाभ नतालिया को मिला था वहाँ पर. इसी बीच रनआउट की एक और अपील अगली गेंद पर आगे की तरफ निकली थी बहुत तेज़ी के साथ. दीप्ति ने वहाँ पर थ्रो किया था ऋचा घोष की तरफ और स्टंप के ऊपर से उन्होंने गिल्लियाँ बिखेर दी थी. देखना है कि क्या इस अवसर पर ये TV अंपायर का जो रिव्यू है वो भारत के पक्ष में जाता है या नहीं. लेकिन जो हमें स्क्रीन पर देखने से लग रहा है दर्पण, उससे तो ये लगता है कि बल्ला टिकाने में कामयाब हुई थी नतालिया परवेज अपनी क्रीज के अंदर. तो 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद 59 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम का स्कोर है फिलहाल एजबेस्टन पर ICC महिला T20 विश्व कप के 10वें संस्करण के इन दोनों ही टीमों के पहले मुकाबले के बीच में. नतालिया एक बार फिर से स्ट्राइक पर स्टांस लेने के साथ तैयार, और अराउंड द विकेट आते हुए दीप्ति शर्मा, और इस बार मिडल ओवर स्टंप के इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जाकर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन जुटाने में कामयाब रही नतालिया परवेज, और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर अब 63 विकेट के नुकसान पर. मुनीबा अली ने अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर. ओवर द विकेट मुनीबा के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीबा ने इस बार ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी अपनी जगह खड़े होकर बल्ले को बिल्कुल आड़ा करते हुए किसी तरीके से इस गेंद को धकेलने में कामयाबी हासिल की कवर क्षेत्र की तरफ. आसानी के साथ एक रन और जुटा लेंगे. इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 61 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है और दो सफलताएं अब तक भारत के खाते में डाल चुकी हैं अराउंड द विकेट, और इस बार इस गेंद को सेव करने के अंदाज में खेला, लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पर, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन एक रन का इजाफा और हो जाएगा इस पांचवी गेंद पर, और 62 स्कोर हुआ पाकिस्तान की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर. अंतिम गेंद का आना बाकी है. पिछली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने में मुनीबा अली और नतालिया परवेज कामयाब हुए हैं दीप्ति शर्मा के सामने. अंतिम गेंद पर मुनीबा क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगी. ओवर द विकेट मुनीबा के लिए, और फ्रंट फुट पर आकर हल्के से गेंद को पुश किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में. 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन की तमाम संभावनाएं समाप्त कर दी गई. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं. 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 62 विकेट के नुकसान पर.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.

0: कोई भुलक्कड़।
1: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
2: जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
2: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Pakistan need 109 more runs in the remaining 11 overs. Sri Charani begins a fresh over, delivers this one on a very full length. Natalia Parvez wanted to step out of her crease. However, she had to abort the plan in between because the ball landed or dipped in the block hole. She was able to squeeze it back to the bowler. Deepti Sharma, before this, delivered her third over. Now that is interesting. That is interesting. Why? We'll tell you after this ball. Sri Charani runs in to deliver the next delivery. Delivers this one outside the off stump. And excellent bit of fielding from Harmanpreet Kaur. Might have produced another wicket for India. However, we will wait. We will wait for the umpire to make a signal. And Claire Polosak looks like is not very interested. Harmanpreet Kaur is celebrating. Radha Yadav, Smriti Mandhana and Deepti Sharma have run to her, hugged her. She has started celebrating, but the umpire has not given it out. That is interesting. This one was pushed towards the extra cover region. Harmanpreet dived towards her right, picked it up and hurled a flat throw towards Richa Ghosh, who collected the ball, whipped the bails off. However, with an excellent dive, Muniba Ali had made her ground, and Claire Polosak has not even attempted to use technology. She says, I've got eagle eyes, I've seen it with my own eyes, it is not out. Excellent bit of umpiring. The replay suggests that her decision was correct. Next delivery flighted outside the off stump, chipped towards Kranti Gaur at long off, who fumbles and therefore allows two runs to the Pakistani batters. But excellent bit of umpiring that, Ashish.
5: बिल्कुल तारीफ करनी होगी वहां पर क्लियर पोलोसेक की, जिन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ वो निर्णय लिया. और टेक्नोलॉजी का भी जब हमने उपयोग देखा स्क्रीन पर होते हुए तो लगा कि वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर. इसी बीच अगली गेंद और गेंद को वहां पर खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए.
6: ये लगा आभा का चौका.
5: स्वीप करने के अंदाज में खेला था मुनीबा अली ने इस अवसर पर, और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा से होती हुई 4 रनों के लिए बाहर चली गई. श्री चरणी जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं, आंध्र प्रदेश से आती हैं और पहला अपना विश्व कप खेल रही हैं. 2025 के बाद दर्पण अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए अगर किसी गेंदबाज ने बटोरे हैं तो वो श्री चरणी हैं.
4: That is why Radha Yadav has been kept out of the side. Next delivery lofts this one over extra cover. Does Muniba Ali, the leaping fielder at the edge of the 25-yard circle, will not be able to get to it. And hence a couple of runs will be taken. That takes Pakistan's score to 71 for 3 in 9.5 overs. This one was delivered from over the wicket, outside off by Sri Charani. One ball remaining in the 10th over. And Pakistan thus far seem like they are on track, given that India was 65 for 2 at the end of their 10th over. Next delivery induces the edge, does Sri Charani, but there is no slip in place, and the run out opportunity, if at all there was any, has been squandered too, because Richa Ghosh has not been able to collect this one cleanly. It was delivered outside off on a length. Muniba Ali went for the drive, got a thickish outside edge. The ball went towards Shefali Verma, who was stationed at short third, who picked it up, hurled a flat throw towards the Indian wicketkeeper, who could not quite collect it cleanly. The single was taken. Pakistan end the 10th over with their score reading 72 for 3. Just going back on the point of Deepti Sharma, her 3 overs have been used. And Ashish, she's the designated death bowler in this Indian team. But Harmanpreet realized that the need of the hour is give her the extra over, which means there could be trouble when it comes to death.
5: जी हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद हरमनप्रीत की मंशा ये हो कि उस स्टेज तक उस मैच को जाने ही ना दिया जाए और पहले ही पाकिस्तान की पारी को समेट लिया जाए. और मुझे लगता है कि उन्होंने सही कप्तानी की है वहाँ पर, लगातार दीप्ति शर्मा को 3 ओवर करा के. श्री चरणी का ये ओवर महंगा ज़रूर साबित हुआ, 10 रन उनके इस ओवर में आए. 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, 1 सफलता उनको भी मिली है, कुल मिलाकर 14 रन उन्होंने दिए हैं. और श्री चरणी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला विश्व कप खेल रही हैं और इनसे भविष्य में भी भारत को बहुत आशाएं हैं. फिलहाल पाकिस्तान 72 तीन विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद, और 10 ओवर के बाद भारत की पारी की जो स्थिति थी वो ये कि भारत ने 65 रन बनाए थे और दो खिलाड़ी भारत के आउट हुए थे। तो 7 रन पाकिस्तान ज़्यादा बना चुका है लेकिन एक विकेट भी उसने ज़्यादा गंवाया।
4: Shreyanka Patil begins a fresh over and something interesting has happened. This was delivered from around the wicket on a length and Muniba pushed it towards the left of her. Shreyanka Patil wanted to gather the ball. However, the non-striker came in the way and Shreyanka was not able to stop the ball and hence the single was taken. Shreyanka looks at the umpire and says that this is not fair, but the umpire shakes her head. Next delivery delivered on a good length at the stumps, goes down on a knee as Natalia Parvez, and slog sweeps it towards the fielder on the leg side boundary. Jemima Rodrigues collects it and hurls a throw at the non-striker's end which Shreyanka Patil has not been able to collect cleanly, and she has copped one in the groin region and she is currently on the floor.
5: या थोड़ी बहुत पीड़ा में ज़रूर है लेकिन बहुत जल्द खेल एक बार फिर से शुरू होगा और पाकिस्तान की टीम की शुरुआत जैसा कि हमने कहा कि अच्छी ज़रूर हुई लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल के बाद भारतीय गेंदबाजों को सफलताएं मिली। दो विकेट अब तक दीप्ति शर्मा चटका चुकी हैं, एक विकेट श्री चरनी ने अपने स्पेल में हासिल अब तक किया है। श्रियंका पाटिल का ये दूसरा स्पेल है, हालांकि पहले स्पेल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी। मुनीबा अली की बात करें तो उन्होंने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, 40 रन अब तक उन्होंने बना डाले हैं 34 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 5 चौके शामिल हैं और लगभग 117 का स्ट्राइक रेट है। और बाकी के बल्लेबाज आया राम गया राम की तर्ज पर नज़र आए पाकिस्तान की टीम की जहां तक सवाल है। गुल फिरोज़ा की बात करें, आयशा जफ़र की बात करें या साइरा जबीन की बात करें, तो ये खिलाड़ी बहुत कम योगदान देकर वापस पवेलियन लौटते हुए नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ पाकिस्तान की टीम को एक बड़ी साझेदारी की दरकार है, जबकि भारत नहीं चाहेगा कि एक बड़ी साझेदारी पाकिस्तान की तरफ देखने को एडवेस्टन पर मिले।
4: Meanwhile, the team physio is out in the middle attending Shreyanka Patil. She's been given some water and some moments to breathe hard and collect her breath back. Renuka Thakur, one of the reserve players, is also out there in the middle. It is interesting that India have kept Renuka Thakur out because remember, back in 2022, when the Commonwealth Games were held at this very ground, every match was played at this very ground during that competition, Renuka Thakur was super impressive. She picked up 11 wickets in that tournament, which was the highest not just for India but in the entire tournament. Rather, they preferred Kranti Gaur and Arundhati Reddy as the seamers over Renuka Thakur. Anyhow, Shreyanka is good to go. Around the wicket, she runs in to deliver what will be the third delivery of the 11th over. Delivers this one on a good length, in line with the middle and leg pole. Muniba Ali gets a healthy stride out and then uses her wrist to deftly turn it away towards mid-wicket. Picks up a comfortable single that takes Pakistan's score to 75-3. They need 96 more in the remaining 57 balls.
5: श्रियंका पाटिल ने 14 महीनों की इंजरी के बाद वापसी की थी और WPL में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया था। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को खेल दिया लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त कर दिया। पाकिस्तान 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 75 तीन विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर इस समय प्रगति पर है। दो गेंदों का आना बाकी है। श्रियंका पाटिल एक बार फिर से और इस बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का किनारा जरूर दे बैठी लेकिन एक बाउंस के बाद वहां पर गेंद पहुंची थी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर के पास। सीधा थ्रो वहां पर स्टंप्स पर आया स्ट्राइकिंग एंड के तरफ। क्या भारत के लिए ये रनआउट के रूप में एक और सफलता आ सकती है? जैकलिन विलियम्स ने टीवी अंपायर को रेफर किया है, काफी नजदीकी मामला हो सकता है तरपर।
4: गेस हू द फील्डर इज? दीप्ति शर्मा कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर इंडिया। The replay on our monitor is up and it suggests that the batter is short. Natalia Parvez got an outside edge. She wanted the single. However, Muniba Ali denied it and hence she had to turn back and go towards safety. Looks like she hasn't been able to ground her bat. Or is it Muniba Ali who has been run out? We'll find out in just a second. However, it is Deepthi Sharma's golden arm which has produced another wicket. Beg your pardon, it is Muniba Ali who failed to make her grand.

0: round at the striker's end, and therefore another wicket produced for India. Pakistan are 75 for 4.
1: क्या सटीक निशाना था वहां पर दर्पण दीप्ति शर्मा का, और मुझे याद आता है कि किस तरह से क्रिकेट की और राह पकड़ी थी दीप्ति शर्मा ने, एक मैदान पर जबकि खेल हो रहा था, उनके भाई वहां पर खेल रहे थे और गेंद उनके पास पहुंची थी और बड़े कैजुअल अंदाज में उन्होंने गेंद को फेंका और वो सीधा जाकर स्टंप पर टकराई और वहां पर जो यूपी के चीफ सेलेक्टर थे उस समय, उन्होंने वहां से उनको अपनी छत्र छाया में ले लिया और आज भी उन्होंने वैसा ही कमोवेश कारनामा करके दिखाया है.
0: She was born with it, isn't it? She was born with it. The talent was gifted to her by Mother Nature. Anyhow, responsibility now on the shoulders of Pakistan skipper Fatima Sana, who now makes her way to the middle. Pakistan are 75 for 4 and have just lost the wicket of Muniba Ali, who has been their top scorer so far. 41 of 35 is what Muniba managed. She hit 5 boundaries in that innings of hers, and Shreyanka Patil's over has produced a wicket finally. Remember, 2 drop catches of her bowling. This doesn't go into her account, this run out, but it produces a wicket for India, and another drop catch. Looks like this was a cotton bowled opportunity which Shreyanka Patil has spilled herself on her length in line with the stumps. Fatima Sana pushed it with hard hands. The ball went uppishly back to the bowler, who failed to hold on to it in her follow through. 75 for 4.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में. आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तो पिछला ओवर भारत के लिए सफलता लेकर के आया जब दीप्ति शर्मा ने रन आउट करवा दिया था मुनीबा अली को एक बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर, और जिसकी वजह से मुनीबा अली 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस पवेलियन लौटने पर मजबूर हुई थी. इधर श्री चरनी के स्थान पर अब शफाली वर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर है, जो कि दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अक्सर भारतीय आक्रमण की शुरुआत उनके द्वारा की जाती रही, लेकिन आज उनसे आक्रमण की शुरुआत तो नहीं कराई गई, लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर शेफाली वर्मा नज़र आ रही हैं. बल्लेबाजी में मात्र 6 रन बनाए एक छक्के की मदद से. देखना यह है कि गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए क्या कुछ कर पाती हैं. अगली गेंद, और इस बार फातिमा सना ने इस गेंद को खेला लेकिन सीधा कवर क्षेत्र में, 25 गज के दायरे के अंदर. कोई रन नहीं बनेगा. पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, और तीसरी गेंद का सामना करने के लिए फातिमा एक बार फिर से तैयार. इस बार लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर. निश्चित रूप से वाइड का इशारा वहां पर अंपायर की तरफ से आएगा. इस एक अतिरिक्त रन की बदौलत 77 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 4 अतिरिक्त रन उपहार के स्वरूप अब तक पाकिस्तान की टीम को दिए जा चुके हैं भारतीय गेंदबाजों के द्वारा. शेफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को लपक लिया आसानी से जेमिमा रॉड्रिक. स्मृति थी वहां पर, दरअसल उन्होंने गेंद को लपका और इस तरह से पारी समाप्त कर दी है. वहां पर एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फातिमा सना की, खाता भी अपना नहीं खोल पाई. 0 के स्कोर पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद वापस पवेलियन लौट रही है. धीमी गति की गेंद थी और इस गेंद को उठा करके खेलना चाहती थी, लेकिन वहां पर स्मृति मंदाना ने बहुत ही अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपने पंजों पर उचकते हुए उस गेंद को, कैच को मुकम्मल किया और पारी को समाप्त कर दिया पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के लिए.
0: गेट शेफाली टू बोल अ लिटिल बिट मोर. Do you or do you not remember the World Cup final from the last year when she produced a couple of wickets? Here again she has produced the goods for India. Shefali Verma with the wicket of Fatima Sana has pushed Pakistan on the back foot. 77 for 5. Meanwhile, I need to make a correction. the last ball of the previous over. I said Shreyanka Patil dropped a catch. However,

0: the replays that appeared a little bit late on our monitor suggested that the ball had fallen just short of Shreyanka Patil, so she collected it on a half volley, or rather fumbled in the collection, but it was on a half volley. Alia Riaz, meanwhile, has now come out to the middle. She is the most experienced batter in this team. In fact, a lot of eyebrows were raised when Fatima Sana was appointed as the skipper, because Alia Riaz is far more experienced. Why was she not given the captaincy? But that is another matter. Currently, she needs to bat Pakistan out of trouble. A delivery on a full length near the off stump, which has been squeezed along the carpet towards cover. Alia Riaz faces a dot ball to begin her innings. Next delivery, again on a full length, once again gets forward as Alia Riaz, and this time knocks it towards long off. A comfortable single will be taken. That gets Alia Riaz off the mark, and Pakistan's score moves to 78 for 5 with a ball remaining in Shefali Verma's first over. Runs in the Shefali. Once again, a full-length delivery outside the off-stump. Natalia crouches and then heaves it towards deep mid-wicket, where Radha Yadav does the mop-up job. A comfortable single has been taken, but singles won't hurt India anymore because they are in ascendancy with the score reading 79 for 5 at the end of the 12th over. Pakistan need 92 more runs in just 8 overs. Safe to say that India now are in the driver's seat.
1: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. और स्मृति मांधना की भी तारीफ करनी होगी. 68 रन की बेहतरीन पारी और उसके बाद दो शानदार कैच उन्होंने जो लपके हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी वो एक प्रबल दावेदार इस मुकाबले में नजर आ रही हैं दर्पण.
0: Absolutely, catches win matches, the odds, the old saying. Shri Charni with a change of ends produces another wicket. Harmanpreet Kaur takes the catch at extra cover. Natalia Parvez has to say goodbye. India get another wicket. Pakistan are collapsing. Pakistan are crumbling. India on top. They were 75 for 3 and now they have been reduced to 79 for 6. This was a floated up delivery at the off stump on a very full length. Natalia stayed beside the line, tried to go inside out over extra cover, but could not find the desired elevation. Stretched her arms upward, did the Indian captain, and the ball stuck to the middle of her palms like a bug in a cobweb. Out for 7 of 13 balls, without scoring any boundaries, is Natalia Parvez. Pakistan down in the dumps, 79 for 6.
1: तो 26 रन बनाते बनाते पाकिस्तान ने अपने 5 विकेट गवा दिए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है इस मुकाबले में भारत के खिलाफ. और भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर से स्पिन गेंदबाजी की यदि हम तारीफ बात करें, तो दर्पण ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन. तेज़ गेंदबाजी को लेकर चिंताएं पहले भी थीं और आज भी इस मुकाबले में हमने देखा कि चाहे क्रांति गौड़ हों या फिर अरुंधति रेड्डी, उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा थी. लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया. नए ओवर की शुरुआत, बल्कि श्रीचरणी वहां पर अपने ओवर को जारी रखती हुई, पहली गेंद पर सफलता उनको मिल चुकी है. और इस समय शमीम वहां पर बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं, रमीन शमीम. देखना है कि यहां पर किस तरह से पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ा पाती हैं. पाकिस्तान की टीम इस समय खासी मुश्किलों में नज़र आ रही है. श्री चरनी की अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन एज बेस्टन पर.
0: ओवर द विकेट, डिलीवर्स दिस वन नियर द ऑफ स्टंप एंड इट वाज पुश्ड टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन फॉर अ सिंगल बाय शमीम, हु गेट्स ऑफ द मार्क. द नेक्स्ट डिलीवरी कम्स अराउंड द विकेट, डज Shri Charani, delivers this one to Alia Riaz. Once again near the off stump, Alia Riaz with a deft push towards mid-off, where the captain fumbles. Harmanpreet Kaur with a little bit of a misfield allows 2 runs, and hence Alia Riaz takes herself to 3. Pakistan 82 for 6. Next delivery of Shri Charani is over on a good length around the off stump, 78 kilometers per hour or thereabouts. Riaz has to adjust into a defensive push.
1: 44 गेंदों में 89 रनों की आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को, और चार विकेट मात्र सुरक्षित है पाकिस्तान की टीम के। अगली गेंद श्री चढ़नी की और इस बार अराउंड द विकेट आते हुए अंपायर उस स्टंप्स के बीच से निकलकर ये गेंद फ्लाइटेड थी, बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास किया, लेकिन सीधा 25 गज के दायरे के अंदर फील्डर के हाथों में गेंद पॉइंट क्षेत्र में पहुंचती हुई बिना किसी रन के। पिछली दो गेंदों पर कोई रन नहीं मिला है आलिया को, और देखना यह है कि आलिया रियाज और रमीन शमीम मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान की पारी को और कितना दूर ले जा सकती है। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच के नज़दीक पहुँचकर गेंद को ड्राइव किया, वाइड एश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है, गेंद फील्ड हो रही है, लेकिन उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने एक रन के लिए छोर बदल लिया और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के अब हो गया है पाकिस्तान का 83 छः विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: 42 गेंदों में 88 रन, पाकिस्तान को ज़रूरत है मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन शफाली वर्मा की पहली गेंद को वहां पर स्वीप करने की कोशिश कामयाबी मिली, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद और इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके एक रन के लिए आसानी के साथ छोर बदल लिया बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर पाकिस्तान की टीम का बढ़कर के अब 84 छः विकेट के नुकसान पर। शफाली वर्मा को पिछले ओवर के दौरान सफलता मिली थी, क्या इस ओवर में भी वो भारतीय टीम के खाते में एक और सफलता दे पाएंगी? ऐसा कर पाती हैं तो भारत के लिए जीत की राह और ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल मंत्रणा चलती हुई ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम के साथ शफाली वर्मा की। 13.1 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम का स्कोर 84 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। मुनीबा अली को अगर छोड़ दें दर्पण तो बाकी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए पाकिस्तान की टीम के। शफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार अराउंड द विकेट क्रीज के कोने से बाएं हाथ के बल्लेबाज रमीन शमीम के लिए, और इस बार इस गेंद को स्वीप किया है लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है वहां पर, और इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे एक रन का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के लिए। इस एक रन की मदद से 85 छः विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 13.2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंद और रनों के बीच का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में इस समय पूरी तरह से झुका हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद आलिया के लिए और आलिया ने इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया, लेकिन बहुत ताकत से लगा हुआ स्ट्रोक नहीं था, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्वतः ही जाकर के रुक गई थी। हालांकि एक दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका जरूर वहां पर दीप्ति शर्मा ने, थ्रो किया, लेकिन तब तक दो रनों का फासला तय कर चुके थे आलिया रियाज और रमीम शमीम। इन दो रनों की मदद से आलिया रियाज पहुंची 7 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर शफाली वर्मा इस बार ओवर द विकेट, और इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ना चाहती थी, ऋचा घोष के पास अवसर था, अगर सीधा थ्रो उनका स्टंप्स की तरफ लगा होता तो गेंद स्टंप्स पर लगने के साथ ही बैटर आलिया रियाज को वापस पवेलियन जाना पड़ सकता था, हालांकि रिव्यू वहां पर जरूर लिया है।
0: Two things happened there. First of all, there was an appeal for LBW because Shefali thinks that her ball spun enough to beat the inside edge of the bat and hit Alia Riaz on the pads. After hitting the pad, the ball trickled away towards the onside and Riaz wandered out of her crease in order to search for a non-existent run. Richa Ghosh ran towards her left, picked the ball up and then attempted to hit a direct hit, score a direct hit at the keeper's end, but she was not able to. So Riaz survived the run out scare. However, for the LBW appeal, which was denied by umpire Jacqueline Williams, India have posed a challenge. Harmanpreet Kaur has shown the T signal, which calls for DRS. The first replay is on our monitors and it's a complicated replay because the bat and pad are close together. There is a definite spike on the graph of ultra edge. However, the bat and pad are super duper close. So we do not know whether that spike is due to the ball hitting the bat or it is due to the bat hitting the pad. And therefore, the wisdom of umpire Aloysius Sheridan, who is in the chair of TV Empire right now, matters a lot. It

0: it is her judgment which will decide whether or not we go to the ball tracking replay. Only if she decides that the ball is hitting pad first, we will go to the ball tracking replay, and thereby the question of whether it was in line, whether it would have gone on to hit the stumps will arise. But the first question is whether it has hit the pad first or the bat first. Looks like umpire Sheridan has decided that it has hit bat first, which means India will lose a review and Alia Riaz will survive.
1: जी, काफ़ी नज़दीकी मामला था क्योंकि बैट और पैड जैसा कि दर्पण आपने बताया बिल्कुल साथ थे, और वहाँ पर टीवी अंपायर के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद कोई बहुत आसान निर्णय नहीं था, लेकिन फैसला अंततः बल्लेबाज के पक्ष में रहा और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87-6 विकेट के नुकसान पर रहा.
0: And that is why, Ashish, we need umpires. People say, do away with them, leave everything to technology. No, we need umpires. This is the reason.
1: जी हाँ, हर मशीन के पीछे एक मानव ज़रूर होता है, और यहाँ भी हमने वैसा ही देखा. फिलहाल अगली गेंद पर एक रन का इजाफा, 88-6 विकेट के नुकसान पर. लक्ष्य है पाकिस्तान की टीम के सामने 171 रनों का, यानी बची हुई 37 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता है, और ये लक्ष्य जो है निश्चित रूप से किसी भी सूरत में आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य है. और अगर यही स्थिति अगले 2-3 ओवर तक बनी रही तो मैं कहूँगा दर्पण फिर ये मैच जो है पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाएगा, और जो बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर है, बल्लेबाज हैं, उनसे ये उम्मीद की जानी कि वो यहाँ पर 36 गेंदों में 82 रन बनाएंगे शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा.
0: Absolutely, it's a mountain to climb. A single to end the 14th over, which was played down to long on by Ramin Shamim, and that calls for a drinks break. The final one of this particular match. Pakistan are 89 for 6 and need 82 more runs in the remaining 6 overs. India have plenty of flexibility going into the final 6 because of the 2 overs, 2 excellent overs delivered by Shefali Verma, who, as we have been saying, should be getting more and more opportunities to bowl as she has proven it again and again. Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Kranti Gaur, Deepti Sharma, Shri Charani and Shefali Verma, the 6 bowlers that have been used by Captain Harmanpreet Kaur. Of course, this match is being played at the Edgbaston, which is an iconic cricket ground in Birmingham in England. It hosted its first ever first class game back in 1885, first test match in 1902, and first women's test match in 1963. Of course, has hosted some iconic matches like the Commonwealth Games of 2022, the 1999 World Cup semi-final. Remember Lance Klusener, Alan Donald, that run out? That match happened here. Brian Lara, who scored 501 not out during a first class game, that happened here. So it's been an iconic ground, and looks like one more chapter will be added today when India beat Pakistan. Are we jumping the gun? No, we aren't, because this looks like an improbable climb, doesn't it, Ashish?
1: Yeah, और इतिहास भी अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि शायद इतिहास अपने आप की पुनरावृत्ति इस संस्करण में भी करे. T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंचा है T20 विश्व कप के मुकाबलों में, और 2024 में भी उन्होंने जो 4 मैच खेले अपने ग्रुप में उसमें सिर्फ 1 जीता था. और उधर आप भारत की यदि बात करें तो भारत 4 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. 2020 में भारत रनर्स अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने उसे पराजित किया था, और रैंकिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो भारत मीलों दूर है, मीलों आगे है पाकिस्तान से. 3 नंबर की पोजीशन पर भारत है T20 रैंकिंग में, जबकि 8वें स्थान पर पाकिस्तान है. तो कागज़ों पर कोई मेल नहीं है, लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि खेल के मैदान पर जो प्रदर्शन होता है नतीजे उसके हिसाब से आते हैं, लेकिन आज खेल के मैदान पर भी भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर अब तक नज़र आया है.
0: However, there is something to play. There is something to play for, and that is net run rate. Remember, this group that India is in is called the group of death. India, Australia, South Africa, 3 contenders for the cup. Only 2 will make it to the semi-final, and therefore it could come down to net run rate at the business end, and therefore India would want to win by a big margin. Shri Charani will begin bowling. What is the 15th over of the innings? Delivers a tossed up ball which Shamim gets a long stride forward too. She takes it on the full in front of the off stump and then bunts it towards the square leg region. That will allow for

0: for a comfortable single, which takes Pakistan's score to 90 for 6 after 14.5. Shree Charani switches her angle, goes around the wicket for the right-handed Alia Riaz, and Alia Riaz steps out to this good length ball and chips it towards the right of Shree Charani. Shree Charani wanted to run towards her right and attempt a catch, however the non-striker was in the way.
1: जी हाँ, नॉन स्ट्राइकर की वजह से श्री चरनी उस कैच को लेने की कोशिश भी नहीं कर पाई। पाकिस्तान फिलहाल 91 छः विकेट के नुकसान पर। इस बार ये गेंद ओवर द विकेट बाएं हाथ के बैटर को, और उस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं और इस बार रन लेने का कोई अवसर भी नहीं बन पाया। पहली दो गेंदों पर दो सिंगल्स, तीसरी गेंद डॉट बॉल, 33 रनों में 80 रनों की आवश्यकता। समीकरण लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई और वहाँ पर आसानी से कवर क्षेत्र में लपक ली गई, और एक बार फिर से पाकिस्तान मुश्किलों में पड़ता हुआ। 7वें विकेट का पतन हो चुका है रमीन शमीम के रूप में। 4 रन उन्होंने बनाए 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और श्री चरनी को एक और सफलता यहां पर मिलती हुई। तो भारत अब काफ़ी मजबूत स्थिति में आ चुका है। ये गेंद हवा में टप्पा खाने के बाद जैसे ही थोड़ी सी टर्न हुई अंदर की तरफ, उसको खेलने का प्रयास किया था ऑफ साइड में, कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, आगे की तरफ गेंद को डाइव करते हुए लपकने में कामयाबी हासिल की क्षेत्र रक्षक ने, और इस तरह से पारी का अंत कर दिया रमीन शमीम का। तो 7 विकेट का नुकसान। श्रियंका पाटिल वहाँ पर क्षेत्र रक्षक थी, उन्होंने ये शानदार कैच लपका और 91 रनों पर पाकिस्तान की टीम अब 7 अपने बल्लेबाज गवा चुकी है। मात्र 3 विकेटों की और आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूं दर्पण कि यहां से अब जीत की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
0: Absolutely, they call it the game of glorious uncertainties. But Pakistan need more than a miracle if they are to win this. Nashra Sandhu is the new batter in. She's not in the side for her batting credentials. Shree Charani goes around the wicket for the right-handed batter, delivers this one on a drivable length on the stumps, and the batter will be able to work it towards mid-wicket and pick up a comfortable single that takes Pakistan's score to 92 for 7 with one ball remaining in the 15th over. Tried to step out and whack it, did Rameen Shamim on that occasion, ended up slicing it, and an excellent diving catch from Shreyanka Patil at backward point. Next delivery of the over, which is the final one of the 15th over, induces an outside edge and the ball goes trickling away to Deepti Sharma at backward point. And because it is Deepti, Alia Riaz doesn't even think of a single. They know what Deepti can do. They know what she did earlier. End of the 15th, 92 for 7.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: श्री चरनी के 4 ओवर का कोटा समाप्त हो चुका है, और 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 21 रन दिए, 3 सफलताएं हासिल की और इकोनॉमी उनकी 5.25 रन की। शानदार प्रदर्शन श्री चरनी के द्वारा एक बार फिर से। काफ़ी युवा गेंदबाज हैं और काफ़ी प्रभावित किया है 2025 के बाद से अपनी गेंदबाजी से। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है शफाली वर्मा के द्वारा, और शफाली वर्मा की पहली गेंद पर 1 रन, और दूसरी गेंद को खेल दिया था वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन इससे पहले की गेंद फील्ड होकर पहुँचे विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए वहाँ पर। एक अच्छा प्रयास वहाँ पर क्षेत्र रक्षण का गेंद को रोकने के प्रयास में राधा के द्वारा, और वहाँ पर रिले थ्रो के द्वारा गेंद अंततः पहुँची थी विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में, लेकिन तब तक दौड़कर 3 रन बना लिए थे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। आलिया इन 3 रनों के साथ 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और अब नाशरा संधू तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। शफाली वर्मा की ये गेंद ओवर द विकेट, और इस बार इस गेंद को स्लॉग सिफ्ट करने के अंदाज में खेला। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, गेंद वहां पर फील्ड कर ली जाएगी, लेकिन एक रन का इजाफा इसी बीच जरूर हो जाएगा पाकिस्तान के योग में। नाशरा संधू इस एक रन की मदद से 3 पर और आलिया रियाज अब तैयार हैं वहां पर 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार अक्रॉस

0: ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं अपने 91वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इस समय अंपायरिंग कर रही हैं।
1: शेफाली वर्मा आस्क ऋचा घोष, आवाज आई क्या? Richa Ghosh shaked her head. Then why were you appealing? Anyhow, next delivery outside the off stump, lofted over backward point, and the ball goes skipping away to the fence. 100 up for Pakistan with this boundary. ये लगा
0: आभा का चौका. अंतिम गेंद का आना बाकी है. 10 अतिरिक्त रन हैं इन 102 रनों में. गेंद शफाली वर्मा की बैकफुट पे जाकर कट किया, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, लेकिन गेंद को वहां पर रोक लिया जाएगा क्रांति गोड के द्वारा. गेंद को फील्ड किया ऋचा घोष की तरफ थ्रो, लेकिन तब तक आसानी के साथ दो रनों के लिए छोर बदला बल्लेबाजों ने, और इन दो रनों के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 104 7 विकेट के नुकसान पर. आलिया रियाज 18 रन बनाकर खेल रही हैं और नाशरा संधु ने अब तक 3 रन अपने बल्ले से योगदान के रूप में पाकिस्तान को दिए हैं.
1: Right, 4 overs remaining, and as we said, India will want to restrict Pakistan to as low a total as possible, because remember, net run rate could come into equation because Australia and South Africa are both the part of the same group. Yes, Pakistan not considered one of the contenders in women's cricket. They have shown a lot of improvement, but they are still far from being amongst the contenders. Netherlands and Bangladesh are also a part of this group, but those two teams are also lower ranked sides. So many believe that it is going to be between India, Australia and South Africa. Only two teams can progress. Anyhow, Deepti Sharma has now been given the ball in hand. She will be delivering what is her final over around the wicket to the right-handed Nashra Sandhu. She delivers this one down the leg side on the fuller side of good length, and Nashra Sandhu's deft sweep has been cut off by Kranti Gaur, who runs to her right from short fine leg and makes a tumbling stop. Interestingly, Kranti Gaur has bowled only one over so far, and I would like Harmanpreet Kaur to give the youngster a couple of overs in the remaining three. Anyhow, a single was taken off the first ball, and now Deepti Sharma halts in her delivery stride, looks at the non-striker and almost signals, mind you, do not leave the crease early because I won't spare you the next time. Deepti's done it before and she won't shy from doing it. Next delivery, tossed up delivery, and it has been lofted towards mid-wicket, where Jemima Rodrigues will make no mistake. She runs in from the boundary, settles underneath it, grabs it in her safe palms, and then gives the ball a little kiss before dropping it on the ground and running in celebration to celebrate the downfall of Alia Riaz. It was tossed up, was in the slot at the stumps. However, the mid-wicket boundary was too far for Alia Riaz to clear. She ends up finding Rodrigues, who makes no mistake in pouching it. And with that, Riaz has been dismissed for 18 of 17 balls. Pakistan 105 for 8. Safe to say, India are now on the doorstep of victory.
0: भारत निश्चित रूप से जीत के द्वार तक पहुंच चुका है, और अब मात्र औपचारिकताएं बची हैं. अगर ऐसा मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा. 22 गेंदों में 66 रन पाकिस्तान बना पाए, ऐसा सोचना शायद एक सपने के बराबर है इन परिस्थितियों में. और ये देखते हुए कि अब उसके सिर्फ दो ही विकेट बाकी हैं, भारत को दो विकेटों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए. नए ओवर की शुरुआत, बल्कि दीप्ति शर्मा अपने ओवर को जारी रखे हुए हैं, और वहाँ पर तस्मिया इस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी हैं. पहली गेंद को बैक टू द बॉलर खेला दीप्ति शर्मा ने. अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 3 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं अराउंड द विकेट आते हुए. और निश्चित रूप से कहना होगा कि यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने आज जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है. इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया एक बार फिर से हवा में मिड विकेट क्षेत्र की तरफ तस्मिया ने, और जेमिमा रॉड्रिक्स वहां पर मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने लपका, और ऐसा लगा दर्पण एक क्षण के लिए कि मानो रिप्ले हो पिछले वाले विकेट का.
1: यस, absolutely the same thing happening again. Rodrigues taking the catch, and Deepti

0: fourth wicket of the day. And with that, she has drawn level with Tipacha Puttawong of Thailand, which means Deepti Sharma now has 165 wickets to her name, which is the joint most in women's T20 internationals. She's one wicket away from becoming the sole leading wicket taker, and she still has two deliveries remaining. This over reads one wicket dot wicket, which means the last three deliveries read WOW. Wow, Deepti. Sadia Iqbal is the new batter in. 16.4 overs done. 105 for 9 Pakistan. Deepti Sharma around the wicket. No, beg your pardon. Over the wicket to the left-handed Sadia Iqbal, who's definitely not in the side for her batting credentials. Delivers this one on a full length at the off stump. 71.6 kilometers are the speed of that delivery. And that allowed Sadia Iqbal to get onto the front foot, dink it towards the cover region and pick up a comfortable single. With this single, Sadia gets off the mark. Pakistan move to 106. One wicket left, one ball remaining for Deepti. Can she pick up a fifer? Here she runs in. Slog sweep straight to Harmanpreet Kaur, who holds on to the catch. Deepti has a fifer. She is the leading wicket taker in women's T20 internationals. With this breakthrough, her 166th in T20 internationals, alone at the top of the mountain. The player of the tournament from the 2025 ODI World Cup has begun the T20 World Cup campaign in style. India win by 64 runs.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
5: तो भारत की शानदार सफलता इस T20 विश्व कप के 10वें संस्करण के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से पराजित करने में कामयाब रही भारतीय टीम. और T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये नवा मुकाबला था, और इन 9 मुकाबलों में अब तक 7 भारत के पक्ष में रहे और 2 पाकिस्तान के पक्ष में. भारत की शुरुआत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भले ही अच्छी ना हुई हो, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से स्मृति मांधना ने, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. 68 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली. इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और ऋचा घोष ने अंतिम ओवर में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी. 34 रनों की एक बेहतरीन पारी की वजह से भारत 20 निर्धारित ओवर में 170 रन बनाने में कामयाब रहा. 6 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान को 171 रनों की दरकार थी मुकाबले को जीतने के लिए. शुरुआत उनकी अच्छी हुई. मुनीबा अली ने अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से, लेकिन खासतौर से मध्य क्रम में उनके विकेट एक के बाद एक बहुत तेज़ी के साथ गिरते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई. और भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने आज 5 विकेट हासिल किए. अब वो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं. एक शानदार सफलता. और श्री चरनी ने भी आज भरपूर योगदान दिया. शफाली वर्मा का भी प्रदर्शन गेंदबाजी से बहुत अच्छा रहा. तो कुल मिलाकर जो स्पिन गेंदबाजी रही भारत की वो काफ़ी अच्छी रही, जिसकी बदौलत भारत ने 17 ओवर में ही पारी को समेट दिया पाकिस्तान की 106 रनों पर, और इस मुकाबले को 64 रनों से जीत लिया. तो मैं आशीष चंदगु, अपने साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ. अब से थोड़ी ही देर में हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली. जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.

0: Player of the Match.
1: जब इरादे चैंपियन जैसे हों तो शुरुआत भी चैंपियंस वाली ही होती है। बर्मिंघम के मैदान पर आज टीम इंडिया ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की बल्कि पूरे विश्व कप को एक संदेश दिया है, भारत यहां हिस्सा लेने नहीं इतिहास रचने आया है। बल्ले से दम, गेंद से धार और मैदान पर शानदार जज्बा, भारतीय खिलाड़ियों ने खेल के हर विभाग में पाकिस्तान को 64 रन से पीछे छोड़ते हुए विश्व कप अभियान का आगाज यादगार बना दिया है। लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे होता है एक ऐसा सितारा जिसने दबाव के क्षणों में टीम का रास्ता रोशन किया, जिसने अपने प्रदर्शन से मुकाबले की दिशा बदल दी। और इस कार्यक्रम यानी पोस्ट मैच शो का नाम ही है प्लेयर ऑफ द मैच। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरी को होस्ट साक्षी मांडवाल। साक्षी, स्वागत आपका।
2: Thank you so much, Anand. And indeed, what a start for India in the ongoing ICC Women's T20 World Cup to have just defeated Pakistan in a very convincing manner by 64 runs. And what a feat over there for Deepthi Sharma today. A 5-wicket haul, thereby also becoming the only bowler in the women's history of T20 cricket to have achieved, or should I say, taste that sweet victory of getting the most number of wickets. More to talk on this, I'm joined over here by Vaishali. Along with her, we have with us, of course, Colonel Bhupraj and Mona ji. Good evening, everybody.
3: Good evening.
4: Hi, good evening.
2: Now, quickly to start with you, Colonel Bhupraj, I'll come to you. A very good start for the Indian women in the T20 World Cup this season.
4: Oh yes, it was a great match. There were some jitters, you know, in the first 6 overs. But thereafter, the way our spinners bowled, slightly slow in the air, with that loop, and deceived the Pakistani batsmen. It was a great display of spin bowling by Deepthi Sharma and Shri Charni.
1: जी बिल्कुल, 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट और T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। श्री चरणी ने 3 विकेट लिए, शेफाली वर्मा के नाम 1 विकेट। चर्चा थी मोना की पिच पर थोड़ा सा टर्न देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और विश्व कप के पहले मैच में बहुत कॉन्फिडेंस देखा हरमनप्रीत कौर को।
5: बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखा, और टॉस के समय हमने जैसे देखा था जब हरमनप्रीत ने बल्लेबाजी का चयन किया था तो यही उनका आकलन था कि शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अच्छी है पिच और बाद में स्पिनर का इसमें रोल होगा, और बिल्कुल सटीक आकलन था क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से, हम पहले भी बात करते हैं, श्री चरणी ने जिस तरह गेंदबाजी की और दीप्ति शर्मा क्या कमाल की प्लेयर है। ऐसे लग रहा है कि जो वनडे वर्ल्ड कप फाइनल जहां छोड़ा था वहीं से इन्होंने T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच पकड़ लिया है, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि उसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दूसरे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में थी वो पहले ही मैच से जबरदस्त फॉर्म में है, और पाकिस्तान के लिए यहाँ बहुत निराशा हाथ लगी हुई।
1: चलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा की तरफ जहाँ से बात हो रही है।
6: I'm very grateful and I like this kind of wickets, and I think it's all credit goes to the team I'm grateful that Hanumanji is great and I like ICC tournaments, I think, because from there I finished, from there I started, so I like it, yeah.
7: What was the key to bowling on this surface today?
6: I think because it's turning, so I vary my pace in every ball and every over, that helped me a lot, yeah.
7: Slow or quick? As we look at your wickets here, you slowed it up quite nicely, especially to the left-handers.
6: Yeah, because it's turning, so I just have believed that I have to bowl a little bit slower in the air and just believing in myself and bowling in the right areas. That's what I was doing, yeah.
7: How important is your experience in England? I know you've played international cricket, but you've played a lot of 100 cricket here as well. You know these grounds well.
6: Yeah, it's an amazing crowd here and a lot of people are coming and supporting Indian team today, and that's what we want in every game, that's keep coming and keep supporting. And especially I wanted to mention about Smriti and Haridi's partnership. From there, we threw the momentum.
7: You went through that difficult phase. It's well documented. You went a few games without wickets. Are you a worrier, a fretter, or do you just know class is permanent?
6: Actually, I was not worried about when I didn't get wickets, but I always believe in myself that whenever the right time will come, I'll step up for the team, and that's how I play and bowl. Yeah.
7: Well, you definitely stepped up today. That was a magnificent performance. Well done, Deepti.
6: Thank you so much.
1: प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा कि यहां बड़ी तादाद में दर्शक आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि किसी भी T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा दर्शक आज के मैच में आए थे। जो आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है वो 18,814 दर्शकों का आ रहा है। इससे पहले यह कीर्तिमान 6 अक्टूबर 2024 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में ही बना था, जहां 15,935 दर्शक थे। दीप्ति के प्रदर्शन पर हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आंकड़े बताते हैं कर्नल की किस तरीके से महिला क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ी और टीम इंडिया का रुतबा कैसे बढ़ रहा है।
4: हाँ जी, ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया प्लेयर्स में, एंड वो आज दिखाई पड़ रहा है। एक टाइम पे तो लग रहा था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो अपने जज्बा है अपने प्लेयर्स का जीतने का, वो दिखाई पड़ा, एंड दैट टर्न द मैच इन अ फेवर।
2: Right, and also to tell our listeners today, this is actually the fourth biggest defeat for Pakistan in women's T20 World Cups. Earlier, it was, again, the topmost is 114 versus England in Cape Town 2023, then 94 versus Australia in 2014, 68 versus England in Chennai, versus England in Chennai in 2016, and 64 that was today against India in Birmingham. Vaishali, aapke paas aati hoon. Jab koi bhi desh एक सीज़न की शुरुआत करता है या टूर्नामेंट की शुरुआत करता है और इतनी बड़ी तादाद से, कह लीजिए इतनी बुरी तरह हारता है, तो मेंटली एंड मॉरली ये कितना डिप्लीटिंग हो सकता है उस देश के लिए टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करते वक्त। मैं बात कर रही हूँ अब यहाँ पर पाकिस्तान की खास तौर से।
0: पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन जिस तरह से वो हार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे आफ्टर 10 ओवर के बाद, लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के कैप्टन पे बहुत, एक लीडर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे हम देखें हमारी हरमनप्रीत कौर है, वो एक बेहतरीन लीडर हैं, उनको ये पता है कि किस बॉलर को किस वे में और कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे ही फातिमा की अगर बात करूँ तो वो उतना कॉन्फिडेंट थी, बट जैसे उनकी विकेट गई एंड द वे सी रिएक्टेड, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम बैकफॉल पर भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम थोड़ा सा उनका मोरल डाउन जरूर हुआ है, क्योंकि एक ये फाइनल मैच की तरह खेला जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके लिए ये मैच जीतना भी, और जो वो उस वहाँ उस जगह तक नहीं पहुँच पाए हैं, बट सेकंड मैच उनके पास होपफुली है, और वो वहाँ पे अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पे वो अपनी जीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मोरल डाउन हुआ नहीं है, बट हो सकता है और आगे सेकेंड मैच को देखते हुए।
1: जी हाँ, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच में हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी रेड्डी साहब, बताएं क्या बताना चाहते हैं आप। जी

0: जी हाँ, एक बढ़िया पॉइंट उठा रहे हैं कर्नल। अगर आपसे बात करें तो पहले भी चर्चा हो रही थी कि यष्टिका खेलेंगी, भारती खेलेंगी, भारती को स्टार्ट मिला। अब ये हरमन और अमोल मजूमदार को तय करना है कि भारती को एक और मैच देंगे या यष्टिका भाटिया को लेकर आएंगे नेक्स्ट मैच में।
1: मेरा ख्याल से यष्टिका भाटिया को चांस मिलना चाहिए, एंड उसने भी ये जो प्रैक्टिस मैच हुए हैं इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उम्मीद करते हैं कि उसको चांस मिलेगा।
2: Right, and a good news for all our listeners over here that this is indeed the biggest win by India in the T20 World Cup ever. This margin of victory that we have achieved today is the third biggest win that India has achieved. Prior to this, it was 82 against Sri Lanka and 72 versus Bangladesh, and today we have gone on to make that record. Now, coming to specifically, Mona, I'll come to you. आपके पास कि दीप्ति शर्मा की थोड़ी और आज बात करना बनता है। 166 is the number of wickets. I remember जब शो की शुरुआत हुई थी हमने तब ये बात करी थी कि आज अगर वो 5 विकेट्स ले लेती हैं तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट अगर हम बात करते हैं तो T20 के अंदर तो बन जाएंगी। 166 पे पीछे थाईलैंड की थिपाचा पुत्तावोंग है और उनको भी आज वो आगे पीछे छोड़ के चली गई है, निकल गई है। क्या आपको लगता है ये सीज़न उनका बेस्ट सीज़न जाने वाला है दीप्ति शर्मा का?
3: देखिए, अभी तो ये पहला मैच इस टूर्नामेंट का उन्होंने खेला है और इससे पीछे लगातार हम बात कर रहे थे, खबरें भी आ रही थी कि वो उस लय में दिख नहीं रही हैं जिसके लिए उनको जाना जाता है या जो वर्ल्ड कप में थी। लेकिन मैच के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे विकेट आ रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि जब टीम को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगी। और कुछ खिलाड़ी जो इस टीम में हैं, जो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, जैसे आप स्मृति मांधना की बात कर लीजिए, दीप्ति शर्मा की बात कर लीजिए, जब ज़रूरत होती है उस समय वो परफॉर्म करते हैं और यही एक चैम्पियन खिलाड़ी लक्षण है। तो जिस तरह से आगाज हुआ है उनका, लगता है कि ये सीजन जो कॉन्फिडेंस है उनकी, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बात कर रही हैं, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रही थी, तो लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट उनका जाने वाला है और ये भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक अच्छा संकेत है।
0: जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया स्टार्ट मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच के कार्यक्रम में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, अपना परिचय दीजिए और क्या जानना चाहते हैं आप? चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन के पास।
4: Last 15 hours and after that we gave in some extra runs and we one fielder is coming inside is also cost us at that time but we will try to improve in the next matches.
5: Yeah, why were you so slow? Was it the left hand right hand combination? I was watching from above in those first few overs, you were waving your arms around quite a bit in this big crowd. Were players noticing you? You seemed very slow to get round.
4: Yeah, I think it might be because of the lefty righty, but still the whole team is young, so they are coming in that situation, so they will know the exact situation in the next matches.
5: And fielding, Smriti Mandana is an excellent player. If you give her one chance, that's too many. You gave her a couple. What about catching? How have you been generally, and what did you think of the fielding today?
4: Yeah, obviously catches win, the matches win, but unfortunately who dropped the catches is still a senior players, and I think we need to be improve in the bowling and the fielding as well in the next matches, because if we collapse in the fielding side, so I think it cost the whole match.
5: Could you have done anything different for Risha Ghose? Because I know you had that extra fielder up. When you look at your death bowling, could you have done anything different?
4: Yeah, obviously, we will try to execute plans and we will try to as quick as possible.
5: On a positive, that was your best World Cup score in the power play, 52-1. I know you want that intent against the new ball. That top three played really nicely.
4: Yeah, definitely. When you saw the power play in the bowling and the batting, we won that power play. But after that, we collapsed in the batting side. So I think we need to improve in the batting as well. So we will get the different results.
5: Well, bad luck today. Good luck the rest of the tournament, Fatima.
4: Thank you. Thank you.
5: If I could just have a word with the Indian captain now, Harmanpreet Kaur. Harmanpreet, well done. Big game, big crowd against Pakistan. That was a convincing win in the end. You must be thrilled.
6: Yeah, definitely. Very happy. And firstly, really want to thank all Indian fans. They've been amazing. They've been, you know, there for us. So, yeah, really, really want to thank them.
7: two senior players who at times recently have been a bit short of runs and wickets, Smriti Mandana and Deepti Sharma. You can't keep class down for long. You must be thrilled with them as well.
6: Yeah, definitely. Whenever we need, they're always there to, you know, push the team. So really happy the way they both played today.
7: What did you make of the pitching conditions here?
6: Well, I think it was a decent pitch, but I think initially we unnecessarily put pressure on us. But after that, when Smriti and I was batting, we tried to control the game, and then we got what we wanted.
7: And Richa Ghosh, she is a class hitter of a ball. She was superb again today. Ideally, when do you want her to arrive at the crease?
6: if it in my hand, I would love to send her on the first ball. But I think she has some role to play, and she's doing really well, and really happy the way she played today.
7: Just in the field there, it started a bit wobbly, but you must be thrilled at the end there. You were catching everything, especially yourself. The ball was following you and Smriti around.
6: Yeah, definitely. Cricket is a game of, you know, if you catch every ball, if you take all the catches, you always win matches. And I think that's what happened while fielding. We wanted to, you know, give ourselves to every ball, and really happy the way we fielded and overall game.
7: And how aware are you when you are winning games of net run rate? Because you are in a group with South Africa and Australia. It could come down to that. So a win and a convincing win is important.
6: Yes, definitely. Every league game is important, and really happy, you know, how we win today, because that is something, you know, which is going to help us end of the league games.
7: Final question. Are you okay? I saw you hobbling around at the end.
6: Yeah, I'm fine. Thank you very much.
7: Well, well played. Great performance. Nice short answer there at the end. Harmanpreet Kaur, the winning captain.
0: जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी हरमनप्रीत कौर की बातचीत में, और उन्होंने साफ कहा कि ये एक टीम परफॉर्मेंस है। मुना, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जीत के बाद कई सारी कमियां थोड़ी छुप सी जाती हैं। अरुंधति रेड्डी 2 ओवर में 21 रन, क्रांति गौड़ 1 ओवर में 14 रन। क्या रेणुका सिंह ठाकुर को बाहर रखना का जो फैसला था उस पर विचार करेगी?
3: बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरुंधति रेड्डी का सिर्फ गेंदबाजी नहीं, फील्ड में भी जो उनका प्रदर्शन था आज, बिल्कुल अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर पाई। और रेणुका स्कोर टीम का हिस्सा है, जो हम बात कर रहे थे कि जो वर्ल्ड कप की टीम है, और काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। तो मुझे लगता है खासतौर पे जबकि अमनजोत नहीं है, काश्री नहीं है, तो एक रेणुका का होना टीम में ज़रूरी। मुझे लगता है अगले मैच में शायद हमें ये बदलाव देखने को मिलेगा।
2: जी, और इस वक्त हमारे साथ एक श्रोता भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो, नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी जरूर। जी शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए और भारतीय टीम को अपनी दुआएं देने के लिए शुक्रिया। नाउ वैशाली, मैं आपके पास आती हूँ क्विकली। हमने देखा एक तरफ भारतीय कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, जो बहुत खुश नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी कप्तान की भी यहाँ पर बात करते थोड़ी सी, तो जो उन्होंने बातें रखी फातिमा सना ने, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनका पावर प्ले किया था चेस के समय, 6 ओवर के अंदर 52 for the loss of 1 wicket, जो आज तक का पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम का T20 इंटरनेशनल्स के अंदर सबसे अच्छा या उमदा पावर प्ले रहा है, उसके बाद भी वो कैपिटलाइज करके कन्वर्ट नहीं कर पाए कि चेज में हो सकते। आपको कहाँ लगता है ये पाकिस्तानी महिला टीम पंबल करती है चेज के अंदर या टारगेट्स को ऑन बोर्ड बनाने में भी?
8: देखिए, जब हम बैटिंग करते हैं तो हमें मेनली ये देखना होता है कि आप किस फील्डर के पास कैच दे रहे हैं। फिर आपको देखना होता है कि आप अगर लॉफ्टी शॉट खेल रहे हैं तो कैसे आप खेल रहे हैं, कितना बाहर निकल के खेल रहे हैं। और आज पाकिस्तान की टीम ने जितने भी कैचेस दिए हैं वो इंडियन टीम ने ग्रैब किए हैं। सिर्फ एक अरुंधति रेड्डी के अलावा किसी और हमारे किसी भी इंडियन प्लेयर ने वो कैच ड्रॉप नहीं किए हैं। अभी उन्होंने बोला कैचेस विन मैचेस, सो हमारी टीम ने कैचेस किए और पाकिस्तान की टीम ने वो कैचेस ड्रॉप करे। जो हमारे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदना दोनों के कैचेस ड्रॉप हुए थे, वहाँ पे गेम चेंज हो गया। एंड वैसे ही यहाँ अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग के बारे में बात करें, तो जब उनकी बैटर बैटिंग कर रहे थे तो जो वो कैच उनके उठे हैं वो हमने ग्रैब करे हैं। तो यही एक डिफरेंस मेन होता है, क्योंकि दोनों साइड से बॉलर अपना काम करते हैं, बैटर अपना काम करते हैं, लेकिन एक फील्डिंग ऐसी चीज़ है जहाँ से आप इन और आउट कर सकते हैं गेम को.
2: जी, आई वुड वॉन्ट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड टू कर्नल भूपराज. डू यू थिंक दैट समवेयर द पाकिस्तानी वुमेन्स टीम्स अप्रोच ऑफ गोइंग इन टू द चेज हैड फॉल्स और हैड सर्टन cons in their approach, because we also saw them making very lopsided shots or going for impulsive shots at times. Do you think that was required, that aggressive intent without reading the room or the situation too well?
1: Actually, you know, they went for those big shots, and every player who was coming in tried to score big shots. It shows lack of experience on part of some of the players. I think half the team is new, and they learn from experience. This is a good learning experience for them.
0: वैशाली बात कर रही थी कैचेस की. पांच जितने भी मैचेस अब तक इस विश्व कप में हुए, 36 कैचेस छूट चुके हैं, जो ये दिखाता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैचेस छूट रहे हैं. मोना, आपसे एक सवाल ज़रूर जानना चाहेंगे. विश्व कप में अब तक जितने मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड ने 200 से ज़्यादा टोटल बनाया, श्रीलंका की टीम स्ट्रगल करती नजर आई, कल एक तरफा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच. दक्षिण अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की कंटेंडर्स में से एक है, लेकिन वन साइडेड लॉस. इस विश्व कप के पिचेस पर बात करें, ओवरऑल क्या नजर आ रहा है अब तक?
3: देखिए, अभी तक जो मुझे लगता है कि शुरुआत में जितने भी आपने बड़े स्कोर बनाए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, तो शुरुआत में जो टीम जो बैटर्स के लिए अच्छी पिच देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे उस पर वियर एंड टीयर आ रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जो स्लो आर्म बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. और जैसे हमने देखा पिछले कुछ सालों से कि स्पिनर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिल रहा है हर टीम के साथ, तो मुझे भी लगता है कि अभी तक के मैचेस को देखकर यही लगता है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाना पसंद कर रही है, और उसके बाद जब गेंदबाजों की भूमिका आती है तो रिलायंस जो है वो पेस बॉलर्स की बजाय स्पिनर्स पे ज़्यादा है, जबकि ये इंग्लैंड में हो रहा है टूर्नामेंट और अभी सारा कुछ वहाँ बदला बदला सा नज़र आ रहा है.
2: जी वैशाली
0: जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं करना?
1: हाँ, एक्चुअली ये जो विकेट है इसके ऊपर आज ये तीसरा मैच हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा विकेट जो है स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, तो अब जब अगले ग्राउंड पे मैच होगा तो इतना स्पिन को हेल्प नहीं करेंगी विकेट्स.
2: या बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर एंड ऑफकोर्स द यूज्ड पिच कमिंग इन टू प्ले अगेन. वैशाली, आपके पास आती हो क्विकली, आपसे पूछूंगी कि आज जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी करी है, उसमें दो नाम तो हमें पता है, स्मृति मानधना, और दूसरा हम बात करेंगे ऋचा घोष की, बट उसके अलावा किसी भी और भारतीय बल्लेबाज ने कोई बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है. हम कह सकते हैं कि हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक साझेदारी निभाई सामने से स्मृति मानधना के साथ, लेकिन फिर भी उनका भी रन अ बॉल ही स्ट्राइक रेट रहा. आज तो ये पाकिस्तान है, आगे हमारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े देश आ रहे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है हमारे ग्रुप के अंदर. क्या बैटिंग के नज़रिए से आपको कोई कंसर्न लग रहा है महिला भारतीय महिला भारतीय क्रिकेट टीम में?
8: T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी इंडिया टीम खेल के आई है, एंड वहाँ पे उनका जो बैटिंग लाइनअप था वो थोड़ा सा अभी जो आज खेला उससे काफ़ी ही पुअर था, एंड आज बैटिंग काफ़ी बेटर हुई है, बट हर दिन एक जैसा नहीं होता. सो हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में नीदरलैंड के अगेंस्ट शिफाली वर्मा बेटर स्कोर करें, एंड जेनिमा रोजर्स जो हमेशा करती हुई आती हैं बट उनका आज दिन नहीं था, लेकिन स्मृति मंदना की जो पार्टनरशिप हरमनप्रीत कौर के साथ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर वो नहीं होती तो 91 रन्स की जो पार्टनरशिप है वो नहीं बनती, और वो उस टाइम पे उन दोनों का होना बहुत ज़रूरी था. इससे और मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर अगर जितनी भी उन्होंने पिच पे खड़े होकर टाइम दिया है वो उस टाइम पे उस ज़रूरी था, क्योंकि इतना स्कोर करना इम्पॉसिबल था उनके बिना सपोर्ट के. उसके बाद ऋचा घोष की अगर मैं बात करूं तो ऋचा घोष अगर 10 ओवर से पहले आती तो वो शायद उतना बेटर अच्छी बैटिंग नहीं कर पाती जो हमने अभी देखी, एंड लास्ट 2 ओवर्स में उन्होंने जिस तरह से चौके एंड छक्के लगाए हैं वो भी देखने को नहीं मिल पाते.
0: कर्नल, अगर ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सोफी मोनिल्यू आती हैं जो 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करती है, काफ़ी डेप्थ है बल्लेबाजी में. इंग्लैंड के लिए देखें तो सोफी एकल्स्टन तक वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन भारत की टेल थोड़ी लंबी नज़र आती है, चूँकि श्रीचरणी है वहाँ पर और भी जो तेज़ गेंदबाज हैं. आज के मैच में रेणुका नहीं खेली, लेकिन अगर हम बात करें क्रांति गौड़ की, तो एक तीन चार बैट्समैन लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं जिनसे आप बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते। टी ट्वेंटी आजकल हाई डिमांड है, टेलेंडर्स से भी आप बड़े शॉट्स की उम्मीद करते हैं। क्या जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा भारत के लिए ये मुश्किल का सबब हो सकता है?
1: देखिए, ये प्रॉब्लम तो आ सकती है। हमारी टीम है जो फर्स्ट सिक्स बैट्समैन के ऊपर रिलाई करती है और बाद में चार जो बॉलर्स आते हैं, तो वेरेज जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है या इंग्लैंड जैसी टीम है उनके पास काफ़ी ऑलराउंडर्स हैं, उनके जो बॉलर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो ये एडवांटेज उनको है, हमें थोड़ा डिसएडवांटेज है। एंड बट आई थिंक आवर फर्स्ट सिक्स बैट्समैन शुड ओवरकम दिस डिसएडवांटेज।
2: राइट, मोना आपके पास आऊँगी। आज का मैच तो चली सारी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी एक ऐसा दिन रहा दैट वी कैन स्माइल एट द एंड ऑफ इट, लेकिन आगे अब टूर्नामेंट में और भी बड़ी टीमें आ रही हैं। दो या तीन एरियाज ऑफ कंसर्न जो आपको प्रेजेंट विमेंस क्रिकेट टीम में, इंडिया भारतीय टीम में आपको दिखते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि काम की ज़रूरत है, तो वो क्या होंगे?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही लगातार बात हो रही थी कि अच्छी ओपनिंग की भारत को बहुत ज़रूरत है और बहुत कुछ रिलाय करेगा कि किस तरीके से शेफाली और स्मृति मांधना पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। आज पावर प्ले में हमने दो विकेट गंवाए, रन भी 38 ही बने, तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ आप पावर प्ले को यूँ ज़ाया नहीं कर सकते, आपको अच्छा रन अच्छा। आज आप देखिए पावर प्ले में पाकिस्तान हमसे बेटर खेला है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि आपको पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, शेफाली वर्मा स्ट्रोक प्लेयर है, कुदरती वो बहुत अच्छा स्ट्रोक्स लगा के खेलती है, थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा उनको। मैच अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर उनको क्या शॉट खेलना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है टीम के लिए, तो उनको अपना विकेट बचाकर खेलना है। भारती फुलमाली को खिलाना है या यास्तिका भाटिया को, तो मुझे लगता है कि यास्तिका भाटिया को अगले मैच में ज़रूर मौका देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप है, यहाँ आप प्रयोग करने के लिए नहीं आए, आपको यहाँ एक सेट टीम, एक मैच विनिंग टीम उतारनी है। और गेंदबाजी में जैसे हमने पहले भी कि मुझे लगता है अरुंधति रेड्डी की जगह रेणुका सिंह ठाकुर को यहां पर उतारा जाना चाहिए अगले मैच में।
0: वैशाली, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। टी ट्वेंटी विश्व कप जो पुरुषों का हुआ, जहां अभिषेक शर्मा की फॉर्म नहीं थी, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम टॉप थ्री को नहीं छेड़ेंगे। चर्चा चल रही है यास्तिका भाटिया को टीम में लाने के लिए, वो नंबर तीन खेलती हैं, तो क्या हम इस विश्व कप में अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो टॉप थ्री भी चेंज होगा? जमीमा को नंबर फोर खेलना पड़ेगा तब अगर यास्तिका टीम में आती हैं।
8: यास्तिका अभी तक देखी गई है कि वो फोर या फाइव नंबर पे ही खेलती हुई नजर आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जमीमा की बारी को हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि लाइनअप के बाद अगर ओपनर हम देखते हैं तो उसके बाद जमीमा ही लाई करती है बैटिंग के लिए, और वही एक ऐसी बैटर है जो वहाँ पे स्टे भी कर सकती है और आपको स्टे के साथ रन भी दे सकती है। स्कोरबोर्ड चलना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द मैच, और वो यास्तिका भाटिया आफ्टर 10 ओवर्स जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब बॉल सिक्स ओवर के अंदर हम कोई सामने से हमें कोई बॉलर मीडियम पेसर स्पेशली बॉल डाल रहा होता है तो वो बॉल स्विंग होती है तो उसको खेलना उतना इजी नहीं होता है। तो यास्तिका भाटिया को अगर हम देखें तो उनको स्पिनर खेलना इजी होगा खेलने के लिए, एंड मीडियम पेसर को उतना कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी।
2: Right, okay, we've spoken a lot about the Indian women's cricket team. Let's also slightly talk about the Pakistani women's cricket team. From that angle, if we now say very quickly, I want your take on that, Colonel Bhupraj. How difficult is the road ahead for the Pakistani team?
1: Well, in this tournament, I see a very bleak future for them because they've lost to us. And then there are two more good, strong teams, Australia and South Africa in this, Australia and South Africa.
0: जी, दोनों हैं इस टीम.
1: So it will become difficult for them to qualify for the semi-final.
0: तो बर्मिंघम के इस शाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ी ही नहीं बड़ी टीमें भी अपना चरित्र दिखाती हैं। भारत ने विश्व कप अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है, लेकिन ये सिर्फ दो अंक हासिल करने की कहानी नहीं है, यह आत्मविश्वास, तैयारी और उस विश्वास की कहानी है जो किसी भी टीम को चैंपियन बनने की राह पर आगे बढ़ाता है। आज बल्ले ने दम दिखाया, गेंद ने कमाल किया और मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने वो जज्बा दिखाया जिसे करोड़ों भारतीय अपने दिलों में लेकर चलते हैं। वैशाली आपका, कर्नल आपका और मोना आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार। अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
9: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच of the T20 cricket match played between India and Pakistan of the ICC Women's T20 World Cup 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
10: Akashvani Samachar ke saath main Arun Kumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे. इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं.
11: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है. इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स.
10: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की. विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया. सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई. सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है. ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है. ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई. इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है. इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया. इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे. बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए. बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
12: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
13: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
12: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the Inter-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download their admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. The Criminal Investigation Department or CID today interrogated Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee for over 9 hours for his alleged involvement in the signature forgery case of party MLAs. According to sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face to face at Bhavani Bhavan the CIT headquarters in Kolkata. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
14: Yakashvani, Madhya Pradesh hai. रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।